घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

प्रिगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। सावन प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत और इस कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, भगवान सदाशिव जिनको हम पशुपति भी कहते हैं, इनकी उपासना और आप कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि मध्यांकार्कसमप्रभं शशिधरं भीमाट्टहासोज्ज्वलं त्यक्षं पन्नगभूषणं शिखिशिखास्मश्रुस्फूर्मूर्धजं हस्ताब्जैर् त्रिशिखं समुद्र रमसिं शक्तिं दधानं विभुं द्रष्टा भीमचतुर्मुखं पशुपतिं दिव्यास्त्ररूपं स्मरेत्। जिनकी प्रभा मध्यान्ह कालीन सूर्य के समान दिव्य रूपों में भासित हो रही है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिनका मुखमंडल प्रचंड अट्टहास से उद्भासित हो रहा है, अरे सर्प ही जिनके आभूषण हैं, तथा चंद्रमा सूर्य और अग्नि ये तीन जिनके तीन नेत्रों के रूप में अवस्थित हैं, जिनकी दाढ़ी और सिर की जटाएं चित्र विचित्र रंग के मोर पंख के समान स्फुरित हो रही हैं, जिन्होंने अपने करकमलों में त्रिशूल मुद्गर तलवार और शक्ति को धारण कर रखा है, और जिनके चार मुख तथा दाढ़े हैं, ऐसे सर्वसमर्थ दिव्य रूप एवं अस्त्रों को धारण करने वाले पशुपति भगवान का हम ध्यान करते।

हैं, नमः शिवाय शांताय वेद वेदांग रूपिणे यज्ञानां फलदात्रे च ज्योतिर्लिंगाय ते नमः। नमः शिवाय, ऐसे पंचाक्षर मंत्र से और निरंतर जिनकी उपासना की जाती है, निरंतर आप ओम

और भगवान शिव की अर्चना करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान सदाशिव और आपका कल्याण करते ही हैं, निश्चित रूप से कल्याण करते हैं, क्योंकि भगवान शिव कल्याण के देवता हैं। भगवान शिव के अनेकानेक नाम हैं श्रोताओं, जिनको हम महामृत्युंजय भी कहते हैं, जो मृत्यु के समान और होने वाली पीड़ा से मनुष्य को मुक्त दिलाते हैं। ऐसे भगवान महामृत्युंजय, जिनके लिए वेदों में ओ

0: यमामृतात्। ऐसे और मंत्र से भगवान शिव की उपासना जो लोग करते हैं निश्चय ही उनके मृत्यु के समान कष्ट भी दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। अतः एव जब केवल एक जन्म के लिए सती का त्याग हो गया, तब सती को अपनी करनी पर अत्यंत पश्चाताप हुआ और उन्होंने भी उन्हीं परम प्रभु श्री रघुनाथ जी की हृदय से प्रतिपत्ति ली और कहा कि हे आरती हरणी, हे दीन दयाल, मेरा यह शरीर शीघ्र छूट जाए जिससे मैं दुख सागर को पार कर पुनः भगवान शिव जी को प्राप्त कर सकूं। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी,

जैसे बिनही श्रमण दूहन विपति बड़ाए। भगवत कृपा से योग गण गया और अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर योग नग में शरीर को त्याग कर सती ने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म धारण कर भगवान शिव को पुनः पति स्वरूप में प्राप्त कर लिया।

0: इस प्रकार भगवान शिव जी ने जो बिना अधके ही केवल सीता का वेश धारण करने के अपराध पर सती का त्याग कर दिया था, यह उनकी भक्ति की पराकाष्ठा थी। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानामश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भगवते श्री सांबसदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। संडे 16 अगस्त के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। कल बालकान दोहा संख्या 55 पर हम लोगों ने विराम लिया था। सती माता शिव जी के पास पहुँची और भगवान शिव ने स्पष्ट रूप से सती माता से कहे कि सारा वृतांत जो है वह सच सच कहे। अब जगदम्बा झूठ तो नहीं बोलेगी, लेकिन यदि भगवान शिव ऐसा कह रहे हैं कहहु सत्य सब बाता, तो माने भगवान अंतर्यामी शंकर उनको लगा ही कि शायद सती माता पूरी बात जो है सही सही ना बताए। इसे तुलसीदास जी के शब्दों में भगवान शिव सती माता से कहते हैं कि कहहु सत्य सब बात, आप सच सच कहो कि राम की परीक्षा कैसे दिया। तुलसीदास जी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं आज हम दोहा संख्या 56 में प्रवेश कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं

सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और सती माता भगवान शिव से कहे कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, वहां जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया।

आपने जो कहा वहां झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और माता सती ने जो चरित्र किया था सब भगवान शिव को देखने को मिला और शंकर भगवान समझ गए कि सती माता ने झूठ कहे हैं। आज इसको यही विराम दूं आपके ध्यान के लिए। बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति।

0: शांति ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु, साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम आयुर्यज्ञेन कल्पताम प्राणो यज्ञेन कल्पताम चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम पृष्ठम यज्ञेन कल्पताम यज्ञो यज्ञेन कल्पताम। ओम आर्य सभा मॉरिशस के पुरोहित रामसुंदर शोभन का सादर सप्रेम नमस्ते और सुप्रभातम। श्रावण मास के संदर्भ में वेद का पढ़ना पढ़ाना और यज्ञ करना और कराना होता है। यज्ञम क्या है? प्रिय श्रोतागण, शास्त्र में लिखा है, यज्ञ वै ब्रह्म यज्ञो भुवनस्य नाभिः यज्ञो वै श्रेष्ठतः कर्म। ये सब शास्त्रीय नाम है जिनमें अनेक प्रकार का संदेश भरे पड़े हैं। यज्ञ का अर्थ इस प्रकार हवन पूजन युक्त एक वैदिक कर्म है या एक धार्मिक कृत्य भी है, ऐसा सभी लोग मानते हैं। यज्ञ ही वह कर्म है जिसमें चार पुरुषार्थ पाए जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यज्ञ शब्द में चार अक्षर पाए जाते हैं, ई अ ज और य। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वह इन चार पुरुषार्थों को अपने जीवन में प्रयोग में लाएं। यज्ञ के चार अक्षरों में उसकी सार्थकता पाई जाती है। यज्ञ क्या है? यज्ञ धार्मिक सामाजिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कर्म है। प्रिय श्रोतागण, यज्ञ में धार्मिकता यजमान यज्ञ को संपन्न करता है। इसमें तीन मुख्य बातें स्वयमेव आ जाती हैं, संगतिकरण दान और पूजा। संगतिकरण में मिलन प्रेम ऐक्य भाव उपस्थित हो जाते हैं। यज्ञ परिवार के सदस्यों को एक सुंदर गुच्छे में बांध देता है, बड़ी ही प्रेम भाव से बैठकर यज्ञ को संपन्न करते हैं। प्रिय श्रोतागण, संगतिकरण केवल यजमान में ही नहीं होता, सामग्री को मिलाते हैं। वैसे होम में चार प्रकार के द्रव्यों का मिश्रण होता है, सुगंध फैलाने के लिए इलायची जायफल और केसर आदि का प्रयोग होता है। घृत दूध फल चावल गेहूं आदि अन्नों से पुष्ट करने की शक्तियां होती हैं। मिष्ट जिसमें शक्कर शहद ये सब होते हैं, गिलोय तुलसी के पत्ते आम के पत्ते रोग विनाशक शक्ति रखते हैं। इन सब द्रव्यों को मिलाने से ही शक्तिशाली सामग्री बनती है और वातावरण को शुद्ध करती हुई यजमान की भावनाओं को पवित्र भी करती है। प्रज्वलित अग्नि में स्वाहाकार की गुंजन करते हुए सामग्रियों को एक साथ आहूत करते हैं। सभी के एक साथ जलने से ही पवित्रता और शक्ति बढ़ती है। यज्ञ हमें संग में रहने का पवित्र ज्ञान देता है। यज्ञ में संगतिकरण और एकीकरण का यही संबंध है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में पंडिता सुनीति देवी प्रसाद मुगल का सादर से प्रेम नमस्ते और इस वेद मास के संदर्भ में प्रस्तुत है मंत्र व्याख्या। ओम यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्यभ्याम शुद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। यजुर्वेद अध्याय 26 मंत्र 2। अर्थात परमेश्वर ने विश्व के प्रारंभ में चार ऋषियों अर्थात अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा के माध्यम से ज्ञान मुक्ताओं से सज्जित चार वेदों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद का जाति वर्ण और स्तर पर ध्यान दिए बिना मानव जाति हेतु उजागर किया था। इस वेद मंत्र में ईश्वर ने स्वयं घोषित किया है, मैं अपनी इस हितकार वाणी अर्थात वेदों को समस्त मानव मात्र को संबोधित करता हूँ, चाहे वे ब्राह्मण हो, पुजारी हो अथवा संस्कृत तथा वेद मंत्रों के अध्यापन में रत अध्यापक हो, चाहे वे युद्ध क्रिया में लगे क्षत्रिय योद्धा हो, चाहे वे वाणिज्यक तथा कृषि कार्यों में रत वैश्य व्यापारी हो, चाहे वे श्रमजीवी शूद्र श्रमिक हो, चाहे वे बंधु बांधव हो तथा चाहे वे बाह्य व्यक्ति हो। इस प्रकार उक्त ईश्वरीय उद्घोषणा के अनुसार किसी भी पुरुष अथवा स्त्री को वेदों के अनुशीलन से वंचित नहीं किया गया है। वेद विश्व बंधुत्व तथा स्नेह की शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि वेदों का प्रकटीकरण समस्त मानव के कल्याण के लिए हुआ है। अतः जो व्यक्ति वेदों के अध्ययन को तथा कथित उच्च वर्णों तक सीमित करने की बात करते हैं तथा दलित वर्गों को उनके अध्ययन से अथवा उनके पाठ का श्रवण करने से वंचित करते हैं, वे इस दैवी आदेश की अवहेलना करते हैं तथा वे इस प्रकार पाप करते हैं। वेदों का संबंध देश अथवा संप्रदाय से नहीं है। पावन वेद तो समस्त विश्व की मानव जाति की अनुपम अमर धरोहर है। वेदों से उत्पन्न होने वाला दिव्य ज्ञान सर्वजनीन सर्वभौमिक तथा सार्वकालिक है। यह ज्ञान सर्वदा नवीन उपयुक्त प्रवाहमान है। यह काल स्थान या कार्य की सीमाओं से परे है। यह ज्ञान विश्व व्यापी चिरस्थाई है तथा नित्य है। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम द्रिते दृंह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।
2: संसार के सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मेरे प्रति किसी के मन में वैर भाव या शत्रुता न हो। मैं भी संसार के सभी प्राणियों को मित्र भाव से देखूं, मेरे भीतर किसी भी जीव के प्रति द्वेष न रहे। परस्पर एक दूसरे को मित्रता के दृष्टि से देखें, पूरा मानव समाज आपस में मिलजुल कर रहें और चारों ओर सुख शांति का वातावरण बने रहें। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में धर्मात्मा है जो अपनी आत्मा के समान ही अन्य सभी जीवित प्राणियों को समझता है, किसी से द्वेष नहीं करता और हमेशा सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करता है।
1: ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
2: परमात्मा त्रयंबक स्वरूप है, वह भूत भविष्य और वर्तमान को जानता है। सृष्टि की रचना पालन और संहार करना उसी का स्वाभाविक कर्म है। इसी कारण वह त्रयंबक या शक्तित्रय कहलाता है। यज्ञ योग साधना द्वारा वह त्रयंबक परमेश्वर की हम विधिवत उपासना करें, जिससे कि हम मनुष्य मृत्यु के बंधन से छूटकर उसी प्रकार मोक्ष को प्राप्त कर सकें जैसे खरबूजा परिपक्व और सुगंधित होने पर अपनी लता से अलग हो जाता है। हे ईश्वर, मुझे भी मृत्यु रूपी लता से अलग करके मोक्ष रूपी फल प्रदान करें।
1: ओम तचक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम

0: यश्च शरदः शतात्।
1: वह परमेश्वर जो सबको देख रहा है और ज्ञान स्वरूप है, वह धार्मिक विद्वान, देवों और महात्माओं का परम हित करने वाला और सबका मार्ग प्रशस्त करता है। सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के मध्य और सृष्टि के अंत में सर्वत्र शुद्ध प्रकाशमान और सत्य स्वरूप में विद्यमान रहता है। वह परमेश्वर हम सबको 100 शरद ऋतुओं तक अर्थात 100 वर्षों तक उत्तम दृष्टि प्रदान करें। हम 100 वर्षों तक स्वस्थ आँखों से देखें, 100 वर्षों तक जीवन को धारण करें, 100 वर्षों तक कल्याणकारी वचनों को सुनते रहें, 100 वर्षों तक सत्य उपदेश करते रहें, अपनी वाणी का सही उपयोग करते रहें, 100 वर्षों तक किसी के अधीन न हो। परमेश्वर की कृपा से हम 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवन धारण करें।
0: ओ

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आशिता के साथ है। संध्या नमस्कार आपको आशिता।
1: नमस्कार रिया। 16 अगस्त 2026 की इस प्रातकालीन समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सभी को प्रणाम और नमस्ते। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के बारे में बात करते हैं। भारत के 80वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय तिरंगा शान से लहराया गया। कल मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग की ओर से आयोजित समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल और प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम सहित मॉरिशस के राजनीतिक व राष्ट्रसभा के सदस्यों ने एक रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। यह अवसर रहा भारत मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने तथा मनाने का। प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम आज रविवार को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। वे सोमवार को होने वाले सादेक के 46वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां क्षेत्रीय एकीकरण और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। मॉरिशस ने मछली पकड़ने वाले जहाजों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया है। अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए जहाज निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया गया है। मॉरिशस में स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड और फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट यानी फारे के विलय का किसानों के प्रतिनिधियों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इस फैसले से करीब 84,000 छोटे किसान, पशुपालक और उनके परिवार सीधे प्रभावित हो सकती हैं। पाई से वालेपीतियों को जोड़ने वाली बस लाइन रूट 150 की सेवा को लेकर 500 निवासियों के एक समूह ने शिकायतें दर्ज कराई हैं। निवासियों का आरोप है कि समय सारिणी का पालन नहीं हो रहा है और पर्याप्त बसें उपलब्ध नहीं हैं, जिससे कर्मचारी, विद्यार्थी और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। और मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस साल अपनी स्थापना के 40 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और मॉरिशस में विदेशी फिल्म निर्माण को आकर्षित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से कम 47 लोगों की मौत हो गई है और फ्लोरेस टापू में आए भूकंप के बाद कई झटके महसूस किए गए और सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। उधर दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि इजरायल ने हमले में हिजबुल्लाह के एक कमांडर को निशाना बनाने की बात कही है। तो इसके साथ ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हो। चला बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत हमारे इलाके पर सामान्य हवा का बहाव है। आज पूर्व की ओर से आने वाले बादल आज शाम से हमारे

0: स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आमतौर पर सुबह के समय और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय देर दोपहर में पूर्व में कुछ बादल विकसित होंगे और रहकर वर्षा होगी। शाम के समय और रात के दौरान बादल घिराएंगे और पूर्वी तथा दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों पर वर्षा होगी। ऊंचाइयों पर विशेषकर कोहरा छाएगा और हवा सुबह के समय पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से हल्की बहेगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा दिन के दौरान बहेगी और खुली जगहों में झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 3 मीटर 50 सेंटीमीटर की ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है तथा लगूनों में न निकलने की सलाह दी जाती है। दक्षिण और उत्तर के लगूनों में शाम के समय सुधार आएगा और तापमान अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा ऊंचाइयों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:31 पर और सूर्यास्त शाम 5:57 पर। तो इसके साथ ये पहला फ्लैश समाप्त हो चला। हमारी और आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30। आज्ञा दीजिए, नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: नमस्कार, सुप्रभात। इस समय सुबह के 6:06 हुए हैं। आज रविवार 16 अगस्त 2026 की भोर की बेला आप सबों के लिए मंगलकारी हो। ईश्वर आप लोगों का जीवन धन धान्य से भरा रखें। आइए हम सुबह की इस बेला में लाभ उठाएं वैदिक वाणी कार्यक्रम का। आज सुनिएगा डॉक्टर वेदपाल जी को, जिनका परिचय डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी दे रहे हैं।
2: लीजिए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।
3: आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। वैदिक वाणी सेवा में प्रस्तुत है इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सौभाग्य है कि भारत से डॉक्टर वेदपाल जी आज के संदेश को प्रस्तुत करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वेदपाल जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं मेरठ विश्वविद्यालय में, और आप महर्षि दयानंद से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ लिख चुके हैं, अच्छे लेखक हैं, संपादक हैं, शोधक हैं, और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए आप सम्मानित कई बार हुए हैं। विशिष्ट मान आपको उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ की तरफ से प्राप्त है, विशिष्ट विद्वान के रूप में। हमारा सौभाग्य है कि आज का संदेश आप आदरणीय प्रोफेसर वेदपाल द्वारा सुनने जा रहे हैं। प्रोफेसर जी।
4: ओम। वेदवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्ते। मनुष्य मात्र की एक स्वाभाविक अभिलाषा रहती है कि वह भद्रता को, कल्याण को प्राप्त कर सके। उस कल्याण की प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, किंतु कई बार हम देखते हैं कि प्रयत्न करने पर, पुरुषार्थ करने पर भी व्यक्ति को वह कल्याण, वह भद्रता, वह ऊंचाइयां प्राप्त नहीं हो पाती जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता है।

किंतु इसका कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा, और वह कारण है उसका सही दिशा या सही मार्ग की ओर प्रवृत्त न होना। वेद ने मनुष्य की भद्रता के लिए, कल्याण के लिए एक मार्ग का निर्देश किया है, और वेद का वह मार्ग बहुत ही सरल मार्ग है, बहुत ही सामान्य मार्ग है, और एक इस प्रकार का मार्ग है कि जो विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले मनुष्य मात्र के लिए समान रूप से उपयोगी है। वेद का संदेश है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुए यद भद्रम तन्ने आसुए। इस मंत्र के माध्यम से कल्याण की प्राप्ति के मार्ग का निर्देश किया गया है। इस मंत्र में सर्वप्रथम संबोधन करके ये कहा गया है कि जो सविता है, जो जगत का प्रेरक है, जगत का उत्पादक है, और मनुष्य के लिए भी सत्पथ का प्रेरक है, वह सविता परमेश्वर हमारे से जितने भी दुर्गुण हैं, दुरित हैं, उन सबको दूर कराए। मंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है दुरितानी। दुरितानी का अभिप्राय है या बहुवचन का प्रयोग है, जितने भी दुरित हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी व्यवधान हैं, जो रुकावटें हैं हमारे मार्ग के अंदर, किसी भी प्रकार से रुकावट या व्यवधान उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं, उन सबको दुरित कहा गया है। और उन दुरितों के लिए कहा गया है कि हम उन दुरितों से दूर हों। किंतु मनुष्य का सामर्थ्य बहुत सीमित है। कई बार मनुष्य विचार करता है कि मैं इस बुराई को छोड़ दूं, वह विचार करता है कि मैं इस मार्ग की ओर अग्रसर हो सकूं, प्रगति करूं, आगे बढ़ूं। किंतु चाहते हुए भी न तो वह आगे बढ़ पाता है, न प्रगति कर पाता है, और उन बुराइयों से जो उसके जीवन में व्यवधान के रूप में, बाधा के रूप में, दुरित के रूप में उपस्थित हैं, उन्हें छोड़ नहीं पाता। ऐसे समय में आवश्यकता है एक ऐसे प्रेरक की जो उसके अंदर ये प्रेरणा कर सके, उसकी आत्मा में ये स्फुरण पैदा कर सके कि वह उन बुराइयों को जिन्हें छोड़ना चाहता है छोड़ने में समर्थ हो सके। और यह कार्य सविता का है, परमेश्वर का है, क्योंकि वह प्रेरक है, वह उत्पादक है। देखिए, प्रेरक इस प्रकार से कार्य करता है कि हम सविता को, सूर्य को देखते हैं। सविता का एक अर्थ सूर्य भी है। सूर्य क्या करता है? सूर्य की किरणें जिस समय पृथ्वी पर आकर के वृक्ष वनस्पति पर पड़ती हैं, वह सब लहलहा उठती हैं। हम अपने उद्यान में देखते हैं कि गुलाब का एक पौधा है, उस पर कली आई हुई है। कल सायंकाल तक वह कली बंद थी, किंतु आज जैसे ही प्रातः सूर्य की किरणें उस पर पड़ीं और वह कली खिल उठी। यद्यपि सूर्य और गुलाब के उस फूल में कोई कारण कार्य का संबंध नहीं है, किंतु वह प्रेरक है, और प्रेरक होने से, उसकी अंतः प्रेरणा से वह कली खिल उठती है। इसी प्रकार से वह सविता जो प्रेरक है, उसकी प्रेरणा से मनुष्य समर्थ होता है, सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है कि वह उन दुरितों को, उन बुराइयों को छोड़ने में समर्थ हो सके। दूसरी बात महत्वपूर्ण कही गई है इस मंत्र में कि यद भद्रम, जो भद्र है, जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव हैं, वह सब हमें प्राप्त कराए। केवल प्रार्थना करने मात्र से कोई कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। कल्याण को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित है कि वह व्यक्ति कल्याण के मार्ग का पथिक बन जाए, उसका अनुगामी बने। यदि व्यक्ति उस पथ का अनुगमन करने लगता है तो वह भद्रता प्राप्त करता है। और इसे प्राप्त करने के लिए जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना का अभिप्राय केवल मांगना अथवा याचना करना नहीं है कि हम लगें और मांगना प्रारंभ कर दें। उसके लिए अपेक्षित है कि हमारी

0: प्रार्थना प्रय अर्थ ना हो। प्रय का अभिप्राय है उत्कृष्ट, प्रय का अभिप्राय है तेजी से, आतुरता से, उत्कंठा से। यदि हमारी प्रार्थना में तीव्रता नहीं है, गहराई नहीं आई है, उत्कंठा नहीं जागृत हुई है, तो हम उस प्रार्थना के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के प्रति कहीं ना कहीं हम उदासीन हो जाएंगे। हमारी उत्कंठा हमारी प्रार्थना को बल प्रदान करती है। और किस प्रकार से बल प्रदान करती है कि आप सब देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसके जीवन में बहुत सारे अभाव हैं, और यहाँ तक अभावग्रस्त है कि उसके लिए दो समय का भोजन प्राप्त करना भी दुर्लभ है, कठिन है। ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, गहराई से प्रार्थना करता है, वह केवल उतनी प्रार्थना करता है कि उसे दो समय का भोजन या दो समय के भोजन की सामग्री अथवा जिन पदार्थों से वह सामग्री उपलब्ध हो सकती है वह उसे प्राप्त कर ले। ऐसा व्यक्ति बहुत सारी विचार तो मन में रख सकता है, भाव तो उसके मन में हो सकते हैं कि उसे यह भी प्राप्त हो, वह भी प्राप्त हो, किंतु उसकी ये इच्छाएं उतनी तीव्रता लिए नहीं होती जितनी तीव्रता दो समय के भोजन के लिए है। तो वह किसी देश का साम्राज्य नहीं मांगता, उसकी कामना नहीं करता। पहली चाह होती है कि क्षुधा की निवृत्ति हो जाए, उसे भोजन की उपलब्धि हो जाए। तो ऐसी ही तीव्रता जब व्यक्ति के मन में ये हो जाए, गहराई कर ले कि मुझे कल्याण के मार्ग पर चलना है, तब वह व्यक्ति उस सत्पथ का अनुगामी होता है। और कल्याण के लिए कहा गया है कि भद्रता क्या है, श्रीर्वै भद्रम, जो श्री है वह भद्रता है, अर्थात हमारे जीवन में वह परिष्कार आना, वह उत्कर्ष हमारा हो जाना कि जिस समाज में, जिस सभा में, जहाँ पर भी हम रह रहे हों, उस स्थान पर हमारा शोभादायक स्थान हो, दूसरे व्यक्तियों को आकृष्ट करने का माध्यम बने, दूसरे व्यक्ति हमारी बात को आदर के साथ सुनने वाले हों, हमारे वचनों पर ध्यान देने वाले हों, तो ऐसा जो हमारा व्यक्तित्व है, जिसे हम कहें कि वो चुंबकीय व्यक्तित्व है, वह चुंबकीय व्यक्तित्व का निर्माण होता है श्री से, भद्रता से। पशवः भद्रम, जो पशु हैं अर्थात धन धान्य है, वह धन धान्य भी भद्रता का एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि व्यक्ति के पास भौतिक संपदाएं हों, संसाधन हों, तो समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर उसकी महत्ता बढ़ती है, उसकी उपयोगिता बढ़ती है। उस उपयोगिता को बढ़ाने के लिए जहां हम ये कामना करें, प्रयत्न करते हैं कि हम भद्र हों, हमें भद्रता प्राप्त हो, पशु साम्राज्य हमारे पास हो, किंतु उसकी उपयोगिता और उसकी भद्रता दूसरों के लिए विनियोजन करने में है, समाज के प्रति समर्पण करने में है। यदि हम समाज के प्रति समर्पण का भाव नहीं रखते, जिस समाज ने हमें बहुत कुछ प्रदान किया हो, उस समाज के प्रति हमारा योगदान नगण्य हो, तब भी उस समाज में हम कितने ही धन संपन्न हों, हम उतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सकते जितना स्थान एक वह व्यक्ति जो हमसे कम साधन संपन्न है, किंतु अपने साधनों का विनियोग समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए करता है। तो ऐसी प्रार्थना करने का अर्थ है कि हम ये प्रार्थनाएं तो करें, किंतु उसके लिए पुरुषार्थ भी करें। यदि हमारा पुरुषार्थ उसके अनुरूप होगा जो हम पाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम उसमें सफल हो सकते हैं, और बिना पुरुषार्थ के की गई कामना संसार में कभी भी सफलता प्रदान नहीं कर सकती है, भद्रता प्रदान नहीं कर सकती है। ओम।
1: श्रोताओं, अभी आपने सम्माननीय प्रोफेसर वेद पाल जी को सुना। वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और तपोवृद्ध व्यक्ति हैं। आशा है आपने उनके संदेश से

0: लाभ उठाया होगा। प्रोफेसर जी को बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।
2: इस समय सुबह के 6:19 हुए हैं। सुबह को चलिए जरा हम सुरीलापन, मधुरता और लय प्रदान करें, गाएं, गुनगुनाएं और वातावरण को मिलोडियस बनाएं।

गीत गाता चल मूवी का ये टाइटल गाना हम पेश कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका जीवन, आपका ये दिन बहुत ही मेलोडियस रहे, बहुत ही संगीतमय रहे। बस थोड़ी ही देर में आप सुनिएगा आज का विशेष कार्यक्रम श्रावण मास के अवसर पर। आज सुनिएगा गहलोत राजपूत महासभा के पंडित राम सेवक जी से ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। श्रावण मास आप लोगों को मंगलमय हो।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम तत्सत् ओम स्तुतामया वरद।

प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आदरणीय श्रोतागण, सादर सप्रेम नमस्ते। श्रावणी पर्व के संदर्भ में आज मैं ऋषि तर्पण तथा रक्षाबंधन पर अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। श्रावणी पर्व आर्यबल में अत्यंत प्रसिद्ध त्यौहार है। इस त्यौहार के समय यज्ञ किया जाता है। यज्ञ या जो पवित्र धारण किया जाता है या पुराना बदला जाता है। इस तृप्ति से इसे उपाकर्म या ऋषि तर्पण भी कह सकते हैं। इस त्यौहार के समय बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती है। दृष्टि से ये इसे रक्षाबंधन भी कह सकते हैं। इस त्यौहार के इन दो उद्देश्यों के अपने अपने कारण हैं। वे क्या है, उपाकर्म या ऋषि तर्पण? भारत देश वर्षा बहुल कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकांश जनता आषाढ़ और श्रावण में खेती के काम में लगी रहती है। आषाढ़ से श्रावण के अंत तक खेतों की जुताई बुआई समाप्त हो जाती है। इसके बाद वर्षा शुरू हो जाती है, जिस समय ग्रामों में किसानों के पास करने को कुछ नहीं रह जाता था। खेतों से मंडियों में अनाज न आने के कारण बरसात के महीनों में वैश्य भी आराम से बैठ जाते हैं। इन दिनों नदियों में बाढ़ आ जाती है, यातायात बंद हो जाता है। इसलिए क्षत्रिय वर्ग भी दिव्य विजय के लिए नहीं निकलते थे। साधु संन्यासी भी वर्षा के कारण वनों को छोड़कर शहरों में या गांवों में आ जाते थे। यह समय चौमासा चतुर्मास कहलाता है। इस समय में भारतवर्ष में देश की सारी जनता स्वाध्याय में बिताती है। स्वाध्याय भारत की संस्कृति का प्रधान अंग रहा है। ब्रह्मचारी के लिए आदेश है, आचार्य अधीनो वेदम दिव्यस्य। आर्य के अधीन रहकर वेद अयन करते रहो। स्नातक हो जाने पर गृहस्थी के लिए आदेश है, स्वाध्याय यन्मा प्रमदः, स्वाध्याय प्रवचना भव्यम न प्रमितिष्ठाम। विद्यायन कर चुकने के बाद भी स्वाध्याय करते रहना। वानप्रस्थी के लिए मनु का आदेश है, स्वाध्याय नित्य युक्त स्यातः, सदा स्वाध्याय करते रहना। सन्यासी के लिए आदेश है, संन्यसेतः सैत्कर्मणि वेदमिकनम। मनसेत सब कुछ छोड़ दे, परंतु वेद का स्वाध्याय न छोड़। वर्षा चार मास सारा देश ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध स्वाध्याय में लगा रहता था। जगह जगह विद्वानों के आध्यात्मिकता के प्रवचन होते थे, जिन्होंने देश के सभी नर नारी पठित तथा अपठित सब काम धंधों से निपट के जाने के कारण ध्यान से सुनते थे। वह समय देश के सारे सामूहिक शिक्षा के काम करता था। इस उपाकर्म इसलिए कहा जाता था क्योंकि पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार यह अध्ययंत उपाकर्म उपाकरण यह समय स्वाध्याय का उपाकरण था। उप समिप्त आकरण ले आना, जनता को ऋषि मुनियों समाज के विचारकों के समिप्त से आता था। दूसरे शब्दों में यह ऐसा कर्म या जो देश के हर व्यक्ति को देश के मूर्धन्य विचारकों की विचारधारा के साथ बहने के लिए प्रेरणा देता था, इसलिए इसे उपाकर्म कहते हैं। और क्योंकि इस कर्म द्वारा

0: ऋषि मुनियों का तर्पण होता है, उनके वचनों की सुनकर उसका सम्मान होता था, इसलिए इसी ऋषि तर्पण भी कहते हैं। तो आदरणीय श्रोतागण, इसी वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ और मैं सब भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामना प्रस्तुत करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।
1: कर पावन वेद प्रकाश दूर करता रहता अंधियारा, यह श्रावणी पर्व हमारा।
2: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: घड़ी मिलाती चले सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं।

16 अगस्त रविवार का दिन, इस प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। आज की सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत की 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय तिरंगा शान से लहराया गया। मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग की ओर से आयोजित समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सहित मॉरिशस के राजनीतिक और राष्ट्रसभा के सदस्यों ने एक रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। ये अवसर रहा भारत मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने तथा मनाने का। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज रविवार को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। वे सोमवार को होने वाले सादिक के 46वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां क्षेत्रीय एकीकरण और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। मॉरिशस ने मछली पकड़ने वाले जहाजों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया है। अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए जहाज निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। मॉरिशस में स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड और फूड एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट फारे के विलय का किसानों के प्रतिनिधियों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इस फैसले से करीब 84,000 छोटे किसान, पशुपालक और उनके परिवार सीधे प्रभावित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से कम 47 लोगों की मौत हो गई है। फॉरेस्ट टापू में आए भूकंप के बाद कई झटके महसूस किए गए और सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल फिनिक्स स्थित इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर भारतीय मूल के लोगों की मौजूदगी रही और भारत तथा मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विशेष संबंधों को रेखांकित किया गया। मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त ने

0: हाल में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम की भारत यात्रा का भी उल्लेख किया। इन उच्च स्तरीय यात्राओं के दौरान कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। माधवी जगन्नाथ की रिपोर्ट पर सुनते हैं ये विवरण।
1: This is not only a celebration of our

0: friendship where we are committed to take to even greater heights in the times to come.
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय उच्चायुक्त को श्रीमान श्रीवास्तव को. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम आज रविवार को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे. वे सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी यानी सादेक के 46वें साधारण शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा कल सोमवार 17 अगस्त को करेंगे. सम्मेलन में क्षेत्रीय एकीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और कृषि क्षेत्र में बदलाव सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. मॉरिशस वर्ष 1995 से सादेक का सदस्य है. मॉरिशस का लक्ष्य दक्षिणी अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश को और मजबूत करना है. शिखर सम्मेलन के अंतर्गत प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम अन्य राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे. इन बैठकों में क्षेत्र के साझा मुद्दों और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी. इस पर करुणा लालू का विवरण.
2: सोमवार सुबह होने वाले आधिकारिक उद्घाटन से पहले 16 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी करने वाले स्थल पर तैयारियां तेज हो गई हैं. इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा करेंगे और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण तथा विकास को और भी मजबूत करना है.
3: Sa régional intégration là et surtout continental integration. Par exemple, au niveau UA, les pour de l'avant avec ban model laws and everything qui s'adapte pour bien implement. Et member states pour bien re-implement pour derrière. Donc, il y a un bon suivi.
2: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम रविवार को डर्बन पहुंचेंगे. शिखर सम्मेलन से इतर उन्हें अन्य राष्ट्र अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा, जहां साझा हितों और क्षेत्र की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी. इनमें खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ व्यापार भी शामिल हैं.
4: En ce qui concerne Maurice, nous cause surtout la sécurité alimentaire. Nous avons aussi différents corridors qui nous peuvent faire au niveau de la SADC. Nous avons le chemin qui peut faire pour connecter les États membres à travers un projet routier, mais aussi nous faisons cause le corridor maritime qui connectait ban l'île de la SADC, Maurice, Seychelles, Madagascar, etc.
2: प्रत्येक सदस्य देश से जुड़े मुद्दों से आगे बढ़कर इस शिखर सम्मेलन को क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है. बैठक में साझा चुनौतियों और क्षेत्र की प्रगति को तेज करने के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है.
1: मॉरिशस ने मछली पकड़ने वाले जहाजों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया है. मत्स्य मंत्री अरविंद बुलेल के अनुसार क्षेत्र में अवैध, बिना सूचना की और अनियमित रूप से की जाने वाली मछली पकड़ने की गतिविधियों से हर साल $5 बिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान होता है. मॉरिशस के लिए ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है. देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है और अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बेहद अहम माना जा रहा है. इसी के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने कल शुक्रवार 14 अगस्त को फिशरीज वेसल मॉनिटोरिंग सिस्टम अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 को लागू करने की मंजूरी दी. यानी कि शुक्रवार को ये फैसला लिया गया. इसका उद्देश्य जहाजों की निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना और अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है. मंत्री अरविंद बुलेल से बात की शैलिनी अबन ने. विवरण तीना बुद्धा का है.
5: फिशरीज रिसर्च सेंटर येरा एंड फिशरीज मॉनिटरिंग सेंटर.
6: आल्बियो फिशरी रिसर्च सेंटर में एक फिशरीज मॉनिटरिंग सेंटर है. वहाँ लाइसेंस वेसल्स की निगरानी की जाती है और इन जहाज़ों में वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होता है. इसलिए चाहे जहाज हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर हो या बाहर, हम ये पता लगा सकते हैं कि जहाज इस समय कहाँ है. एक बड़ी समस्या गैर कानूनी और बिना नियम के होने वाली मछली पकड़ने की है. इस समस्या को रोकने के लिए कई कन्वेंशन है और मॉरिशस स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है।

0: सादेक की कोस्टल देशों में हर साल $5 बिलियन से अधिक की राशि इस तरह की गैर कानूनी फिशिंग के कारण खो जाती है।
1: ये उल्लेखनीय है कि मॉरिशस में वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम यानी पोर्ट निगरानी प्रणाली VMS 2005 से मौजूद है। ये नया सुधार इस प्रकार फिशरीज एक्ट 2023 के तहत 2024 में मजबूत किए गए नियामक ढांचे का पूरक है, जिसमें विशेष रूप से VMS स्वचालित पहचान प्रणाली यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली भी शामिल है। मेलहोस जेल में 43 वर्षीय कैदी अविनाश रामगुती की मौत फांसी लगने से दम घुटने के कारण हुई थी। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर्स सुदेश कुमार गंगादीन और प्रेम चमन द्वारा कल किए गए पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि की है। अविनाश रामगुती को कल सुबह मेलहोस स्थित उसकी कोठरी में मृत पाया गया था। वह वर्ष 2006 में लालमाटी में दो भाभियों इंदिरा और आशा जरी की दोहरी हत्या के मामले में 37 साल की जेल की सजा काट रहा था। मुकदमे के दौरान उसने इस अपराध में अपने चाचा राजेश रामलोगन को भी शामिल बताया था। राजेश रामलोगन की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी और इस मामले में पुलिस की कथित बर्बरता का आरोप लगा था। इस मामले में MCIT के 3 सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया था, हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था। करीब 84,000 छोटे किसान, पशुपालक और उनके परिवार स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड और फूड एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट FAI के प्रस्तावित विलय यानी फ्यूजन से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। किसानों के प्रतिनिधियों ने इस विलय का विरोध करते हुए ये चिंता जताई है। दोनों संस्थाएं कृषि क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड किसानों को सामाजिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि FAI मुख्य रूप से अनुसंधान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। किसानों के प्रतिनिधियों के अनुसार फ्यूजन से कृषि परिवारों को मिलने वाली सामाजिक सहायता कमजोर हो सकती है और अनुसंधान गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती है। उनका सुझाव है कि दोनों संस्थाओं को बरकरार रखा जाए, उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से अलग की जाएं और कार्यों में दोहराव से बचा जाए। किसानों के प्रतिनिधियों ने सरकार से किसी भी फैसले से पहले किसानों से परामर्श करने की मांग की है। इस बारे में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कंसल्टेंट अमरजीत बीगू छोटे किसानों और पशुपालकों की ओर से अपनी बात रख रहे हैं। विवरण टीना बुदना का है।
2: FAI
0: और स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड को मर्ज करना जब दोनों का काम बिल्कुल अलग है, इससे बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। अभी किसान लोग खुद परेशान हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड में सालों से किसान लोगों की तरफ से लगभग 50 मिलियन रुपए जमा किए गए हैं। अब सवाल है कि उन पैसों का क्या होगा? क्या अब किसान लोगों को रिसर्च के लिए भी पैसा देना पड़ेगा? जो पैसा अब तक जमा हुआ है उसका क्या होगा? क्या वो पैसे किसान लोगों को वापस दिए जाएंगे? इन सब बातों को लेकर हम लोग बहुत उलझन में है। बजट में भी प्रधानमंत्री ने FAI और स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड को मिलाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। फाइनेंस बिल में भी इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मंत्री अरविंद बुलेल के बयान में सुना गया है कि स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड FAI के नीचे काम करेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस फैसले को फिर से देखा जाए। ये दोनों अलग अलग अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं और दोनों का काम भी अलग है। हम चाहेंगे कि दोनों संस्था जैसे अभी है वैसे ही रहे। कम से कम किसान लोगों को पता रहेगा कि कोई दिक्कत होने पर किस जगह जाना चाहिए।
2: Souci,
1: डिजिटल लिटरेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीमाओं व सुरक्षा पर जागरूकता अभियान जारी है। इस सिलसिले में अधिक

0: कारी जीतोर मेहनत कर रही है। ज्यादा जानकारी शिक्षा मंत्री महीन गंगा प्रसाद हमें दे रही है। विवरण सुमेरा अकबर अली का है।
1: मुर्शिद के नौजवानों की हिफाजत करनी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी के सिलसिले में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जब बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि वो किस हद तक जा सकते हैं और कौन सी सीमा पार नहीं कर सकते हैं, ताकि वो खुद के लिए या अपने माँ बाप के लिए कोई समस्या पैदा ना करें। हम टेक्नोलॉजी के अच्छे इस्तेमाल के लिए बच्चों को अवगत करने पर जोर देते हैं।
2: C'est un bon usage de la technologie qui nous est dite. Et pour ça, nous visons, sensibilisons nos bons enfants.
0: टेक्नोलॉजी और एआई के औजार के बारे में छात्रों को समझाना आज बेहद ज़रूरी हो गया है। इस सिलसिले में मॉरिशस में करीब 50,000 लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, जिससे जागरूकता बढ़ाई जा सके।
3: Aujourd'hui, il est important de permettre aux élèves d'apprendre les outils de la technologie et de l'intelligence artificielle. C'est fondamental.
1: आज बच्चों को टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के औजार के बारे में जानने का मौका देना अहम है। बच्चों को रहनुमाई की जरूरत है। पढ़ाई में एआई अब बुनियादी चीज बन गई है। सभी तकनीकें इस पर सीखी जा सकती हैं, लेकिन बच्चों का अकेले एआई समझना अच्छा नहीं है। हमेशा उनके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय मॉरिशस में इसी मकसद से कम 50,000 लोगों को प्रशिक्षित करने का इरादा रखता है। छात्र, अध्यापक, कर्मचारी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंध रखने वाले लोग।
3: 50,000 personnes à Maurice, non seulement les étudiants, non seulement les profs, mais un peu les civil servants et tous ceux qui sont concernés par l'IA.
0: मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MFDC इस साल अपनी स्थापना की 40 वर्ष पूरी कर रहा है। MFDC स्थानीय प्रतिभाओं की को समर्थन देने के साथ साथ विदेशी फिल्म निर्माण को मॉरिशस में आकर्षित करने के लिए भी काम करता है। इस वर्ष और अगले वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। अपनी 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर MFDC सिनेमा दो विलास कार्यक्रम भी आयोजित करेगा, जिसका उद्देश्य मॉरिशनों को स्थानीय फिल्मों और फिल्म निर्माण से परिचित कराना है। इस बारे में MFDC की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केविन गति ने गुरुवार को लेटेव्यू दुला मचनाल के दौरान ये जानकारी दी। उनको सुनते हैं। विवरण टीना बुन्ना का है।
4: अगर हम मॉरिशन फिल्म की बात करें तो ये मॉरिशन म्यूजिक की तरह ही है। मॉरिशन कलाकार यहाँ से ज़्यादा बाहर जाकर परफॉर्म करते हैं, इसलिए लोगों को भी इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए समझाना बहुत ज़रूरी है। सरकार अपनी तरफ से संस्था के स्तर पर मदद कर सकती है, लेकिन हमें आम लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। लोग फिल्म देखने आए उसको पसंद करे और मॉरिशन फिल्म को सपोर्ट करे। इसी वजह से हम गांव तक सिनेमा ले जा रहे हैं। हम सीधा लोगों के पास जाना चाहते हैं, गांव में मॉरिशन शॉर्ट फिल्म दिखाना चाहते हैं, ताकि लोग इन फिल्मों को देख सकें, समझें और उनको पसंद करें। इस तरह हम जनता को इस इंडस्ट्री के करीब ला सकते हैं।
0: आपको हमें याद दिला देते हैं कि केविन गति से बात की राजमीना सीतामुनि ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोनेशिया में कल शनिवार तड़के 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है। देश की आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार खोज और बचाव अभियान शुरू होने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़ रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने बताया कि कई लोग अलग अलग स्तर पर घायल हुए हैं। भूकंप और उसके बाद आए दर्जनों झटकों से इलाके में सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप शनिवार को स्थानीय समयानुसार सुबह पांच बजे से कुछ पहले फ्लोरेंस द्वीप में आया। इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान और भू भौतिकी एजेंसी के अनुसार भूकंप की गहराई 15 किलोमीटर थी। विशेषज्ञों के मुताबिक भूकंप जितना कम गहराई में आता है, सतह पर उसका प्रभाव उतना ही विनाशकारी हो सकता है। पूर्वी इलाके में इसके बाद कई शक्तिशाली झटके महसूस किए गए, जिनमें 6.1 तीव्रता का एक भूकंप भी शामिल है। शनिवार को बाद में पश्चिमी इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में भी 6.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिसकी गहराई 163 किलोमीटर थी। मोमिया

बंदरगाह से सामने आई वीडियो में टर्मिनल की इमारत से कंक्रीट के बड़े टुकड़े यात्रियों के ऊपर गिरते दिखाई दे रहे हैं। ये यात्री अंतरद्वीपीय फेरी में सवार होने का इंतजार कर रही थी। जहाज तक पहुंचने वाला गंगवे ढहने के बाद कुछ लोग समुद्र में भी जा गिरे। और उधर लेबनन के बारे में बात करती है, दक्षिणी लेबनन में इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। और अधिकारियों के अनुसार जून में तनाव कम करने के उद्देश्य से समझौते की घोषणा के बाद ये हमलों के सबसे घातक दिनों में से एक है। लेबनन के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम के अनुसार बेरूत से करीब 70 किलोमीटर दक्षिण में अंसार के बाहरी इलाके में एक मकान पर हुए हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। सरकारी मीडिया के मुताबिक मृतकों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि उसने हिजबुल्ला के एक कमांडर को मार गिराया है। इजरायल के अनुसार ये कार्रवाई उसके सैनिकों पर हुए एक हमले के बाद हुई। IDF ने ये भी कहा कि कमांडर के परिवार के सदस्य, जिन्हें उसके मुताबिक वह मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, घटनास्थल पर मौजूद थे और वे भी प्रभावित हुए हैं। बढ़ते हम अब मौसम के हाल की ओर। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा का बहाव है और शाम के समय या पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान किया जा रहा है कि सुबह के समय और दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना होगा, सिवाय दोपहर देर में पूर्व में कुछ बादल विकसित होंगे और रहकर वर्षा होगी। शाम के समय और रात के दौरान बादल घिराएंगे और पूर्वी, दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों पर वर्षा होगी। ऊंचाइयों पर विशेषकर कोहरा छाएगा। सुबह के समय हवा हल्की बहेगी और दिन के दौरान दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी। खुले जगहों में झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 3 मीटर 50 सेंटीमीटर की ज्वार उठेंगी। खुले समुद्र में लगूनों में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। शाम के समय धीरे धीरे समुद्र की स्थिति में, विशेषकर पूर्वी और उत्तरी लगूनों में सुधार आएगी। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा, ऊंचाइयों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:31 पर और सूर्यास्त शाम 5:57 पर।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है और कंसल पर हमारे सहयोगियों शिव और अपर्णा का सहयोग मिला है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। अल्बाट्रोस स्ट्रीट पोएटोसा में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सैमोती गौरी रामनोत, जिन्हें राजकुमारी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन की 2:16 पर उनके घर पोएटोसा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गिश्लोई की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 2:16 PM। क्लावेट रोड सेबास्टोपोल में 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राजू बंधु, पैदाश नाम हरी और जिन्हें राजू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे संजीव बंधु के घर सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टू डी हॉफ बॉस नून। बारात रोड लालमाटी में 43 साल 43 ईयर्स ओल्ड की श्री अविनाश रामगोती, जिन्हें अश्विन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 3 बजे उनकी माँ रामभवती कन्या के घर लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए

जिनका डिमास की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन टी डी एट 3 PM। कालीमाई रोड मोसेलमो सैतौंद्री में उनहत्तर साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री रमेश जीबन जिन्हें विनोद कादेत के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे विकास जीबन के घर मोसेलमो सैतौंद्री से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं के शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। होल्डन एवेन्यू एल्विशा सैपिया में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री गोविंदा स्वामी मर्दे जिन्हें प्लुगा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले जेल में बागबान थे की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनकी पत्नी सुरेखा मर्दे के घर एल्विशा सैपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी कमीशन टीटीआर 2:30 PM। ये शुक समाचार एक बार फिर सुन लेती हैं। एवेन्यू इकबाल वाले पितू में 79 साल की हफीज बीबी महादू पैदाशी नाम नियामत खान और जिन्हें दादी हफेज के नाम से लोग ज़्यादा जानती थी इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा इनके बेटे के मकान वाली पीटो से कल रात 8:30 बजे इनका जनाजा कल रात इनके बेटे के घर से वाली पीटो से रात 8:30 बजे उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान ले जाया गया फ्यूनरल लॉसनाट एट 8:30 PM। एवेन्यू सदना कैटरबोन में 51 साल की 51 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कविता रामचंद पैदाश्याम राजवानी और जिन्हें सोनी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 1:30 बजे उनके घर सुदना कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फीरिनों की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन टुडे एट 1:30 PM। पैराडाइज लेन ओशनो में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री चितानंद सांतक जिन्हें फिया बुशों के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके घर ओशनो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। कारियोलिस रोड सेजियामिल फोरसाइड में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की श्री धनेश्वर सिंह बालक जिन्हें कमलेश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 10:00 बजे उनके घर सेजियामिल फोरसाइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेजियामिल सीमेट्री रोड की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुडे 10 AM। मोसेलमो ब्लू प्रिंट हाईलैंड्स में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री मेगावेन मुर्गिया जिन्हें मायन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12:00 बजे उनके घर हाईलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा के शमशान भूमि ले जाई जाएगी कमीशन टुडे एट 12:00 PM। एमिलिया स्ट्रीट पुथोदो विलाज में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री रामचंद्र बुलाकी जिन्हें मिलात के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 10:30 बजे उनकी पत्नी सालदा बुलाकी के घर पुथोदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी कमीशन टुडे एट 10:30 AM। रॉय रोड कैथोकोको में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री सत्यदेव मीतू जिन्हें चंद्रदेव के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो टैक्सी ड्राइवर थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2:00 बजे उनकी पत्नी प्रतिमा मीतू के घर कैथोकोको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 2:00 बजे लावोचा की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन टुडे एट 2 PM। डिस्पेंसरी रोड विच एमिल थ्रियोली में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री रविंद्रनाथ जयमंगल जिन्हें अखिलेश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 11:00 बजे उनके घर विचमिल थ्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS Lane थ्रियोली की शमशान भूमि ले जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मैडम लुलू रोजबेल में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री मुनई इयापा

शिमुने इयापा, जिन्हें सिमाद्री के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11:30 बजे उनके बेटे रवि इयापा के घर मदाम लुलु रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे एट 11:30 AM। न्यू रोड रोशनो में 69 साल के 69 years old के श्री मथुरा प्रसाद गुदौ, जिन्हें राजू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनकी पत्नी वेदवंती गुदौ के घर रोशनौ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचा की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 11:30 AM। भुजावन रोड अपर दागोचिया में 62 साल की 62 years old की श्रीमती उमा किस्तू, पैदाश नाम निर्मल और जिन्हें उमा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर भुजावन रोड पदागुजा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकों सैफिया की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टूडे एट 10 AM। राय रोड विचैमिल थ्रियोली में 65 साल के 65 years old के श्री शांति देव रामेसर, जिन्हें जयसिंह के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर विचैमिल थ्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी थ्रियोली की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टूडे एट 10 AM। कश्मीर रोड लेस्पेरेंस ट्रेबुशे में 49 साल के 49 years old के श्री ऋषिदेव बोयरब, जिन्हें ऋषि के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी माँ रूपा बोयरब के घर लेस्पेरेंस ट्रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

सुबह के 7:34 सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। रविवार 16 अगस्त के हमारे इस प्रातकालीन स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। सारा ध्यान वापस इंग्लिश फुटबॉल पर, जिसकी लीग चैंपियनशिप शुक्रवार से आरंभ हुई, किंतु इस बीच फ्रेंडली मैचों का सिलसिला जारी है और आज शाम 6 बजे से महामुकाबला आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के बीच द एफए कम्युनिटी शील्ड में, ये इंग्लिश प्रीमियर लीग की शुरुआत है, की शुरुआत का ऐलान है, पर्दा आज से ही उठ रहा है इंग्लिश फुटबॉल पर। सो आज शाम 6 बजे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल, आर्सेनल जो लीग जीत चुका है और मैनचेस्टर सिटी एफए कप विनर है, दोनों के बीच ये पहला मैच होगा आज द प्रिंसिपालिटी स्टेडियम में आज शाम 6 बजे आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। और फ्रेंडली मैचों का सिलसिला हमने कहा जारी रखा गया। कल मैनचेस्टर यूनाइटेड की हार हुई, एसी मिलान ने उसे 4-2 से परास्त किया और ऐसी वैसी टीम नहीं, एक ऐसी टीम जिसे कोच कर रहा है एसर्टेन रूबेन अमोरिन, जो पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोच कर चुका है। सो रूबेन अमोरिन के एसी मिलान ने मैनचेस्टर यूनाइटेड माइकल कैरिक को 4-2 से परास्त किया। हैरी मैग्वायर ने खेल के दूसरे मिनट पर ही गोल स्कोर किया, उसके बाद चुकवे

उडिनेज़े का इक्वलाइजर, फिर पैट्रिक डोगू, फिर एक के बाद एक एसी मिलान ने तीन गोल दागे। आलयूसी से गोंसालो रामोस और रूबेन लॉफ्टस चीक ने अंतिम कील ठोंकी। मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 एसी मिलान 4। ये द रेड डेविल्स का आखिरी फ्रेंडली मैच है। अब सारी तैयारी और सारा ध्यान इंग्लिश प्रीमियर लीग पर। बता दें कि कल मार्कस राशफोर्ड को भी खेलने का मौका दिया गया, यानी कि वो एक यूनाइटेड खिलाड़ी है। इसी में चेल्सी ने कल रियल सोसिएदाद को 3-1 से परास्त किया। मोगन रोजर्स ने अपना पहला गोल स्कोर किया द ब्लूज के लिए। और गोआ पेड्रो का एक डबल, चेल्सी 3 रियल सोसिएदाद 1। बायर्न म्यूनिख ने भी आरबी लाइप्ज़िग को 3-1 से हराया। डियाज के बाद ब्राउन और मुसियाला ऑन टारगेट रियल मैड्रिड के लिए। टोटेनहम हॉटस्पर की भी जीत हुई 3-0 से होफाइनहाइम के विरुद्ध। रिचार्लिसन और मू का एक डबल। डॉर्टमुंड 2 एएस रोमा 2। इंटर मिलान ने कल रात बेटिस को 1-0 से हराया। जॉन स्टोन्स का ये गोल रहा पहला, नया खिलाड़ी है और नया गोल। इंटर मिलान 1 बेटिस 0। बाकी मैचों में एस्टन विला की हार हुई। बोरुशिया मोंचेनग्लादबाख 2 एस्टन विला 1। फिर माइंस ने बोर्नमुथ को 2-1 से हराया। ब्रेंटफोर्ड 7 फ्रैंकफर्ट 0। ब्राइटन 1 बोलोनिया 0 और एवर्टन 1 लिल 1। आज भी कई फ्रेंडली मैच रखे गए हैं। आज के फ्रेंडली मैचों में लिवरपूल 2-2 बार आज खेलने वाला है। दो आखिरी मुकाबले, सबसे पहले आज शाम, आज दिन के 2:30 बजे 2:30 PM लिवरपूल वर्सेस कुमो, एक पहला स्क्वाड मैदान पे उतरेगा। फिर रात 9 बजे लिवरपूल वर्सेस कुमो फिर से, जिसमें सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया जाएगा। फिर अगले सप्ताह से प्रीमियर लीग शुरू। बाकी मैचों में टोटेनहम हॉटस्पर का मुकाबला आज शाम 3 बजे होफाइनहाइम से, 3:30 बजे एफसी बासेल वर्सेस एफसी बार्सिलोना, रात 7 बजे शाल्के 04 खेलेगी रियल मैड्रिड के विरुद्ध, और नॉटिंगहम फॉरेस्ट का मुकाबला आज ब्रेस्ट से, तो न्यूकासल यूनाइटेड खेलेगी स्ट्रासबर्ग के खिलाफ। कल के खेले गए मैचों के नतीजे सुनिए। इंग्लिश लीग चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को पहला मैच ड्रॉ पर संपन्न हुआ। कल बोल्टन ने प्रेस्टन को 2-1 से हराया। ब्रिस्टल सिटी 0 मिलवॉल 2 चार्ल्टन 2 डर्बी काउंटी 1। मिडलसब्रो भी 2 लिंकन सिटी 1 नोविच 1 वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन 2 पोर्टसमुथ 1 क्वींस पार्क रेंजर्स 3 स्टोक 1 स्वानसी 2 शेफील्ड यूनाइटेड 0 बर्मिंगहम सिटी 0। सो आज भी दो अन्य मैच रखे गए हैं, खासतौर पे वेस्टहैम यूनाइटेड जो अभी नीचे गई है, प्रीमियर लीग से रिलेगेट होकर गई है, उसका पहला मैच होगा एवे मैदान पे बर्नले के खिलाफ। और इस बीच वेस्टहैम ने एक नए खिलाड़ी को साइन कर लिया है जो इंग्लिश लीग चैंपियनशिप के लिए एक रेकर्ड फी है। सो वेस्टहैम ने सेल्टिक के स्कॉटिश चैंपियन सेल्टिक के मिडफील्डर आने एंजल्स को 22 मिलियन पाउंड में साइन किया है। 22 मिलियन पाउंड जो इस चैंपियनशिप के लिए एक नया रिकॉर्ड है। ऐसे में कई खिलाड़ियों का आना जाना जारी है। इंटर मिलान ने इंग्लैंड के फुलबैक टोटेनहम हॉटस्पर के डिफेंडर जेड स्पेंस को साइन कर लिया है केवल 30 मिलियन यूरो में। सो जेड स्पेंस चला गया इंटर मिलान में, जहां पर जॉन स्टोन्स पहले से हैं और कल उसने अपना गोल भी स्कोर किया। रोबर्टो डी ज़ेबियो से क्लब में ही रखना चाहता था, लेकिन स्पेंस जाने की कगार पे था, वो जाना चाहता था। सो स्पेंस अब वापस इटली में, जहां पर उसकी शुरुआत हुई थी जेनोवा में साल 2024 में। बढ़ते हैं क्रिकेट की ओर, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पे बांग्लादेश क्रिकेट टीम धूम मचा रही है। प्रथम टेस्ट के चौथे दिन वो एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 426 पर ही ढेर हुई, ऑल आउट हुई। जवाब के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी केवल 198 पर और दूसरी पारी इसी समय 7 विकेट के नुकसान पर 243 रन ऑस्ट्रेलियाई टीम बना रही है। यानी कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया 15 रनों से आगे है और 3 विकेट अभी भी बचे हैं, लेकिन बांग्लादेश के सामने एक पूरी पारी। बांग्लादेश कभी भी ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पे जीत हासिल नहीं कर पाई है। और भारत का मुकाबला श्रीलंका से आजकल हो रहा है। पहले टेस्ट मुकाबले में कल दिन की शुरुआत अच्छी रही भारतीय टीम के लिए, केवल 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बना

पाए देव पडिक्कल ने 131 नॉट आउट नाबाद रन बनाए हैं। टेनिस में सिनसिनाटी ओपन के प्रथम टेस्ट में ही लेजेंडरी खिलाड़ी नोवाक जोकोविच लुढ़क गया, उसे हराया। अर्जेंटीना के चियागो तिरांटे ने 2-6, 6-4 और 6-4 से। और आज इसी सिनसिनाटी ओपन में डैनिल मेडवेदेव के अलावा सित्सिपास, सबालेंका, जोदार, रॉयबाकिना आदि टॉप सीड खिलाड़ी कोर्ट पे उतर रहे हैं। मॉरिशस में आईसीसी सीजन 4 के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में कल शाम थॉमस कुक टाइगर्स ने एपी पिल लेपर्ड्स को 6 विकेट से परास्त किया। मैच हाउकिंस बना मैन ऑफ द मैच। इसी तीसरे हफ्ते के अंतर्गत आज भी 2 अन्य मैच खेले जाएंगे। सुबह 9 बजे मापू क्रिकेट मैदान पे एएमजी पैंथर्स का मुकाबला वन हेल्थ जागुआर से है, और दिन के 1 बजे मापू स्थित एसएसओ क्रिकेट ग्राउंड में ही डिफेंडिंग चैंपियन कैंपस अब्रोड लायंस का सामना करेंगे कॉन्टिनेंटल चीटास। और क्षेत्रीय फुटबॉल में रोशनवा दुदला बीमा सुवेनिया कप टूर्नामेंट में आज शाम 3:30 बजे पॉइंट दिलास का बार्सिलोन एफसी और वेल लायंस के बीच जबरदस्त मुकाबला है। सो भूलेगा नहीं, आज शाम 6 बजे प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 का पर्दा उठ रहा है द एफए कम्युनिटी शील्ड के साथ। आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी शाम 6 बजे। देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu. Toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
2: MBC Radio, 24 hours a day.
3: इस समय सुबह के 7:12 हुए हैं. आपके लिए प्रस्तुत है विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्यूपिप के निवासियों को सूचित करता है कि दनपत लेन, मिसिसिपी स्ट्रीट, रिवियस स्ट्रीट, जूरी लेन के एक भाग में और आसपास की गलियों में कल सोमवार 17 अगस्त को सुबह 8:30 से दिन के 1 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्यूपिप के ही निवासियों को सूचित करता है कि रेजिडेंस किंग जॉर्ज, स्पा शालोम, एपिसरी, MFDP, फुट क्लिनिक और आसपास की गलियों में कल सोमवार 17 अगस्त को दिन के 2 से शाम के 5 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी. मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी. इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें. ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से.
4: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर.
3: रेडियो मॉरिशस पर आप लोगों का हम स्वागत करते हैं. इस समय 7:14 हुए हैं और सुबह का नजराना कार्यक्रम

आप लोगों के लिए सुबह का ये नजराना होता है बड़ा ही पावन, बड़ा ही मूल्यवान नजराना। हर सुबह जब आँख खोलते हैं हम, तो हमें नई सुबह को देखकर हम मन हमारा खुश हो जाता है, हमें बेहद खुशी होती है। और ऐसे में हम धन्यवाद देते हैं ऊपर वाले को कि हमारे जीवन में एक नई सुबह और आई। एक नई सुबह का मतलब एक नई उमंग, एक नया एहसास, एक नया साहस। इसी नए साहस के साथ आपका ये दिन, आपकी ये सुबह बहुत मंगलमय रहे, ऐसी हमारी दुआ है। हर कदम पर चलिएगा, हर कदम पर देखिएगा, एक प्रगति की राह अवश्य मिलेगी आपको।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत को स्वतंत्र करने में आर्य समाज ने कैसी भूमिका निभाई, आइए विचार करें। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में हुआ था। उस समय यह संग्राम सफल नहीं हुआ, परंतु इसके तुरंत बाद रानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि अब से भारत के लोगों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, उन्हें रोजगार दिया जाएगा, उनके धर्म की रक्षा की जाएगी और उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस घोषणा पर भारतीय बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उन्होंने अंग्रेजों को बदल दिया, परंतु महर्षि दयानंद ने अपने देशवासियों को सावधान करते हुए कहा कि चाहे कोई कितना भी करे, पर विदेशी राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं होता है, स्वदेशी राज्य ही अच्छा होता है। महर्षि दयानंद जहाँ भी प्रवचन देते थे, वहाँ अंग्रेजों की गुलामी को समाप्त करने का आग्रह करते थे। अंग्रेज उनसे कहते थे, आप जिस स्थान पर भाषण देते हैं, वहाँ आपके लिए हम अच्छी व्यवस्था करते हैं, आपकी सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, इसके बावजूद भी आप अंग्रेजों को भारत से निकालने की बात करते हैं, ऐसा क्यों? स्वामी दयानंद उत्तर देते थे, मैं इस देश में जन्मा हूँ, इस मिट्टी का अन्न खाकर और यहाँ का जल पीकर बड़ा हुआ हूँ, इस मिट्टी को स्वतंत्र करना मेरी प्राथमिकता है, इसके अतिरिक्त मैं एक सन्यासी हूँ, सन्यासी का काम संसार का कल्याण करना है और संसार का भला स्वराज्य से ही होता है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद से प्रभावित होकर बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा। आर्य समाजी परिवार में जन्मा वीर भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। लाला लाजपत राय कहा करते थे, आर्य समाज मेरी माता है और दयानंद मेरे पिता हैं। रोलट एक्ट का विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई और वे शहीद हुए। महर्षि दयानंद के शिष्य सोमदेव को भी अंग्रेजों का विरोध करने के कारण फांसी की सजा सुनाई गई। जब वे फांसी पर चढ़ रहे थे, तब अंग्रेज जनरल ने उनसे पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने उत्तर दिया, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन देखना चाहता हूँ। अंग्रेज जनरल ने कहा, यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, अगर तुम्हारी कोई दूसरी इच्छा हो तो बताओ। सोमदेव ने उत्तर दिया, मरने से पहले मैं यहीं पर हवन करना चाहता हूँ। सोमदेव की यह इच्छा पूर्ण करने के लिए हवन कुंड और सामग्री की व्यवस्था की गई। उसने हवन किया और फिर भजन गाते हुए वह फांसी पर चढ़ा। हवन करने के लिए उसने जिस कुंड का प्रयोग किया था, आज वह कुंड हरियाणा के झज्जर गुरुकुल के म्यूजियम में सुरक्षित है। महर्षि दयानंद का हर एक शिष्य देशभक्त बना। इनमें से स्वामी श्रद्धानंद का नाम प्रसिद्ध है। एक दिन वे गुरुकुल में अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे, तभी एक अंग्रेज पुलिस अफसर वहां पहुंचा और उसने स्वामी जी से कहा, मैंने सुना है कि आपके गुरुकुल में बम है, क्या यह सत्य है? स्वामी श्रद्धानंद ने उत्तर दिया, यहाँ के छात्र वेदों का अध्ययन करते हैं,

0: इस धार्मिक स्थल पर एक पुलिस अफसर का क्या काम? पुलिस अफसर ने कहा, मैं इस गुरुकुल में फिर से आऊंगा और इसकी तलाशी लूंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, जरा रुकिए, क्या आप यह जानना नहीं चाहेंगे कि बम बनाने का फॉर्मूला क्या है? पुलिस अफसर ने झेंपते हुए पूछा, क्या है बम बनाने का फॉर्मूला? स्वामी जी ने उसे एक पुस्तक देते हुए कहा, यह लीजिए, यह देव दयानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, बम बनाने का फॉर्मूला आपको आ जाएगा। पुलिस अफसर ने कहा, आप मेरे साथ होशियारी करते हैं? स्वामी श्रद्धानंद बोले, हाँ, आप होशियार हो जाइए, क्योंकि मेरे गुरुकुल का एक एक छात्र बम के समान है। जिस दिन इनमें से एक बम फटेगा, उस दिन इस देश में स्वराज्य की स्थापना होगी। श्रोताओं, भारत का स्वतंत्रता दिवस जब भी हम मनाते हैं, तब महर्षि दयानंद और आर्य समाज के वीरों को श्रद्धा अर्पित करते हैं। उनसे प्रेरणा लेते हुए हम भी सच्चे देशभक्त बने, अपने राष्ट्र का कल्याण करें और पूरे विश्व का भला करें। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
2: सुबह का नजराना आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं और सुबह की इस बेला में एंटरटेनमेंट भी आपका बहुत प्यार से करने वाले हैं हम। गानों का ये सिलसिला है, गानों के इस सिलसिले में हम आपको साधना सरगम की आवाज़ सुनवाएंगे और साधना सरगम की आवाज़ में आप अपनी आवाज़ मिलाएंगे, ये दावा करते हैं हम। चलिए ज़रा सुनते हैं हम फिर तेरी कहानी याद आई का ये गाना, और इस गाने में वो बातें हैं जिन बातों को हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं कि जाते हैं हम उनके दर पर, जाते हैं हम उनके दर पर जिनसे मोहब्बत होती है, जिनके प्रति हमारे मन में लगन होती है, और उनके दर पर आ जाने पर इसी की उम्मीद करते हैं, इसी लगन की, इसी मोहब्बत की उम्मीद करते हैं। इसीलिए जो आ जाए आपके दर पर, प्यार से उनका स्वागत ज़रूर कीजिएगा।

0: झलकियां
1: झलकियां तो बस चलिए आप लोगों के लिए हम आप लोगों को देते हैं एक छोटा सा डिटेल हमारे रेडियो के कार्यक्रमों के बारे में। हमारा रेडियो हमारे रेडियो मॉरिशस पर आप लोगों के लिए कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं। फिलहाल तो सुबह का नजराना चल रहा है, 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे अशिता से, और उसके बाद हम लेकर आएंगे पैगाम आपके नाम आपके लिए। आप अपने अपनों को पैगाम ज़रूर भेज पाएंगे, और पैगाम भेज कर आप अपने अपनों के साथ अपनी बॉन्डिंग बहुत अच्छा बना पाएंगे। अभी से ही आप हमें भेज सकते हैं अपने मैसेजेस, कई सारे मैसेजेस आ ही चुके हैं, हमारे श्रोता आदि हो चुके हैं हमारे प्रोग्राम का। तो चलिए हम आपको नंबर बता देते हैं, 5251705 है हमारे मैसेजेस वाला नंबर, आप ज़रूर मैसेजेस भेजना शुरू कर सकते हैं। तो पैगाम आपके नाम कार्यक्रम के बाद आप लोगों के लिए लेकर आएंगे आज के संक्षिप्त समाचार 9 बजे, फिर उसके बाद अनवर महफिल कार्यक्रम होगा, स्पेशल प्रोग्राम ऑन जुमा मस्जिद की ओर से यमन नबी के अवसर पर, और उसके बाद 10 बजे आप सुन पाएंगे आज का उर्दू कार्यक्रम निसार से, फिर

11 बजे संस्कृत समाचारों के बाद आप तमिल प्रोग्राम सुंदरम से सुन पाएंगे। राजेंद्र पेश करेंगे आज का तेलुगु प्रोग्राम 12 बजे और 1 बजे सुनिएगा आज का मराठी प्रोग्राम सीताबाई दरमिया से और जिन लेकर आएंगे चाइनीज प्रोग्राम 2 बजे। फिर उसके बाद 3:30 बजे आप सुन पाएंगे आज का गुजराती कार्यक्रम जिसे लेकर आएंगी रत्ना और चार

6 बजे समाचार बुलेटिन होगा और 6:30 बजे चाइनीज प्रोग्राम होंग होंग की प्रस्तुति में फिर कल एवेनी लेकर आएंगे आज का तमिल प्रोग्राम। 7 बजे 7:30 बजे स्वरला वेदी का कार्यक्रम ये होगा आज का हमारा तेलुगु प्रोग्राम वंदना की प्रस्तुति में। फिर 7:50 पर आप शीर्ष से सुनिएगा आज का गीत गंगा मराठी भाषा में कार्यक्रम। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम प्रोग्राम डॉक्टर अलका धनपत से सुनिएगा और 8:40 पर समीर लेकर आएंगे उर्दू प्रोग्राम महफिले शब। उषा आप लोगों का मनोरंजन करेंगी भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के साथ रात्रि के 9 से 11 बजे तक और 11 बजे से 12 बजे तक मनोरंजन आपका वेदिता करेंगी आज के सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ पुराने नगमों के प्रोग्राम के साथ। तो ये थी एक छोटी सी झलक हमारे रेडियो कार्यक्रमों के बारे में, हमारे रेडियो मॉरिशस कार्यक्रमों के बारे में आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए। चलिए अब मनोरंजन आपका हम गुदगुदी मूवी के गाने के साथ करते हैं। कुमार सानू अपनी आवाज़ बहुत प्यार से हम तक पहुंचा रहे हैं, चलिए सुनते हैं ज़रा हम दिल की ये आवाज़। दिल तो होता ही ऐसा है, हर पल कोई ना कोई ख्वाहिश हो रहती ही है हमारे दिल में और हर ख्वाहिश आप लोगों की पूरी हो जाए ऐसी उम्मीद करते हुए ये गाना हम आप लोगों के नाम करते हैं।

0: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।
1: इस समय 7:42 हुए हैं।
0: एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
2: वो लोगों ने आपको काम से निकाल दिया क्या?
3: ये पूछने के लिए इतनी दूर से आए हो?
2: नहीं, मैं आपसे एक काम की बात करने के लिए आया हूँ।
3: क्या काम की बात है?
2: यहीं खड़े खड़े कर लेंगे।
4: क्यों आजकल अक्सर कहीं उड़ जाता है।
0: रविवार 16 अगस्त को एमबीसी 3 पर दिन के 12 बजे 7:30 फेरे मोर देन अ वेडिंग, दिन के 12 बजे 2007 की ये मूवी अभय देओल और गुलफना अकबर फिल्माई गई 7:30 फेरे मोर देन अ वेडिंग।
4: झूठी का आंगन अपने सभी।
0: एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
5: तुम हमेशा ऐसे ही बकवास करती हो या आज कोई स्पेशल ओकेजन?
6: तुम्हें उठाकर म्यूजियम में रखना चाहिए।
5: वे किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया?
7: जब कोई प्यार में होता है तो कोई सही गलत नहीं होता।
5: क्यों खेल रही हो अपनी जिंदगी के साथ?
7: क्योंकि मेरा फेवरेट गेम है।
0: रविवार 16 अगस्त को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 हिंदी फीचर फिल्म जब वी मेट, 2007 की मूवी रोमांस से भरपूर मूवी शाहिद कपूर और करीना कपूर पर फिल्माई गई जब वी मेट।

तो बढ़े जरा हम कहानी की ओर। इस समय 7:49 हुए हैं। चलिए एक कहानी पढ़ते हैं आपके लिए, जीवन की गूंज, द इको ऑफ लाइफ। एक छोटा सा लड़का और उसके पिता एक घने जंगल से गुजर रहे थे। अचानक लड़के का पैर फिसला और गिर गया। लड़का गिर गया और उसके घुटने में चोट लगी। वह दर्द से चीखा, आह! बच्चे को आश्चर्य हुआ कि पहाड़ से एक आवाज गूंजी, आह! बराबर उसकी तरह। लड़के को जिज्ञासा हुई कि ये किसकी आवाज है।

आप तो समझ ही रहे होंगे कि ये उसकी आवाज़ की ही गूंज थी, उसकी ही आवाज़ का इको था। जिज्ञासा और गुस्से में लड़का चिल्लाया, तुम कौन हो? आवाज़ ने उत्तर दिया, तुम कौन हो? वह वापस चिल्लाया, कायर। आवाज़ ने जवाब दिया, कायर। फिर लड़के ने अपने पिता की ओर देखा और पूछा, यह क्या है पिताजी? पिता मुस्कराए, उन्होंने एक गहरी सांस ली और पहाड़ की ओर चिल्लाए, तुम बहुत प्यारे हो। आवाज़ ने उत्तर दिया, तुम बहुत प्यारे हो। पिता चिल्लाए, तुम एक चैंपियन हो। आवाज़ ने भी जवाब दिया, तुम एक चैंपियन हो। लड़का चुपचाप खड़ा रहा, वह भ्रमित था। फिर उसके पिता ने समझाया, लोग इसे गूंज कहते हैं बेटा, लेकिन यह वास्तव में जीवन का ही प्रतीक है। जीवन हमको यही वही वापस देता है जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं या फिर करते हैं। सही समझे आप, हमारा जीवन हमारे कार्यों और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। यदि हम अधिक प्रेम और सम्मान चाहते हैं तो अधिक प्रेम और सम्मान देना पड़ेगा। अगर देंगे आप प्रेम तो वापस आपको प्रेम ही मिलेगा, जो देंगे आप सम्मान तो वापस आपको सम्मान ही मिलेगा। इसीलिए हमें भी औरों का सम्मान करना चाहिए। औरों को प्रेम देना ही पड़ता है ताकि हमको प्रेम और सम्मान मिले। ये जीवन बहुत ही उलझा हुआ है। इस उलझे हुए जीवन को आप प्रेम और सम्मान से अवश्य सुलझा लीजिएगा।

बस आप लोगों को हम छोड़े जाते हैं ताकि आप सुन पाएं समाचार बुलेटिन, समाचार भोजपुरी में आशिता से। थोड़ी ही देर में सुनिएगा भोजपुरी में समाचार, और हमें हम आपसे मिलेंगे समाचारों के बाद पैगाम आपके नाम लेकर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घर में लाल जा फजिड़ के 8 बजे तक। आठ बजे के भोजपुरी समाचार में सब कोई के स्वागत करल जाता, सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। सबसे आगे हमनी देश के बारे में बतियावब जा। जैसे आप लोग जानत हव कि काल भारत के 80 स्वतंत्रता दिवस मनावल गल और इ अवसर पर भारतीय तिरंगा के गर्व से फहरावल गल और इ समारोह इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र फिनिक्स में लगल। इ अवसर पर भारतीय मूल के सब आदमी लोग हुआ मौजूद रलन जा। भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में विशेष संबंध के रेखांकित करण गल। मॉरिशस में भारत की उच्चायुक्त हाल में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा, मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम के भारत यात्रा के भी उल्लेख करलन। उच्च स्तरीय यात्रा के बखत कई गो ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर करगल और यही अवसर पर एक विशेष समारोह भी लगल जहाँ पर मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित दूसर राजनीतिक और राष्ट्रसभा के सदस्य भी भाग लेलन जा। ई एगो रंगारंग कार्यक्रम रहल। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज दिमास के दक्षिण अफ्रीका खातिर रवाना होयन। ऊ हुआ जयहन ऊ सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कमेटी यानी कि सादेक के 46वां शिखर सम्मेलन में भाग ली हन। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा काल लेंदी 17 अगस्त के करियन। सम्मेलन में क्षेत्रीय एकीकरण, बुनियादी ढांचा के विकास और कृषि क्षेत्र में बदलाव के संगे संगे कई गो अहम मुद्दा पर भी बतियावल जाए। ई बरिस शिखर सम्मेलन के विषय है अधिक न्यायपूर्ण विश्व के दिशा में बुनियादी ढांचा के विकास, कृषि के रूपांतरण और महत्वपूर्ण खनिज के माध्यम से लचीला, टिकाव आ समावेशी औद्योगिकरण के बढ़ावा दे के। शिखर सम्मेलन से प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम यानी कि कर माध्यम से ऊ दूसर राष्ट्राध्यक्ष आ शासनाध्यक्ष से भेंट करियन। ई बैठक में साझा हित के मुद्दा आ क्षेत्र के रणनीतिक प्राथमिकता, विशेष रूप से खाद्य आर ऊर्जा सुरक्षा आर व्यापार पर बतियावल जाए। मॉरिशस में मच्छी पकड़े होला जो जहाज बाती ओकर बारे में बतियाला जा। मॉरिशस में मच्छी पकड़े के जहाज के निगरानी व्यवस्था के आर मजबूत करे के फैसला लेवल गल बाटे। मत्स्य मंत्री अरविंद बुलेल बोलन कि क्षेत्र में अवैध या बिना सूचना और अनियमित रूप से करल जाए होला मच्छी पकड़े के गतिविधि हर बरिस $5 बिलियन से जस्ती आर्थिक नुकसान करेला। मॉरिशस खातिर ई एगो महत्वपूर्ण चुनौती है। देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से जस्ती में फैलल बाटे और अवैध मछली पकड़े से निपटे खातिर क्षेत्रीय सहयोग के बहुत अहम मानल जाता। यही मद्देनजर मंत्रिमंडल सुख के 14 अगस्त के फिशरीज वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 के लागू करे के मंजूरी दे लें जा। एकर उद्देश्य जहाज के निगरानी प्रणाली के जस्ती प्रभावी बनाए के है और अवैध मछली पकड़े के गतिविधि पर अंकुश लगाए के है। ये भी उल्लेखनीय बात बाटे कि मॉरिशस में वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम 2005 से मौजूद बाटे। ई नवा सुधार ई प्रकार फिशरीज आग 2023 के तहत 2024 में मजबूत करेगा नियामक ढांचा के पूरक, जेकर में विशेष रूप से VMS स्वचालित पहचान प्रणाली यानी कि जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली बा ई सब ई में शामिल बाटे। मॉरिशस में अब बात करी ला जा हमनी खेतीहर के बारे में। खेतीहर लोग के बारे में मॉरिशस में

0: Small Farmers Welfare Fund are Food and Agricultural Research and Extension Institute, FARE, John Bate, Ekar Ville, Yannike Fijon, Se Kisan Loke Pratinidhi Virod, Dekhaile Hawanja. Kisan Ke Pratinidhi E. विलय से चिंता जताईले हवन जा दोनों संस्था कृषि क्षेत्र में काम करेलन जा पर उलो की जिम्मेदारी अलग अलग है. स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड किसान की सामाजिक और वित्तीय सहायता देवेला जबकि फारे मुख्य रूप से अनुसंधान प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग पर ध्यान देवेला. किसान के प्रतिनिधि लोग के अनुसार इफिजों से कृषि परिवार के मिले होला सामाजिक सहायता कमजोर हो जाए और अनुसंधान गतिविधि भी प्रभावित हो. उ लोग सुझाव दिले हों जा कि दोनों संस्था के बरकरार रखे के चाहें यानी कि अलग अलग काहे कि उ लोग के जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से अलग है और उ लोग दोनों काम दोहरा नई नई दोहरे अंजा और किसान के प्रतिनिधि सरकार से कोनो फैसला ले से आगे किसान से परामर्श करे के भी मांग कर ली हवन जा. दूसरे देश के समाचार में बढ़ी ला जा हमनी इंडोनेशिया देने जहां पर 7.7 तीव्रता के एगो शक्तिशाली भूकंप से कम के अला से कमती 47 जना के मौत हो गल बाटे. फ्लोरेस टापू में आली भूकंप के बाद कई गुझटका फिर महसूस कर गल और सैकड़ों इमारत के नुकसान पहुंचल बाटे. दूसरा दिने दक्षिण लेबानन में इसराइल के हमला में कम से कम 11 जना के मौत हो गल बाटे. लेबानन के अधिकारी बोले हवन जा कि मरे होला आदमी में महिला और लड़का लोग शामिल हवन जा जबकि इसराइल हमला में हिजबुल्ला के एगो कमांडर के निशाना बनाए के बात बोले हवन. ते ही संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भइल. ध्यान से साथ देला ओका खातिर धन्यवाद. अभी संगे रह बढ़ब जा हमनी मरनी के समाचार देने.
1: Your news on NBC Play NBC Radio.tv.
0: मरने के समाचार सुना अल्बाट्रोस स्ट्रीट पॉइंट साहब में. अल्बाट्रोस स्ट्रीट पॉइंट साहब में 76 बरिस के 3 कोरी 16 बरिस के श्रीमती सैमावती गावरी रामनोत जोन सूर्यदेव रामनोत के पत्नी रलन और जोन राजकुमारी के नाम से भी आदमी इनकरा जान थलन के मृत्यु हो गल बाटे. इनकर अर्थी आज 2:15 पर इनका घरे पॉइंट साहब से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रिश्लियों के शमशान भूमि ले जावल जाए. क्रिमिशन टुडे एट 2:15 PM कालीमाई रोड मोसल मोसल सेंट्रे में 69 बरिस के 3 कोरी 9 बरिस के श्री रामेश जीवन जिनका विनोद कादेत के नाम से भी आदमी जैसे जान थन जाके मृत्यु हो गए बाटे. इनकर अर्थी आज 1:00 इनकर बेटा विकास जीवन के घरे मोसल मोसल सेंट्रे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के शमशान भूमि ले जावल जाए. क्रिमिशन टीरियर 1:30 PM क्लावेट रोड सेबास्टोपोल में 91 बरिस के 4 कोरी 11 बरिस के श्रीमती राजो बंधु पैदाशम हरिया जिनकरा राजो के नाम से बेदमी जिस जहाँ था जाकर मृत्यु होगा बाटे. इनका अर्थी आज 12:00 इनकर बेटा संजीव बंधु के घर सेबास्तोपोल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के शमशान भूमि ले जाव जाए. क्रिमिशन टीरिया 1:30 PM बारात रोड लालमाटी में 43 बरिस के 2 कोरी 3 बरिस के श्री अविनाश रामगोती जिनकरा अश्विन के नाम से बेदमी जैसे आथन जाके मृत्यु हो गल बाटे. इनकर अर्थी आज सांझ के 3 कर्मा रामभौती कन्या के घरे लालमाटी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मेजिन कौरीमास के शमशान भूमि ले जाओ जाए. क्रिमिशन टीरिया 3 PM ओल्डन एवेन्यू एलवेशा सैंपिया में 78 बरिस की 3 कोरी 18 बरिस के श्री गोविंदा स्वामी मोदी जिनकरा प्लोगा के नाम से बेदमी जैसे आथन जाके मृत्यु हो गल बाटे. इनकर और जो आगे प्रिजों में गौजैरलन इनकर अर्थी आज 2:00 इनकर पत्नी सुरेखा मर्दी के घरे अल्वेशा सैंपिया से उठा के अंतिम संस्कार करती से कौसा सैंपिया की शमशान भूमि ले जाओ जाए. क्रिमिशन टुडे 1:30 PM आवेन्यू सुदना कैट्रोबोन में 51 बरिस के 2:11 के श्रीमती कविता रामचंद पैदाश्राम राजवानी जिनकरा सोनी के नाम से बेदमी जस्ती जानथन जाकर मृत्यु होकर बाटे. इनकर अर्थी आज दिन के 1:00 इनका घरे सुदना कैट्रोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सुल्फिरिनो के शमशान भूमि Javel Jagri Mission today at 1:30 PM. Paradise Lane, Roshnome, Paradise Lane, Roshnome.

59 बरिस के 59 इयर्स ओल्ड के दुकरी 19 बरिस के श्री चित्तानंद संतोख, श्री चित्तानंद संतोख जिनका फिया भूषों के नाम से वेद में जिससे जानते हैं कि मृत्यु होगा बाती इनका अर्थी आज 12 बज के आधा इनका घर है होशों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के शमशान भूमि ले जाओ जाए कमीशन टूडी एट हाफ पास नून कारियोलिस रोड 16 मील फोरेसाइड में कारियोलिस रोड 16 मील फोरेसाइड में 58 बरिस के दुकुड़ी 18 बरिस के श्री धनेश्वर सिंह बालक, श्री धनेश्वर सिंह बालक जिनका कमलेश के नाम से बेदमी जैसे जहाँ जाकर मृत्यु होगा बाटी इनकर अर्थी आज फजर के 10 बजे इनकर घर है 16 मील फोरेसाइड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सिजिया मिल के शमशान भूमि ले जाओ जाए क्रिमिशन टीरिया 10 AM मुसलमान ब्लू प्रिंट हाईलैंड्स में 44 बरिस के दुकुरी 4 बरिस के श्री मेगावेन मुरुगिया, श्री मेगावेन मुरुगिया जिनकरा मायन के नाम से वेदमी जैसे जाते हैं जाकर मृत्यु हो गल बाटे इनका अर्थी आज दिन के 12 बजे इनका घर हाईलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बिगा के शमशान भूमि ले जाओ जाए क्रिमिशन टीरी एट नून एमिलिया स्ट्रीट पुत्रदो विलाज में 74 बरिस के 3 करोड़ 14 बरिस के श्री रामचंदर बुलाकी जिनका मिलाप के नाम से बेदमी चिशी जहाँ थे जाके मृत हो गल बाटी इनकर अर्थी आज फजीर के 10 बज के आधा इनकर पत्नी सालदा बुलाकी के घर पुत्रदो विलाज से उठा के अंतिम संस्कार का तीर बेल मौके शमशान भूमि ले जाओ जाए क्रिमिशन टी टी एट हाफ पॉस टेन ए एम राय रोड कैथ्रोकोको में 73 बरिस के 3 करोड़ 13 बरिस के श्री सत्यदेव मितु जिनकरा चंद्रदेव के नाम से वेद में जिस जाते हैं जैक अर्जुन आगे टैक्सी ड्राइवर अलन उनकर अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर पत्नी प्रतिमा मितु के घर रॉय रोड कैथ्रोकोको से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावा चौके शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 2 PM डिस्पेंसरी रोड विच एमिल थ्रियोली में 55 बरिस के 2 करोड़ 15 बरिस के श्री रविंद्रनाथ जयमंगल जिनकरा अखिलेश के नाम से बेदमी जैसे जहाँ थे जाकर मृत्यु होगल बाटे इनकर अर्थी आज फजर के 11 बजे इनकर घर विच एमिल थ्रियोली से उठा के अंतिम संस्कार खातिर SSS लेन थ्रियोली के शमशान भूमि ले जाओ जाए कमीशन टूडे एट 11 AM मैडम लुलू रोजबेल में 85 बरिस के 4 करोड़ 5 बरिस के श्री मुनय यापा जिनकरा सीमाद्री के नाम से बेदमी जैसे जानते हैं जाकर मृत्यु होगल बाटे इनकर अर्थी आज 11 बज के आधा इनकर बेटा रवि यापा के घर है मैडम लुलू रोजबेल से उठा के अंतिम संस्कार का थीर यूनियन पार्क के शमशान भूमि ले जाओ जाए कमीशन टूडे एट हाफ पॉस 11 AM न्यू रोड होशनो में 69 बरिस के 3 करोड़ 9 बरिस के श्री मथुरा प्रसाद गुदौ जिनकरा राजू के नाम से बेदमी जैसे जानते हैं जाकर मृत्यु होगल बाटे इनकर अर्थी काल फजीर के 11 बज के आधा इनकर पत्नी वेदवंती गुदौ के घर उष्णो से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावाचो के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट हाफ पॉस 11 AM रॉयल रोड विच एमिल थ्रियोली में 65 बरिस के 65 ईयर्स ओल्ड की 3 करोड़ 5 बरिस के श्री शांतिदेव रामेश्वर जिनकरा जय सिंह के नाम से बेदमी जिससे जहाँ थे जाके मृत्यु होगा बाटे इनकर अर्थी आज फजीर के 10 बजे इनकर घर विच एमिल थ्रियोले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर त्यामिनी थ्रियोले के शमशान भूमि ले जाओ जाए मिशन टूडे एट 10 AM भुजावन रोड अपदागुच्या में 62 बरिस के 3 करोड़ 2 बरिस के श्रीमती उमा किश्तू पैदाश नाम निर्मल जिनकरा उमा के नाम से बेदमी जैसे जाते हैं जाकर मृत्यु होगल बाटे इनका अर्थी आज फजीर के 10 बजे इनका घर है अपदागुच्या से उठा के अंतिम संस्कार खाती है सैंपिया के शमशान भूमि ले जाओ जाकर मिशन टूडे 10 AM कश्मीर रोड लेस्पेरेंस ट्रेबुशे में 49 बरिस के 2 करोड़ 9 बरिस के श्री ऋषिदेव बैरब जिनकरा ऋषि के नाम से बेदमी जैसे जानते हैं जाकर मृत्यु होगल बाटे इनकर अर्थी आज फजीर के 10 बजे इनकर माँ रूपा बैरब के घर लेस्पेरेंस ट्रेबुशे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पितों के शमशान भूमि ले जाओ जाए कमीशन टूडे एट 10 AM शोक और दुख में डूबल इस सब परिवार के संगे हमने के दिली संवेदना बाटें।

0: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu. Toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
1: So, इस समय 8:15 है और आप अभी सुन रहे थे भोजपुरी में समाचार आशिता से. रेडियो मर्शस आप लोगों की सेवा में, रेडियो मर्शस आप लोगों के मनोरंजन के लिए. लेकर आए हैं आपके लिए हम आज का पैगाम आपके नाम, आपके फ्रेंड्स और आपके आपकी फैमिली के बीच बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए हमारे इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होइएगा. पैगाम हमारा ये है कि खुश रहने के लिए औरों को खुश ज़रूर रखिएगा, मुस्कुराहट पाने के लिए औरों के मुस्कुराने के बहाने ज़रूर बना कीजिएगा. तो हमारा साथ दे रही हैं सुबह से माला सुमागू जी, बहुत बहुत शुक्रिया माला सुमागू जी, इतना प्यार देने के लिए. कहना है उनका कि सितारों के बीच से चुराया है आपको, दिल से अपना दोस्त बनाया है आपको. इस दिल का ख्याल रखना जी, क्योंकि इस दिल के कोने में बसाया है आपको. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया माला सुमागू जी अपने दिल में जगह देने के लिए. चलिए ज़रा साथ निभाते हैं हम आपका और हमारा साथ निभाइएगा आप भी इसी बॉन्डिंग के साथ, इसी दोस्ती के साथ. हमारा आपका ये साथ है पैगाम आपके नाम कार्यक्रम में. हमारा साथ दे रहे हैं सूरज शर्मा सजादा जी सुबह से, बहुत बहुत शुक्रिया साथ के लिए सूरज जी. और आज जन्मदिन है धनवंती राजा राम जी का, नहीं कल था जन्मदिन धनवंती राजा राम जी का, जो मौदाल बे की रहने वाली हैं. 75th जन्मदिन मना रही हैं अपना धनवंती जी और उनका पूरा परिवार उनको बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रहा है. वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू धनवंती राजा राम जी. हमारी पूरी टीम यही दुआ करती है कि आपको अच्छी सेहत मिले.

और इधर जन्मदिन हम जन्मदिन की मंगल कामनाएं हम सांता जी को देते हैं। सुनीता जी घोंघोप की रहने वाली है और सुनीता जी अपनी भाभी सांता जी को जन्मदिन की मंगल कामनाएं दे रही है। सांता जी को उनके बेटे आश्ले की तरफ से, बहू सोनम, केशव की तरफ से, बेटी यानी शाह, दामाद सत्यम और नाती नील की तरफ से बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएं। उनकी प्यारी सी गुड़िया से नातिन भी उनको कह रही है अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू नानी जी, जन्मदिन की बहुत सारी मंगल कामनाएं आपको सांता जी हमारी पूरी टीम की तरफ से।

तो आज हमारा साथ हमेशा की तरह विश्वानी दुमन जी भी दे रही हैं। उन्होंने हमारे सभी श्रोताओं को हैप्पी संडे कहा है और श्रावण मास की मंगल कामनाएं भी भेजी है। और साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं फ्रीकॉन फ्लैक्स से अनीता जी। वे अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सभी को श्रावण मास की मंगल कामनाएं दे रही हैं और यहाँ पर जन्मदिन की मंगल कामनाएं हम दे रहे हैं माला झरी जी की तरफ से। प्रजित खटखट की माला झरी ने अपने पति ईश्वर जी को बहुत सारी मंगल कामनाएं भेजी हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद भेजी है जन्मदिन के अवसर पर। 63rd बर्थडे मना रहे हैं उनके पति ईश्वर जी और उन्हें पूरे परिवार की तरफ से मंगल कामनाएं मिली हैं, शुभकामनाएं मिली हैं उनके बेटे दीपक और बेटी रीमा की तरफ से और बेशक उनकी पत्नी माला झरी जी की तरफ से। और उनकी यही दुआ है कि उनको लंबी उम्र मिले, उनको अच्छी सेहत मिले। और हमारी तरफ से भी बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत सारी खुशियों की दुआएं दे रहे हैं हम आपको और उम्मीद यही करते हैं कि इस जहां में आपको हर कदम पर सुख और शांति का एहसास हो, सुख और शांति आपके जीवन से कभी दूर ना हो।

चलिए जरा हम सुदेवी जी की का मैसेज पढ़ते हैं। सुदेवी जी ने वाकुआ से लिखा है कि 15 अगस्त को मालेगा की दीदी शोभा जी ने अपना जन्मदिन मनाया और उन्हें बेस्ट विशेज मिले हैं, बहुत सारे प्यार भरे विशेज मिले हैं भैया भाभी सुमति की तरफ से और नीसेज की तरफ से, सहेली माला की तरफ से, जयश्री, बिंदु और पूरे रामरतन, गोपिन, कुवाहु, रघुबर और जालू परिवार की तरफ से। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू शोभा जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपका जन्म।

और इधर इधर मौदालवे के अनीता जी का कहना है कि 14 अगस्त को उनकी भतीजी दीपशिका इतू ने सिविल मैरिज की है विवेक कोकिल के साथ। सो इतू परिवार, गोगा परिवार, कोकिल और शिबोचन परिवार मिलकर दीपशिका और विवेक को मुबारकबाद दे रहे हैं और बहुत सारा आशीर्वाद बड़ों की तरफ से, बहुत सारा प्यार छोटों की तरफ से और हम उम्र की तरफ से बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएँ विवेक और दीपशिका जी को।

या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर कॉल कीजिएगा हमको। अगर मैसेज भेजना चाहते हैं तो 5251705 है नंबर हमारा, और जो कॉल करना चाहते हैं तो 4028085 है नंबर। आप ज़रूर अपने अपनों को मैसेजेस भेजिएगा। कोई भी इवेंट हो, खुशी का मौका हो, खुश रहने का हक हर किसी को है, और अपनों से कुछ पा जाने का पल हर किसी का होता है। तो ये पल आप दे दीजिएगा उनको, अपनी खुशी उन तक पहुंचाइएगा, उनकी खुशी में शामिल हो जाइएगा। पैगामों के सिलसिले में हम पेश करेंगे बेस्ट विशेस इंग्लैंड की राजश्री जी को। आज इंग्लैंड में रह रही राजश्री भोला जी का जन्मदिन है, और उनको उनके इस स्पेशल डे पर, यानी कि स्पेशल बर्थडे पर, यानी कि 60th बर्थडे पर उनको बहुत सारी मंगल कामनाएं मिल रही हैं पूरे परिवार की तरफ से। 18th अगस्त को उनका जन्मदिन है, और उनके पति कृष्ण जी, बेटे किशन, कवि, युवराज, आदर्श, कृष्टि, दिव्या, परी, शनाया, मुन्ने, पिंकी, बबीता, आरती, भाभी, रानी और पूरे तुलसी परिवार की तरफ से जो मौदार बे के रहने वाले हैं, बहुत सारा आशीर्वाद मिला है, बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारी छप्पियाँ मिली है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू हमारी पूरी टीम की तरफ से राजश्री जी।

और इधर अनीता जुगारा जी ने फ़ोन किया हमको बासे खुद कथोबोन से, और बासे कथोबोन से उन्होंने ये बताया कि उनके नाती अभय का और उनकी नातिन खुशी का बर्थडे था, अभय का बर्थडे था वेंसडे को और खुशी का बर्थडे था थर्सडे को, और बड़ी खुशी के साथ पूरे परिवार ने जन्मदिन मनाया। अंजू जी की तरफ से, रवीन जी की तरफ से, दिया की तरफ से, मंगरू परिवार की तरफ से, नाना नानी की तरफ से, नाना नारायण की तरफ से, और नानी अनीता जी की तरफ से, मामू विक्की, मामी पूनम, खुशी की तरफ से, कुशल की तरफ से, और मौसी नताशा, मौसा अविनाश, अक्की ओम की तरफ से, जुगारा परिवार, मंगू परिवार, मंगल परिवार की तरफ से दोनों बच्चों को बहुत सारी मंगल कामनाएं। अभय और खुशी अपने जीवन में हमेशा तरक्की की राह पर रहे, तरक्की की राह लंबी रहे उनके लिए, मतलब हर मोड़ पर एक मंजिल आए उनको, और हर मंजिल के बाद एक और अच्छी सी मंजिल आए उनके जीवन में, यही दुआ करते हैं उनके लिए।

जीवन में औरों की वजह से जो हंसी मुस्कुराहट रहती है वो मुस्कुराहट बहुत पावन हुआ करती है। इसीलिए आप अपने अपनों को हमेशा हमेशा प्यार से कोई ना कोई संदेश ज़रूर भेजा कीजिएगा। एक छोटा सा संदेश बड़ी खुशी लेकर आता है। इधर प्रेमनाथ और सुबिता जी जो रहते हैं पुतोहतो, उनकी शादी की सालगिरह है, 43वीं सालगिरह है उनकी, और उन्हें बहुत सारा प्यार बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है। उनके जीवन में हमेशा खुशियां रहे, उनके बीच में ढेर सारा प्यार बढ़ता रहे, ऐसी दुआ उनके पूरे परिवार की है। विश्वानी जी पुतोहतो से संदेश भेज रही हैं, अपने भैया प्रेमनाथ और भाभी सुबिता जी को मंगल कामनाएँ दे रही हैं, ढेर सारा आशीर्वाद भी दे रही हैं। बस यही दुआ है कि उनके साथ में हमेशा पवित्रता रहे और हमेशा प्यार बढ़ता रहे। प्रेमनाथ और सुबिता जी को उनके बेटों की तरफ से मनीष मानव और मयूर की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहू अंजलि लक्ष्मी की तरफ से, छोटे से विवान की तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारे मंगल कामनाएं। आपका जीवन हमेशा हमेशा खुशियों से भरा रहे।

चलिए जरा हम वार्मेस्ट विशेस पेश करते हैं निफ्यू हुड को, जो घोंपा के रहने वाले हैं, शहनाज की तरफ से और उनकी पूरी फैमिली की तरफ से, और बेस्ट विशेस भैया फैजाल और भाभी जाहिरा को भी दे रही हैं शहनाज जी, जिनकी शादी की सालगिरह है। आपकी शादी की सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी पूरी फैमिली की तरफ से ये दुआ मिली है कि खुशियों का गुलदस्ता हमेशा महकता रहे आपके जीवन में।

और इस बार चलिए जरा हम संगीता जी की पसंद का जी की तरफ से पेश करते हैं राखी के अवसर पर एक गाना। उन्होंने अपने सभी भाइयों को, उनके भाई संजय, नीतीश, संदीप, संजीत को और पंचाय परिवार को मंगल कामनाएं भेजी है रक्षाबंधन की। और हमारी

और इधर कल शुरू हो रहा है स्कूल, बैक टू स्कूल। आशा जानू जी कॉटेज से सभी बच्चों को विश कर रही है बहुत अच्छी तरह से आप लोग अपने स्कूल को ज्वाइन कीजिएगा, स्कूल रिजम्पशन बहुत प्यारा रहे ऐसी दुआ है आशा जानू जी की। और ख़ास तौर पर ऋषभ को बहुत अच्छी मंगल कामनाएं दी हैं नानी माँ कुमारी की तरफ से, भाई शुभम की तरफ से, मामा आरती, पापा राज और मौसी आशा की तरफ से हैप्पी रिजम्पशन। और आज प्रेमी लासी गुलाम जी कौदीमा से अपने पति को याद कर रही है, उनकी पति की याद में उन्होंने पूरे सी गुलाम परिवार की तरफ से और सभी बच्चों की तरफ से बहुत सारी दुआएं की है कि वे हमेशा शांत रहे, उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिले। ये नाता इतना गहरा होता है कि मौत के बाद भी हम किसी को भुला नहीं सकते।

तो बस हमेशा मूवी के गाने के साथ ही समाप्त होता है पैगाम आपके नाम, और इस कार्यक्रम के साथ साथ हमारी आपकी मुलाकात भी समाप्त होती है। आज का संडे आपके लिए बहुत मंगलमय रहे, आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहे, ऐसी दुआ करते हुए हम सुरेखा आपसे आज्ञा चाहेंगे। शुभ संडे, शुभ दिन, नमस्कार।

0: 800 and 19 kilohertz. This is Radio Marches.
1: देश विदेश की खबरें लेकर स्टूडियो में आ गई है आशिकता, तो चलिए उनसे सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आपको आशिकता।
2: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। करीब 84

0: 80,000 छोटे किसान, पशुपालक और उनके परिवार स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड और फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट फारे के प्रस्तावित विलय यानी फ्यूजन से सीधे प्रभावित हो सकती है। किसानों के प्रतिनिधियों ने इस विलय का विरोध करते हुए ये चिंता जताई है। दोनों संस्थाएं कृषि क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड किसानों को सामाजिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि फारे मुख्य रूप से अनुसंधान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। किसानों के प्रतिनिधियों के अनुसार फ्यूजन से कृषि परिवारों को मिलने वाली सामाजिक सहायता कमजोर हो सकती है और अनुसंधान गतिविधियाँ भी प्रभावित हो सकती हैं। उनका सुझाव है कि दोनों संस्थाओं को बरकरार रखा जाए, उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से अलग की जाएं और कार्यों में दोहराव से बचा जाए। किसानों के प्रतिनिधियों ने सरकार से किसी भी फैसले से पहले किसानों से परामर्श करने की मांग भी की है। मॉरिशस ने मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है। मत्स्य मंत्री अरविंद बुलेल के अनुसार क्षेत्र में अवैध, बिना सूचना के और अनियमित रूप से की जाने वाली मछली पकड़ने की गतिविधियों से हर साल $5 बिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान होता है। मॉरिशस के लिए ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है और अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए सहयोग को बेहद अहम माना जा रहा है। इसी के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने कल शुक्रवार को फिशरीज विसेल मॉनिटोरिंग सिस्टम अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 को लागू करने की मंजूरी दी। इसका उद्देश्य जहाजों की निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना और अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। मेलरोज जेल में 43 वर्षीय कैदी अविनाश रामगोती की मौत फांसी लगने से दम घुटने के कारण हुई थी। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर्स सुदेश कुमार गंगाधीन और प्रेस और प्रेम चमन द्वारा कल किए गए पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि हुई। अविनाश रामगोती को कल सुबह मेलरोज स्थित उसकी कोठरी में मृत पाया गया था। वह वर्ष 2006 में लालमाटी में दो भाभियों इंदिरा और आशा झरी की दोहरी हत्या के मामले में 37 साल की जेल की सजा काट रहा था। मुकदमे के दौरान उसने इस अपराध में अपने चाचा राजेश रामलोगन को भी शामिल बताया था। राजेश रामलोगन की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी और इस मामले में पुलिस की कथित बर्बरता का आरोप लगा था। इस मामले में MCIT की 3 सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया था, हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार घटना में कई संदिग्ध शामिल थे और घायलों में से एक की हालत गंभीर है। पुलिस को कल शनिवार तड़के स्थानीय समय अनुसार करीब 1:28 पर छात्रों के रेजिडेंस हॉल के बाहर हुई इस घटना की सूचना मिली। गोली लगने से घायल सभी 5 लोगों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें से 4 की चोटें जानलेवा नहीं बताई गई है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि किसी संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। विश्वविद्यालय में लगाया गया अस्थायी लॉकडाउन हटा लिया गया है, लेकिन परिसर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की बड़ी मौजूदगी अब भी बनी हुई है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे, बढ़ते हम एक शुभ समाचार की ओर। कॉम्बुम्बई लेन नंबर तीन वाकवा में 81 साल की 81 years old की श्रीमती शकुंतला गोपाल पैदाश नाम तुकाराम और जिन्हें अक्का मानू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:15 पर उनके घर कॉम्बुम्बई वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोमामेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 2:15 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: उम्मीद है कि आप सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से खैर व आफियत से हैं। आज की खसूसी प्रोग्राम अनवार महफिल में हम आप सब का दिली खैर मकदम करते हैं। इस ख़ास प्रोग्राम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुकद्दस किताब कुरान करीम की चंद आयात मुबारक की तिलावत से शुरू करते हैं। तिलावत का शर्फ हासिल कर रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद इशफाक उज़िया। आइए समाअत करते हैं।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى

ولسوف يعطيك ربك فترضى.

तेरी आता का सा हो जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो।

कि सुबह जा फिजा का साथ हो, उनके प्यारे मुँह की सुबह जा फिजा।

जब खुलने लगे या इलाही नाम आए, आमाल जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क सतारे, खता का साथ हो, ऐब पोशे खल्क सतारे, खता का साथ हो। या इलाही जब सरे शमशी

لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، قدسیوں کے لب سے آمین۔

मोहम्मद इश्क मुस्तफा का साथ हो या इलाही हर

0: मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो।
1: मोहतरम सामीन, आपको याद दिला दें कि इस वक्त आप रेडियो मॉरिशस के ज़रिए जामिया मस्जिद पोर्टलिस में रिकॉर्ड किया गया खसूसी प्रोग्राम अनवार महफिल समाप्त कर रहे हैं। अब आइए मोहम्मद अरशद रज़ा नाऊ की रूह परवर आवाज़ में कसीदा बुर्दा शरीफ समाप्त करते हैं।

الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد

मोहतरम सामीन, इस वक्त आप अनवार महफिल प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। आइए मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद इशफाक उज़िया की सहरंगेज़ आवाज़ में या तोयबा या

0: तैयबा ये कलाम समाप्त करते हैं।
1: सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह وسلم عليك يا حبيب الله।

हैं और अनवारे महफिल प्रोग्राम जारी है। आइए मोहतरम जनाब मोहम्मद सलाउद्दीन अलबशीर से गुलाम की दिलनवाज आवाज़ में ये नात समात करते हैं। नियामतें बांटता।

मौज़ी सामीन, अब आइए जनाब मोहम्मद मुजम्मिल नूरबख्श की आवाज़ में ये नात शरीफ समाअत करते हैं, बुला लो मुझे फिर।

रहेगा बिस्तर मदीने में। बुला लो फिर मुझे।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आशिता के साथ। नमस्कार आपको आशिता।
1: नमस्कार या श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम आज रविवार को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। विथ सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी यानी साडेक के 46वें साधारण शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा कल सोमवार 17

0: अगस्त को करेंगे। सम्मेलन में क्षेत्रीय एकीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और कृषि क्षेत्र में बदलाव सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय है अधिक न्यायपूर्ण विश्व की दिशा में, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि के रूपांतरण और महत्वपूर्ण खनिजों के माध्यम से लचीले, टिकाव और समावेशी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। शिखर सम्मेलन से के माध्यम से प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम अन्य राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में साझा हित के मुद्दों और क्षेत्र की रणनीतिक प्राथमिकताओं, विशेष रूप से खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा तथा व्यापार पर चर्चा होगी। और साथ में बात करते हैं हम, करीब 84,000 छोटे किसान, पशुपालक और उनके परिवार स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड और फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट से के प्रस्तावित विलय यानी फ्यूजन से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। किसानों के प्रतिनिधियों ने इस विलय का विरोध करते हुए ये चिंता जताई है। दोनों संस्थाएं कृषि क्षेत्र में काम करती हैं लेकिन उनकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड किसानों को सामाजिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि फैगे मुख्य रूप से अनुसंधान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। किसानों के प्रतिनिधियों के अनुसार फ्यूजन से कृषि परिवारों को मिलने वाली सामाजिक सहायता कमजोर हो सकती है और अनुसंधान गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं। उनका सुझाव है कि दोनों संस्थाओं को बरकरार रखा जाए, उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से अलग की जाएं और कार्यों में दोहराव से बचा जाए। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MFDC इस साल अपनी स्थापना के 40 वर्ष पूरे कर रहा है। MFDC स्थानीय प्रतिभाओं को समर्थन देने के साथ साथ विदेशी फिल्म निर्माण को मॉरिशस में आकर्षित करने के लिए भी काम करता है। इस वर्ष और अगले वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। अपनी 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर MFDC सिनेमा द विलास कार्यक्रम भी आयोजित करेगा, जिसका उद्देश्य मॉरिशनों को स्थानीय फिल्मों और फिल्म निर्माण से परिचित कराना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई में 1992 के बाद पहली बार किसी तूफान के सीधे टकराने की आशंका के बीच प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। श्रेणी 1 का तूफान लाला हवाई के तट से कुछ दूरी पर सक्रिय है और इसकी रफ्तार 75 मील यानी करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे खराब स्थिति में बिग आइलैंड में करीब 63 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है और समुद्र में लगभग 3 फीट ऊंची तूफानी लहर उठ सकती है। बिग आइलैंड के लिए हरिकेन चेतावनी जारी है, जबकि माउई काउंटी, हुआउ, कावाई और निहाओ के में ट्रॉपिकल तूफान की चेतावनी प्रभावी है। अधिकारियों ने लोगों से बाढ़ और भूस्खलन समेत संभावित जानलेवा व परिस्थितियों के लिए तैयार रहने को कहा है। तूफान के कल शनिवार को बिग आइलैंड के दक्षिणी सिरे से टकराने या उसके बेहद करीब से गुजरने की संभावना, यानी कि कल सोमवार को, जिसके बाद ये पश्चिम की ओर बढ़ेगा। और उधर साथ में हम आपको बता देते हैं कि अमेरिका के मिडवेस्ट क्षेत्र में इस सप्ताह आए शक्तिशाली तूफानों के बाद इंडियाना में कम से कम 5 लोगों की मौत हो की पुष्टि की गई है। अधिकारियों के मुताबिक तूफानों ने क्षेत्र के कई राज्यों को प्रभावित किया है। इंडियाना के गवर्नर माइक ब्राउन ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राज्य की ओर से की गई राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा की मांग को मंजूरी देंगे। इससे तूफान से प्रभावित लोगों और इलाकों के लिए संघीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद। साथ रहे, सुनते हैं शोक समाचार। कैथोबो रोड मोनाकोई में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मुनिया दुखी पैदाशाम तूफानी और जिन्हें हसवंती के नाम से बुक ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी बेटी कविता दुखी के घर मोनाकोई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रावोंचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

सामईन कराम, अभी आपने सूरा मुल्क की तिलावत समात फरमाई। रबीउल अव्वल का चांद जब आसमान पर तुलू होता है तो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। फ़ज़ा में दरूद व सलाम की महक बिखर जाती है। हर गली कूचा हर जबान पर एक ही नाम गूंजने लगता है, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये महीना सिर्फ मीलाद का नहीं बल्कि तजदीद मोहब्बत, तजदीद वफ़ा और तजदीद सीरत का महीना है। हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम पढ़ना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुताबिक ढालने की कोशिश करनी चाहिए। इस्तकबाल रबीउल अव्वल का असल मकसद ही यही है, मतलब ही यही है कि हर दिन, हर अमल और हर सांस नक्श मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो। सामईन, आइए अपना हम पैगाम की ओर बढ़ते हैं और समात करते हैं आज का पहला पैगाम। गौबा से मोहतरमा शहनाज, बल्कि फूफी शहनाज अपने भांजे हुद को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करती हैं और साथ ही साथ भाई फैज़ल और भाभी जहीरा को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सभी रिश्तेदारों की तरफ से ढेर सारी दुआएं, आप लोग खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। सामईन, आप लोग भी इसी तरह अपने पैगामात, अपनी दुआएं हम तक पहुंचा सकते हैं 5251700 5 पर। तब तक के लिए ये अगला कलाम आप सभी के नाम।

मौज़ सामीन, रबीउल अव्वल की आमद दरअसल खुशियों, रहमतों और रूहानी बहार का पैगाम है। ये वो महीना है जिसमें कायनात को अपना सबसे बड़ा इनाम जाने कायनात साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में वो रोशनी अता हुई जो क़यामत तक पूरी दुनिया को मुनव्वर व मुजल्ला करती रहेगी। रबीउल अव्वल वो महीना है जब हमें अपने नफ्स, अपनी ज़बान और अपने किरदार से ऐलान करना है कि हम वाकई ग़ुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सामईन, अगला पैगाम सुनते हैं। क्यूपिप से मोहतरमा रुबीना की तरफ से एक पैगाम मौसूल हुआ है। सभी बच्चों को कल के लिए नेक ख्वाहिशात और ढेर सारी दुआएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब छुट्टियां ख़त्म हुई और तीसरा और आखिरी सेमेस्टर शुरू होने वाला है, और आखिर में मोहतरमा रुबीना ने एक कलाम की फरमाइश की है जश्न आमद रसूल। तो आइए ये अगला कलाम उनके नाम।

सामईन कराम, माह रबीउल अव्वल वालिदैन के लिए सुनहरा मौका है कि वो अपने बच्चों के दिलों में यौमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अहमियत और अजमत पैदा करें। इस तरह बच्चे विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत से वाकिफ़ होंगे। उन्हें तिलावत कुरान में शरीक करें, नात खानी में शरीक करें, ज़िक्र अज़कार में शरीक करें। इन आमाल के ज़रिए बच्चों के दिलों में आकाए दो जहां दिलबरे जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का बीज बोया जा सकता है। ये बीज अगर बचपन ही से बो दिया जाए तो पूरी ज़िंदगी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू देता है। सामईन, अगला पैगाम। आज इरफान बच्चन की सालगिरह है। उनकी बीवी अमीरा, बेटे जैहान और तमाम रिश्तेदारों की तरफ से सालगिरह की मुबारकबाद और ढेर सारी दुआएं, खुशियां। तुगदुदुस से जहीर और शर्मिन चेदी की शादी की पहली सालगिरह है। अल्लाह ताला इस जोड़ी को सलामत रखे और ढेर सारी खुशियां अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।

सामईन इकराम, हर साल जब माह रबीउल अव्वल की नसीमें बहार चलती हैं तो ईमान की कलियां खिलने लगती हैं, खश्क दिलों पर मोहब्बत की बारिश होने लगती है। ये वो मौसम है जिसमें हर आशिक का दिल नगमासर होता है

दरूद व सलाम से मुअत्तर हो जाती हैं। रबीउल अव्वल सिर्फ महीना नहीं बल्कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जश्न दिल हैं, मोमिनों के लिए ईमान की महक और इंसानियत के लिए पैगाम निजात। ये वो लम्हात होते हैं जब तारीख ने रोशनी का लिबास पहना और वक्त ने नई सिमत अख्तियार की। सामईन, आइए पैगामात का सिलसिला जारी रखते हैं। कातबोन से मोहतरमा शबनीस पियाबक्स और मोहतरमा रेशमा अब्दुल्ला अपनी वालदा के हक़ में इस साल सवाब की दरख्वास्त पेश करती हैं, जिनको इंतकाल हुए एक साल गुज़र चुका है। तो हम दुआ करते हैं कि ए गफूर रहीम मरहूमा के लिए अपनी बेपाया मगफरत के दरवाज़े खोल दे, उनके नामाइज आमाल को दरगुजर फरमाए और लग्जिशों को दरगुजर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।

सामईन कराम, सैयदुल अंबिया हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरापा खैर व बरकत हैं, उनकी निगाह करम से बिगड़ी सवर जाती हैं, उनके सदक़े दुआएं कबूल होती हैं और उनके नाम नामी से घरों में सुकून उतरता है। सबसे बड़ी बात यह कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें सिर्फ उनके ज़माने तक महदूद न थीं, बल्कि आज भी हर आशिक उनके नाम से फैज़याब हो रहा है और इंशाअल्लाह ज़वजल ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। इसलिए इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िले बरेली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि खाक हो जाएँ अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाएँ अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। सामईन, आइए आज के लिए आज का आखिरी पैगाम समाप्त करते हैं। क्यूपिप से मोहतरमा फौजिया अपने शौहर मरहूम रिशाद तुगाबाली के लिए इस साल सवाब की दरख्वास्त पेश करती हैं। उनके बच्चे मुस्लिमा, यासीन, मुजफ्फर, मरियम, नवासी, जिन्नेरा और अम्मारा की तरफ से ढेर सारी दुआएं और अल्लाह तबारक व ताला मरहूम की मगफरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।

अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं, अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते हैं। मोहतशम सामईन, इसी शेर के साथ हमारी आज की बज़्म अकीदत नशरियात अख्तिताम पज़ीर होती है। यह बज़्म मुस्तफ़ा तो ख़त्म हो रही है, मगर ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ख़त्म न होगी। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा ता क़यामत होता रहेगा। सामईन, आज भी आपके पैगामात और फरमाइशों का बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह भेजते रहिएगा, क्योंकि आपके पैगामात इस महफिल की जान हैं। आइए सामईन, माह रबीउल अव्वल का इस्तकबाल खुलूस दिल से करें, अपने घरों को चरागा करें, दिलों को इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर करें और ज़बान को दुरूद व सलाम से मुअत्तर करें। अल्लाह तबारक व

ताला हमें मोहब्बत मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा, नस्बत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, अख़लाक मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, अब अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। दिल नादा को रुख्सत होना गवारा नहीं, मगर यही रस्म दुनिया है। पर वादा है कि अगले इतवार को फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह निगहबान।

0: 819 kHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मॉरिशस वाले पड़े सरिया के काले 11 மணி ஆகிறது।

0: Tetta.
1: Yeah.
2: Number five.
1: படத்தின் பெயர் மனிதன் தெய்வ மகளம்.

0: Number one, number one.
1: Album Talli Pogra.

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: आइए सुनते हैं एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनान के रहने वालों को विशेषकर ओब्लो डाम, डोमेन डे ला ग्राव, ओब्लो पोल्ट्री, MTS बनान, विलाज डे बनान के रहने वालों को सूचित करता है कि सोमवार 17 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सभी मरम्मत कार्यों के बाद बिना किसी पूर्व सूचना की बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। CB अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
0: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
3: Radio Musti.
4: North, South,
3: 103.5.
4: East, West,
3: 96.4.
4: Center,
3: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Mutyala Swaralu.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्वर तरंग।
2: स्वर तरंगा।

819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

听众朋友，这是毛利求是广播电台886频道，今天又到了华语歌曲欣赏节目时间，下面请大家一起来欣赏几首优美的歌曲。

大家好，我是歌手庞龙，欢迎来一听音乐网，试听我最新专辑的首播单曲《校花》，希望大家也能支持我的最新EP专辑《校花》。

好，听众朋友，接下来让我们一起来欣赏任其贤为我们带来的《花好月圆》。好，下面有请大家一起来欣赏。

नमस्कार, आदाब, सलाम और आप सभी को गुड आफ्टरनून। हम और आप कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हैं पूजा। घड़ी मिलाते चलिए, इस समय शाम के 4:06 हो चुके हैं और हर रविवार की तरह कुछ ना कुछ नए विषय लेकर हम अवश्य आते हैं। और हमारा आप कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आप अपना जो विचार है, ओपिनियंस है, हमारे साथ साझा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं, जो भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर तो वही है 4028085 पर। और आज का जो विषय है वो है क्रिटिसिज्म, यानी क्रिटिक्स।

तो आज हम और आप कार्यक्रम में हम बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन शायद जिंदगी की यही सच्चाई है और सच्चाई से ही जुड़ी हुई है। किसी की निंदा करना बहुत आसान है, लेकिन उसकी जगह खड़े होकर उसकी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। हम अक्सर किसी इंसान की पूरी कहानी जाने बिना उसके बारे में फैसला सुना देते हैं। वो ऐसा क्यों करता है, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा फैसला क्यों लिया, देखो कितना बदल गया। लेकिन कभी हमने ये अपने आप से पूछा है, आखिर उसे ऐसा बनने पर मजबूर किसने किया? किसी पर इल्जाम लगा दीजिए, उसके बारे में दो बातें दूसरों से कह दीजिए, उसकी एक गलती को बार बार दोहरा दीजिए और देखिए कैसे एक इंसान की पूरी पहचान उसकी एक गलती से बना दी जाती है। किसी को बुरा साबित करके खुद को अच्छा साबित करना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन याद रखिए, दूसरे को छोटा करके कोई इंसान बड़ा नहीं हो जाता। किसी की कमजोरी पर हंसने से हमारी ताकत साबित नहीं होती और किसी की गलती गिनाने से हमारी अच्छाई भी साबित नहीं होती। तो आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। तो 4028085 पर आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप सभी का इंतज़ार है हम और आप कार्यक्रम में।

0: तो आइए हमारे साथ हरीश जी जो हैं जुड़ चुके हैं। नमस्ते हरीश जी।
1: ए वेरी गुड संडे आफ्टरनून टू यू पूजा जी।
0: आपको भी हरीश जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ, थोड़ा ठंड के वजह से कुछ सर्दी सर्दी आ रही है।
0: सर्दी आ गई है, मुझे भी सर्दी आ गई है।
1: शायद आवाज में कुछ बदली हो सकती है।
0: हाँ हाँ,
1: आपको मालूम हो जाएगा। तो आप जो विषय आपने रखी है जजी, ये हमारे रोज के रोज हम सुनने को मिलता है।
0: हाँ।
1: रोज हमको देखने को मिलता है और हम कभी कभी उसमें हम भी शामिल हो जाते हैं।
0: हाँ।
1: हम विक्टिम हो जाते हैं। इट इज ए टेम्पटेशन। हमको ऐसे हालात होता है जब हाँ। हमको कुछ टेप्ट कर देता है, हमको तोते कर रहा है कुछ बुरा काम करने के लिए।
0: हाँ।
1: कभी कभी ऐसा होता है हालात की वजह से एक अच्छा इंसान, बहुत अच्छा प्रिंसिपल रसूल सब ठीक है, लेकिन हालात की वजह से वो कभी बिगड़ सकता है।
0: हाँ।
1: बिगड़ने के पॉसिबिलिटी है।
0: हाँ।
1: क्योंकि वो कैसे बोलते हैं, इंसाफ ना इंसाफी के कारण जहाँ देखता है वो ना इंसाफी, जहाँ देखता है ना इंसाफी, और वो कोई उसको समझ नहीं पा रहे हैं।
0: हाँ।
1: तो उसमें जो फ्रस्ट्रेशन है उसको कुछ उसके करैक्टर को बदल देता है।
0: हाँ।
1: और बस करवाहट से बात करती है, करवाहट से आपको रेस्पॉन्ड करती है। ये
0: हाँ।
1: ये बहुत बुरी अवस्था है। वेरी बात स्टेज पूजा एनीबॉडी कोई भी ऐसे हालात में आ जाएगा जो ये वेरी बात फॉर दैट पर्सन। तो क्यों ऐसे होता है, हमको इंसान हम जो इंसान है हमारे एक टेंडेंसी है, आदत बुरी आदत है कि सोच समझ के नहीं अनाराज करे बिना, सच्चाई जाने बिना हम बस

0: किसी व्यक्ति को जज कर देते हैं, जिज्बा जज कर देते हैं, और कभी हम कंडेम भी कर देते हैं। कम से कम without giving time for that person to explain himself, हम जो कुछ कहीं बोलते हैं किसी ने कहा था, उसने कहा है, तो हम उसको मानकर बस उस पर्सन को जज कर देते हैं। ये बहुत बहुत बुरा आदत है पूजा जी। मैं कहूँगा, मैं ये एडवाइस दूंगा, जब कोई भी है, कोई भी हो, अगर आप सच्चाई नहीं जानते, प्लीज डोंट कंडेम, डोंट जज, क्योंकि कोई भी ये आप पर हो सकता है। ये रिटर्न बैक टू यू। अगर आपने किसी को जज किया, किसी को कंडेम कर दिया और वो इनोसेंट है, तो किसी दिन आप पर ये बीतेगा, तब आप समझ पाएंगे तो वेडिंग दिया, हम आकिजे हैं, हम दोषी हैं, हमेशा है। लेकिन ये हम आखिरी बात मैं कहूंगा पूजा जी, हम अपने आप को जानते हैं। आप पूजा को नहीं जान सकते जितना पूजा अपने आप को जानती है। तो जब तक अपने आप पर विश्वास है, जितना आप अपने आप को पहचानते हैं, ये इस पर निर्भर होता है आपके जीवन, इस पर बिताना, नहीं कि कोई ने ये कह दिया हमारे हमारे विचार बारे में, वो उसने कहा मेरे बारे में, बस उसको लपेट कर बस हम चलते रहे, रोते रहे, लमौते करते रहे अपनी जिंदगी, नहीं, ये हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम ये हमारे डिसीजन है। हम एवरी डे आई वॉन्ट टू लीव ए हैप्पी डे, खुशी से जीना चाहता हूँ मैं अपना अपना जीवन, हर हर हर एवरी डे पूजा जी। तो ये हमको सोचना पड़ना, आपको सोचना चाहिए, ये सब विचार करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच पूजा जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको कहेंगे शुभ संध्या। आज हम और आप कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं निंदा के ऊपर। इस पर गुजरे हैं आप सभी, या फिर कुछ अनुभव है आप बांटना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमें फोन कर सकते हैं 4028085 पर। हेलो
2: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
2: सब चल रहा है ठीक से।
1: ठीक से, चलिए बताइए आप। हाँ जी,
2: तो सब आदमी पारे ही नहीं है ना।
1: हाँ हाँ,
2: समझ लो
1: जी,
2: हाई लेमोन जितना बा सब पारे ही भगवान बने लेवा, सब चुद दे ले बा।
1: हाँ।
2: सिर्फ आदमियों पारे रहल में सिर्फ एगो लिपोक से मजे उतनी सौंजे हो गल बा। कैसे सौंजे हो गल बा? पैसा ढेर हो गल बा, एगो घाव फामी बात है, वो घावनुआ करा ताकु मजे, पैसा, लॉविरोनमेंट, और ढेर फाक्ते है बाक मजे, एगो आदमी के मजे बुरा सीमा में ले जाला।
1: हाँ।
2: समझ ला, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाला कबो आदमी।
1: हाँ।
2: तो गरीब लोग के नहीं माने लंस ना, गरीब लोग के हमेशा दबावे लंस ना।
1: हाँ।
2: तो नहीं अच्छा बात, काहे भगवान सब देखा था, काहे वो वेंकट लो वेंकट एगो कैमेरा हमरो पर डल ले बाया, सब पर कैमेरा डल ले बा, तू का करत हुए वो सब रमासा था। अब जो दिन अच्छी हो जाए कि मजे एगो मालिया हो जाए था, अदमिया जाए था, तो हो सब पूछा पूछी हो ना, तोरा बीजा कर ले एगो फुलवारी में, तो तू का बहुत अन्याय कर ले ना, तू तो कोगीजे नहीं सकबा करे अब उकर से। हाँ, ये एगो बड़ा जीज हॉलीमोन में से जो यूनिवर्सल भगवान।
1: हाँ,
2: समझ ला।
1: हाँ।
2: हम बहुत प्रिय करी ला, हम जब एक कुछ प्रॉब्लम में और हम ब्रिट ब्रिट है उन्हें प्रॉब्लम होने होला। हाँ। पसीर हम हमेशा सीधा काम सीधा रास्ता चली ला।
1: हाँ, हाँ।
2: एगो ठोकर लगी तो सके लगो कोइंसिडेंस से ठोकर लग जाए।
1: हाँ।
2: तकाल निमन से सिमन से चलब नकाल।
1: हाँ, हाँ।
2: समझ ला।
1: हाँ।
2: और घमंड में चाहला करे के लावी में एक दिन वो गिरबा, कैसे बोलने से जॉम्बला कौन से जो कहते गिर जाइबा, तो कोई नहीं।

0: छी तोरा,
1: हाँ
0: चाहला सावधान रहे के बहुत।
1: हाँ
0: और जब बचेबा तो चाहला जाने के ना कैसे बचा थे वो।
1: हाँ बोले चाहे
0: जीभ में हड्डी नहीं है ना।
1: हाँ
0: और जाने के चाहला बतियाए के, सीखे के चाहला बतियाए के आदमी लोग से।
1: हाँ
0: एगो बात बच्चे दे पर सकेला एगो आदमी के ओकरा ओफोंसे कर देबा।
1: हाँ
0: तो जब ओफोंसे हो तो उसुफे होता ना।
1: हाँ
0: तके भरी हम बरब ना।
1: हाँ
0: तो सब चीज में है दू गो चीज है कि गायों और पैदों चाहला एक्सेप्ट हो जे। ढेर आदमी है वो पैदों नहीं खुश रह रहा।
1: हाँ
0: वो गायों का मेनू तनी अच्छो कर ले बाकू मजा कोनो कोनो इरे वो कर ले बट वो गाय वे ले समझ लो।
1: हाँ
0: चाहला बहुत सावधान रहे के वो अपमान नहीं करे के और पेशे नहीं करे के जितना सक बता निमाम काम करे। और हम एगो ये हमारे को छोटा संदेश है और हम एगो मांग करते सब संदेश के कि पूजा जी को पूजा हुए चाहला करे के जब मैं हर जिमोस के धमरा मीठी वाणी दे हम नियो मीठी वाणी दे सब आले सब कोई के धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद
0: आले बहुत धन्यवाद।
1: हम कहते हैं मैं होता तो ऐसा कभी ना करता, लेकिन प्रश्न ये है क्या आपने कभी उसकी जगह खड़े होकर देखा है? जिस इंसान को आप आज कमजोर कह रहे हैं शायद उसने कल बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी हुई हो। जिसे आप घमंडी कह रहे हैं शायद वो अंदर से बहुत टूट चुका हो। जिसे आप बदल गया कह रहे हैं शायद जिंदगी ने उसे बदलने पर मजबूर किया हो। और जिसे आप गलत समझ रहे हैं शायद उसकी कहानी का वो हिस्सा आपको पता ही नहीं जहां से उसकी कहानी बदल गई हो। निंदा करना बड़ा ही आसान है, किसी को गलत ठहराना भी बहुत आसान है, पर एक छोटी सी निंदा किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। किस हद तक बर्बाद कर सकता है ये आप कभी नहीं जानते। चलिए आपका अनुभव हो तो 4028085 पर निंदा पर आज हम बात कर रहे हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं और अपना विचार बांट सकते हैं। इस पर गुजरे हैं आप, चलिए लाइन पर एक और श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
2: हेलो पूजा जी, नमस्कार।
1: नमस्कार राधा जी, कैसी हैं आप
2: जी? विषय क्या है आपका
1: आज? निंदा, क्रिटिसिज्म।
2: हाँ निंदा पर। देखिए निंदा कैसे कहते हैं ना महात्माओं ने कहा है, वैसे हम तो मनुष्य हैं, हम भी निंदा करते हैं, हमारी भी निंदा होती है कहीं।
1: हाँ
2: ये तो है, क्योंकि स्तुति निंदा ये तो है। लेकिन एक बात है, ऐसा भी माना गया है यदि हम किसी व्यक्ति की हम निंदा कर रहे हैं तो मान लीजिए उसका जो पाप है वो कट रहा है, हमारा पाप बढ़ रहा है, उसका पुण्य बढ़ रहा है।
1: हाँ।
2: क्योंकि उसकी बुराई हम ले रहे हैं।
1: हाँ।
2: उसकी दोष, उसका दोष हम देख रहे हैं, उसका दोष हम निकाल रहे हैं।
1: हाँ।
2: इसलिए निंदा करने से पहले मैं सोचना, निंदा करती होती है नहीं, आलोचना और निंदा में अंतर है।
1: हाँ।
2: कुछ हमें कुछ अच्छा नहीं लगे तो हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ, ये अलग बात है पूजा जी।
1: हाँ।
2: लेकिन निंदा और आलोचना में बहुत बड़ा फर्क है।
1: हाँ।
2: तो निंदा जब हम किसी की करते हैं, देखो ने ऐसा किया उसने वैसा, तो मान लीजिए हम उसका पाप उसकी जो गलती है हम अपने सर ले रहे हैं।
1: हाँ।
2: और जो हमारा पुण्य है उसको मिल रहा है, उसका पाप हमें मिल रहा है।
1: हाँ।
2: ये हमें सोचना चाहिए, इसलिए इसे हमें बचना ही चाहिए। फिर भी हम मनुष्य हैं, हमसे हो ही जाता है ये सब, कहीं ना कहीं हम किसी की बात बोल ही देती हैं, किसी की निंदा कर ही देते हैं, हमारी भी निंदा होती है। लेकिन जहां तक हो सके, कैसे कहते हैं ना कबीरदास ने कहा है ना कि खोद खाद धरती सही कूट काट बन राय, कटुक वचन संत सही औरन सहान जाए। जब हम किसी की गलती, केवल संत है जो संत होते हैं सच में संत, वो हाँ। इन सब बातों को सहज ही में सहन कर देते हैं, जैसे कि धरती माँ सब कुछ सहन कर देती है, केवल वो संत सहन कर सकता है। लेकिन हर मनुष्य संत होता नहीं है।
1: हाँ।
2: वो नहीं, वो इन सब को अपने अंदर नहीं समेट सकता, इसलिए जहां तक हो सके अभी यदि किसी से कुछ हो जाए हम समझा सकते हैं तो हम उसको समझा दें। और
1: हाँ।
2: निंदा कब कब निंदा नहीं होती है,

0: यदि वही गलती है हम सबके सामने उसको बता देगी, देखिए आपने ऐसा किया या मैंने कुछ गलत किया है, किसी
1: हाँ
0: ने अगर मुझे कहा दिया कि देखो बहन जी आपने कुछ ऐसा किया है, तो वो निंदा नहीं होती, लेकिन
1: हाँ
0: वही बात जब उसके पीठ के पीछे हम बोलते हैं तो वो
1: हाँ
0: निंदा हो जाती है।
1: हाँ
0: तो जहां तक हो सके हमें सुधारना चाहिए अपने आप को, स्वयं को, और दूसरे दूसरों की भी हमें उनकी उनकी गलती बताने से पहले हमको सोचना चाहिए 100 बार।
1: हाँ
0: बहुत धन्यवाद और
1: बहुत
0: आपको
1: बहुत
0: शुभ संध्या।
1: धन्यवाद आपको भी, और भी श्रोता है लाइन पर, आइए
0: हाँ
1: उनको
0: जी
1: भी
0: जी
1: हम
0: धन्यवाद जी। हाँ
1: धन्यवाद
0: ओके
1: और
0: शुभ
1: शुभ संध्या आपको,
0: संध्या। हाँ
1: और भी श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। नमस्ते
2: नमस्ते नमस्ते पूजा जी,
1: नमस्ते, कैसे हैं आप?
2: क्या चल रहा है आपकी दुआ से। जी
1: तो चलिए, आपका स्वागत है, और आज हम नींदा के बारे
2: जी
1: में बात कर रहे हैं, आपका क्या
2: हाँ
1: कहना है?
2: मेरा कहना यही है कि लोग कहते हैं सच का मुंह काला झूठ का बोलबाला।
1: हाँ
2: लोग जितना झूठ बोलते हैं वो सभी को अच्छा लगता है, सच
1: जी
2: बोलेंगे तो कहते हैं ये क्या जानता है।
1: हाँ
2: मान लिया जाए अभी श्रावण का मास चल रहा है तो
1: हाँ
2: लोग तो भरे हैं, बड़ी तरह में शिव मंदिर में भरे हैं, पूजा पाठ चल रही है, और उधर यज्ञ हो रहा है घर घर में,
1: हाँ
2: हर मंदिर में यज्ञ हो रहा है। तो मान लिया जाए यज्ञ जब करते हैं तो सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं, ओम आयसो सदने सीदा ओम सीदामी, कि इस पूजा में भगवान आप भाग लें बैठे। दूसरी बात है कि हम जल लेकर 3 बार पीते हैं और अपने जितना पाप है सब नष्ट व्रत करते हैं, फिर हम अपने सभी अंगों को जल से टच करते हैं कि जितना बुराई हमने किया है, जितना किसी की निंदा की है, किसी की बुरी बात बोली है या कान से सुना है, हाथ पैर से, तो हम सब भगवान से क्षमा याचना क्षमा मांगते हैं। उसके बाद मतलब कि जितना हम पाप करती है अनजान में वो पाप को नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम बैठकर ईश्वर की स्तुति करते हैं, स्तुति प्रार्थना उपासना। स्तुति जब करते हैं तो भगवान से यही कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, जितना पाप झूठ निंदा गिला जो कुछ हुआ है क्षमा करें, और स्तुति करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, बोले धन्यवाद हे परमपिता परमात्मा, हमें जन्म दिया इंसान का कई योनियों के बाद, और हम इस धरती पर है, हम अच्छी काम करें, सच बोले, किसी की निंदा गिला नहीं करें, हमेशा भलाई किसी के करें, और ईश्वर स्तुति प्राप्त उपासना मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता हमारे जितना अंग है हम हमेशा भला किसी का करें बुरा किसी का ना करें। तो निंदा करने से क्या होता है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है, मान
1: हाँ
2: लीजिए निंदा की, तो फिर उसके बाद प्रमाण चाहिए ना,
1: हाँ
2: आपने बोला था इसे ये इन्होंने ये किया है, अच्छा तो प्रमाण क्या है, अब
1: हाँ
2: इसमें पूर्वासाकी होगा तो क्यों किसी की निंदा करें,
1: जी
2: बल्कि बढ़ाई करने से सब कुछ मिलता है हमें। कहते
1: हाँ
2: हैं ना इंसान को हमेशा भला करना चाहिए, हमेशा
1: हाँ
2: भला, अच्छाई, किसी को खाना पीना देना, हमेशा भला करना, किसी की निंदा गिला न करें, किसी को
1: हाँ
2: गाली न दें, किसी को जले मत। भगवान ही हमें शिक्षा दी है, हमें तो सौभाग्य मिला है कि हमने मॉरिशस जैसे धरती पर जन्म लिया है, स्वर्ग जैसे धरती पर जन्म लिया, और जहां पर जाए कैसे सब हम जितना परिवार है जितना मॉरिशियन है सब मिलजुल कर रहते हैं। यदि
1: हाँ
2: मेरा गुरु जी हिंदू है तो मेरा डॉक्टर मुसलमान है, मेरे बच्चे का ट्यूशन लेने वाले सब क्रिश्चियन है, तो मतलब ये सब मिलजुल कर हम इस देश में चला रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि आज हमारे घर में सब कुछ मिले, आज हमारे भारत यूट्यूब

0: में जब देखते हैं कितना दुख है विश्व में, लेकिन हमने अच्छा कर्म किया है।
1: हाँ
0: अच्छा कर्म करने के बाद हमारा जन्म मॉरिशस जैसे स्वर्ग में मिला है, और हमें इसको अच्छी तरह से रखना चाहिए।
1: जी
0: आज कई देश में कितना कितना समस्या है, तो भगवान से प्रार्थना है, हमारे अपने भाई बहनों से प्रार्थना है कि हम अच्छाई करें, किसी की निंदा गिला ना करें, किसी को मत जलें, किसी को कुछ न कहें, और हम ऐसे हम अच्छी तरह से मिलजुल कर रहे हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत
0: जय
1: धन्यवाद आपके
0: जय।
1: इस विचार के लिए। आइए, और भी श्रोता है लाइन पर, सभी को मैं अवसर दूंगी। आइए, उनको हम सुनते हैं कि लाइन पर कौन है। हेलो,
2: हेलो,
1: नमस्ते
2: नमस्ते
1: जी।
2: पूजा जी। मैं हम संगीत
1: नमस्ते, आपका
2: संगीता है,
1: स्वागत है संगीता जी।
2: मोदालवे मोदालवे
1: अच्छा,
2: से।
1: मौदालवे से।
2: हाँ
1: संगीता जी, आपका क्या कहना है निंदा पर?
2: हाँ तो तू तो अच्छा बोली पूजा, देखिए आ बोल अच्छा लगे ना, हम दास्तान के जो तोर से बतियाई अच्छा
1: धन्यवाद
2: लगे ना। हाँ
1: जी।
2: हाँ देखा निंदा के साथ में बोला तो। हाँ निंदा ये तो बड़ी अच्छी मारू काम है, नहीं चाहे ना ये सब बतिया है कि मूवे है ये सब तनको नहीं अच्छा बोल, ये सब कोई की निंदा कर पाता तोरे दुख हो,
1: हाँ
2: वो तो पचिगलाते था ये सब। हम नहीं नहीं खुशी रहना कोई कोई की बात बतियाई था, वो तो बुझाला पुरानी सुनत हवा, वो सुनबो नहीं करे के चाहिए का बोले ला। वो आगे की जाए का वो सास सुरहल करत तलन सा, अब ना ऐसे में अब के सास लोग अपन पटो के नहीं करेला नींद, अब
1: हाँ
2: खुशी रहेला सब कोई खुशी रहेला,
1: हाँ
2: चाहेला हमने के जिए जाने के रहे के, और ये ऐसे हमने के चाहना रहे कोई के आ ना वासे के ना कोई के, सब वही के जिए दा अपन अपन का बोले ना।
1: हाँ
2: हाँ। कोई कुछ बोलबो कर दी तो चाहे मुआ है बंद कर ले बस चुपचाप रह, तो वो अच्छा बा। देखिए भगवान बहुत तेजी करेला उसे कुछ सुनबा ता नहीं, हमने डराई ला वो सब बोची बड़े की अपन नहीं नहीं बतियाई ला सब वो सब बा,
1: हाँ,
2: नहीं नहीं
1: और ना
2: अच्छा ये
1: ही
2: सब
1: चाहेला करे के।
2: नहीं
1: और
2: चाहे
1: इन
2: करे के।
1: निंदा, इन निंदा से एगो और जुन्हा शब्द जुड़ल बातें, जैसे हमने बोल लीला सा खिची के खिचिक,
2: हाँ
1: और जीजे, जैसे हमने
2: जी
1: किसी के जुन्हा ओकरा जीजे कर देला सा कि वो
2: हाँ
1: ऐसे हो ऐसे हो, ओकर
2: हाँ
1: करनी पर हमने ओकरा जीजे कर देला सा, तो ई नहीं अच्छा हो। नहीं
2: नहीं
1: जनबा
2: अच्छा
1: कि वो कौन चीज से गुजर के आल बाते। पिछले
2: हाल
1: हफ्ते
2: बाल।
1: हमने सहायता पर बात किया है, तो
2: हाँ
1: सहायता से जुड़ी ये जो खिचिक है, निंदा है जिसे हम बोलते हैं, और निंदा तो अब आजकल देखते हैं सभी जगह पर दिखाई
2: हाँ
1: देता
2: है
1: है,
2: ना।
1: और
2: हाँ
1: किसी की
2: जन्मा
1: जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है इससे।
2: हाँ
1: हाँ
2: देखिए ना कौन दी हमने के कौन रामायण में देखा लिखल बा, ये सब नहीं ये सब नहीं ढोहा करेंगे।
1: हाँ नहीं चाहिए ये
2: रामायण
1: सब।
2: सब निमन बात सीख सीखा,
1: हाँ
2: भागवत गीता में रामायण में सब में निमन चीज सी लिखल बा
1: हाँ
2: करेंगे, निमन
1: कोई
2: काम
1: के कोई
2: करके।
1: के अच्छा ने सक बजा करे तो अकर बुराओ नहीं करा,
2: हाँ
1: छोड़ दा
2: बुरा
1: इसने।
2: नहीं करा,
1: हाँ
2: हाँ भलाई नहीं सक बकरी तब
1: हाँ
2: बुरा नहीं
1: बुरा
2: करा
1: नहीं
2: ऊपर।
1: करे। हाँ
2: हाँ कांटे बन के नहीं रहा का
1: हाँ
2: बोले ला,
1: हाँ
2: कांटे बन के नहीं रहा दमिया संगे।
1: सच बोला था। तो बहुत
2: हाँ
1: बहुत धन्यवाद संगीता जी,
2: हाँ आपको
1: और
2: भी शुभ
1: आपको शुभ संध्या।
2: संध्या।
1: आपको भी। चलिए, और भी श्रोता है लाइन पर, उनको हम सुनते हैं। हेलो,
2: हेलो
1: नमस्ते।
2: नमस्ते पूजा जी, हम तारा हैं।
1: तारा जी, आपका स्वागत है, और तारा जी
2: हाँ
1: का क्या कहना है?
2: हाँ हम जो बात करते हैं
1: हाँ
2: वो निंदा की बात करते हैं ना, वो
1: जी,
2: आजकल तो निंदा के चलती होती है आजकल,
1: हाँ चलन है।
2: जहाँ सुनते हो तहाँ किसी को निंदा करते हैं।
1: हाँ
2: क्यों निंदा करते हैं, किस लिए निंदा करते हैं? किसी को हम एक कुछ बात बोल देते हैं तो हमको पछतावा होती है, देखो कैसे उसको हम बोल दिया है
1: हाँ
2: ना।
1: हाँ
2: नहीं बोलना चाहिए आजकल किसी को, नहीं बोलना चाहिए, वो हिंदू है या मुसलमान है, वो कुछ है,
1: हाँ
2: किसी को निंदा नहीं करना चाहिए।
1: हाँ
2: बोलेगा तो बुला के उसको मुंह पर बोल देना, न तो चुपचाप रह जाना, नहीं बोलना चाहिए
1: हाँ
2: ना, किसी
1: हाँ
2: को निंदा नहीं करना चाहिए। कहूँ परी जाते हो इसको निंदा, किसी के परिवार के, वो ऐसे है वो ऐसे है, वो किसी को नहीं बोलना चाहिए, अपना देखना चाहिए,
1: हाँ
2: अपना देखना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए निंदा।
1: हाँ
2: जाजी हम इतने बोले,
1: बहुत बहुत
2: इतने
1: धन्यवाद
2: बोले,
1: तारा जी,
2: शुक्रिया।
1: शुक्रिया। और

0: शुभ संध्या आपको। आई है हमारी प्यारी बसंती जी, स्वागत है आपका। बसंती जी आपका स्वागत है।
1: जी जी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, कैसी है आप?
1: मैं ठीक हूँ पूजा जी।
0: चलिए, पिछले हफ्ते आपको सहायता में लाइन नहीं मिला था,
1: जी जी
0: अब तो मिल गया है जी, और जी, आज हम निंदा के बारे में बात कर रहे हैं। निंदा, क्रिटिक या फिर जीजे, सब हम आज इसी पर बात कर रहे हैं।
1: तो मैं ये कहूँगी, दिल में तुझे बिठा के बंद कर लूंगी मैं आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें। तो पूजा जी, आपने क्रिटिसिज्म में कहा था, तो क्रिटिसिज्म जब अच्छा के लिए कुछ हम, मैं आप कोई किसी को क्रिटिसाइज करूंगी,
0: हाँ।
1: तो अपना अपने अपने गलती के छिपा करके,
0: हाँ।
1: मुझे जो मुझे में गलती है,
0: हाँ।
1: वो उन्हीं से हो जाता है,
0: हाँ।
1: और दूसरों के गलती मुझे आसान से दिखाई देती है
0: जी।
1: ये नंबर वन। नंबर टू ये भी है, कोई ऐसी जिलर्जी से जिसको उसके मन में दर्द बने है,
0: हाँ।
1: आप जो पड़ोसिन है, झगड़ा हो गया, क्या हो गया, मुठो ठबल हो गया,
0: हाँ।
1: हम तो के बटा,
0: हाँ।
1: हम तो के दिखा, हम तो घर तुरवा दे, हम हाई कर, अब हम भगवान की जगह ले लेते हैं वो लोग,
0: हाँ।
1: और बोलते हैं हाई दिखना, हम
0: बदला
1: दिखने पर, हाँ
0: बदला
1: बदला,
0: लेते हैं।
1: बदला में और उसमें और मिला देते हैं,
0: हाँ
1: बदला बदला ये तो बदला लेती हैं,
0: हाँ
1: और इसमें ज्यादा ज्यादा मसाला डाल करके या
0: हाँ
1: हल्दी पीमा डाल करके सबको
0: हल्दी
1: जाके बोल
0: पीमा
1: दी है जादू लोग,
0: रासो बनकर।
1: जी ओकर घर में ऐसे होता,
0: हाँ।
1: जिसके घर में कुछ दुख है या है यू है, तो वो अपना घर अपना संभालेगा, आपको नहीं जरूरत है जाके हुआ के बात हुआ करके, हुआ के बात हुआ करके झगड़ा करके कोई के घर तोड़ने के लिए,
0: हाँ
1: है कोई किसी के घर तो ना, ये महापाप है
0: महापाप है।
1: जी। अपना अपना झोंक के देखो, जैसे बोलते हैं बंदर तपन पहुंच नहीं दिखेला, दूसरे कोई के पहुंच दिखेला,
0: हाँ
1: ना ये
0: हाँ
1: है ना। और नंबर
0: नंबर
1: और
0: तीन।
1: ये और जी और ये है जो बोलते हैं जुजमो, और ये कहा है लॉय डिफिसिल क्रिटिसाइज समबडी इट वेरी इजी, लॉय लॉय डिफिसिल, कोई किसी के जिंदगी पर जी करके देखें वो कितना पानी में है, वो कितना दुख में है, वो क्या क्या नहीं सहता है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर पहचाने के लिए, नहीं पूजा जी। तो ये ही अच्छा जो दुख शब्द में आपसे कहा, तो यही मेरी
0: जब भी आप आती है ना, तो
1: जी
0: शोले की बसंती जानती है ना,
1: जी
0: वैसे ही जमा देते हैं सारा जो प्रसन्नता, और मुझे ना खुश कर देती है, और जैसे आप मुस्कुराती है ना,
1: जी
0: वो भी
1: मैं जी
0: मुझे
1: मेरे दिल में
0: बहुत
1: आपकी
0: पसंद।
1: जगह है पूजा जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पूजा जी ये
0: हाँ
1: शब्द मुझे आ गए हमारे मन में,
0: हाँ
1: ले क्रिटिक ए फासिल मे लॉ ए डिफिसिल,
0: क्या बात
1: नहीं
0: है, क्या फ्रेंच है आपकी।
1: पूजा जी
0: हाँ
1: आप
0: जी,
1: मेरे दिल में हैं।
0: अच्छा जी, आप भी मेरे दिल में हैं। चलिए,
1: थैंक यू पूजा
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी।
0: अच्छा नमस्ते, एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
1: नमस्ते, हम इंदिरा हैं पूजा जी।
0: इंदिरा जी, आपका स्वागत है हमारे आप कार्यक्रम में, आपका क्या कहना है?
1: तो कार्यक्रम तो बड़ा ही बढ़िया बढ़िया शब्द निकाले ला, हाँ अच्छा,
0: धन्यवाद।
1: हम सब कोई अच्छा बानी बोला, अच्छा अच्छा करे के अच्छा जमे पैबा, और एगो बात जैसे बोले ला, जियो और जीने दो,
0: हाँ,
1: एगो
0: ये
1: मेन
0: जो
1: पॉइंट है, जियो और जीने दो।
0: ये जो लाइन आपने कहा ना, ये मेरे दादाजी कहते थे पहले
1: तो
0: जब
1: मेरे
0: भी
1: दादा
0: बैठे थे।
1: जी, हाँ तो
0: हाँ
1: मेरे दादा पंडित थे, हर शनिवार को, सब शुक्र हर
0: हाँ
1: दिमाग के, हर दिमाग के हवन होता है हमारा,
0: हाँ
1: तब जब हमारा दादा बचाए तब सबके, और हम तो पछला रहनी, हम जन सुन घट रहनी,
0: हाँ
1: तब बोले तू निमन से सुनी, तू जन ऐसे उसे कर, तब पीती रहनी सर, तब लेको जाता नहीं सर, तब बोले निमन से सुनिय ऐसे ऐसे, जब अब बड़ा होनी तब सच्चे देखनी, हाँ ये आशीर्वाद हमारे लड़का के बतानी जो दादा हर रोज बताता,
0: हाँ
1: अरे गोपाल बोला जब तोहर हर लड़का बा छोकरा छोकरी नहीं छा, हो सके ओकर काली छोकरी बा, हमार छोकरा बा, हो नहीं सब
0: हाँ
1: लड़का एक समान बा,
0: हाँ
1: कब जन्म का तोहर बेटा शादी कर ओकर एगो छोकरी हो, तब का हुई, तब तू तो ओकरा हाथ दिला ओकर बेटी के,
0: हाँ
1: अब तो तोहरा भगवान एगो बेटी विदा कर दे, जब तोहरा बेटी

0: तब जब तोरा पर पड़ी तब जनब ऐसा ना चाह करे कि भगवान सबके भगवान पुरुष और आदमी के बनैले बा में पुरुष और आदमी अपन से जुस हो गल बा व्यवहार भरी व्यवहार भरी को मजे मोबे नहीं उसने था अरे गो बात बेरा जब उद्भट अपन आंगन में देखा दूसरा हमने के आंगन में नहीं छाना झोंके के अरे गो माता पिताजी छाना निमन काम करके जब मन ओकर लड़का के भविष्य निमन सीमा में जाए उज्जवल हो फली फूली अब जब माता जी पिताजी भी बुरा करता तो लड़का के कौन हो व्यवहार परी ओकर जिंदगी पर
1: नहीं सीखी
0: हाँ हमेशा निमन तब बोले ऐसे जैसे सावन मस सब कोई निमन निमन ही होता मैं हम एक गो बात जैसे अगर मैं पिती से जन्म ले ले बा जैसे वो व्यवहार में आर बा जैसे कर माताजी पिता वो पहला टीचर तो माताजी पिताजी है ना वो जब माताजी पिताजी जैसे हम व्यवहार बतैली बा नहीं बतैली बा वो हौसने जीव जे निमन बा वो और निमन हो जे बुरा हो वो और बुरा हो मैं हाँ ये कारी बोला हम जियो और जीने दो
1: जियो और जीने दो हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद
0: अच्छा
1: अच्छा बहुत बहुत शुभ संध्या आपको भी बहुत बहुत अच्छा लगा आपके इस विचार के लिए और आपने सही कहा है जियो और जीने दो क्या
0: दादाजी का शब्द था वो मेरे गुरु थे
1: अच्छा
0: दादाजी मेरे गुरु हैं
1: और मेरे भी दादाजी मेरे ही गुरु हैं आज यहाँ पर बैठी हूँ तो उनके ही कारण क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है हिंदी पढ़ो
0: शाम मैं मेरे गुरुजी का नाम लेती हूँ मेरी माताजी पिताजी और मेरे गुरुजी
1: और लेना
0: का नाम।
1: भी चाहिए जी
0: ये हाँ तो बहुत से आदमी नहीं जानते हैं ये
1: जी जी
0: मेरा आदमी लोग नहीं जानते हैं यह
1: हाँ ये तो है
0: जी, हाँ।
1: अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी यही कहूंगी बाय जियो और जीने दो बहुत बहुत धन्यवाद बाय। एक और श्रोता है लाइन पर आइए उनको सुनते हैं कमला जी आपका हार्दिक स्वागत है नमस्ते
2: नमस्ते पूजा जी कैसे हो
1: मैं ठीक हूँ आप कैसी है
2: हाँ ठीक है थोड़ी बीमार थोड़ी ठीक दोनों हैं
1: हाँ मैं भी थोड़ी सी सर्दी हुई है मुझे चलिए बताइए आपका क्या
2: पूजा की आवाज सुन के तो हम तो तंदुरुस्त हो गए
1: धन्यवाद
2: ठीक हो गए और बसंती हमारी शोले की बसंती जी को मेरा प्रणाम और सभी सुनने वालों के
1: सबको हंसाती है
2: सबके प्रणाम अच्छी अच्छी बातें मिल रही है सुनने के लिए और हर सप्ताह प्रतिदिन एगो है अच्छी टॉपिक लेके आवेला तो अच्छा लगेगा भाग लेके जो हमने के है अच्छी अनुसार बा हमने के अकील अनुसार बा हमने तो हर से दुगो बात दुगो शब्द बतिया ली रहा हाँ अच्छा लगेगा और ये निंदा पर बात किया था ना
1: हाँ निंदा खिची के जीजे करे के एक बारे में सब बचा
2: एक आदमी के जीजे

0: वह तो बोल गया कि किसी की निंदा चुगली या बुराई करने से मनुष्य अपने अपने संचित पुण्य और अच्छे कर्म गवा बैठता है, और धार्मिक और नैतिक मान्यताओं के अनुसार निंदा करने वाले व्यक्ति सामने वाले के पापों के अपने सिर ले लेता है, जिससे मन की शांति नष्ट हो जाती है ना।
1: जी
0: हाँ, और नकारात्मकता बढ़ती है और
1: हाँ
0: जीवन में दुख ही दुख होते हैं।
1: हाँ ये तो है
0: हाँ ना पूजा जी। हाँ, जब
1: जी।
0: कोई कोई के कोई कोई के कहूँ रहा, कोई तोहर निंदा के तू अपने पहचान जेवा,
1: हाँ
0: जान जेवा उ तोहर पलाप करता, तोहर निंदा करता,
1: हाँ
0: तब हमने बोली आशा जाए दे उ तो
1: हाँ
0: पाप
1: जाई
0: अपन
1: दे
0: सब कर
1: मामू।
0: ले।
1: हाँ
0: हाँ
1: जाई दे
0: जाए
1: मामू
0: जा, तब
1: जी
0: हमने के का हमने के तो आर पुण्य मिली, कोई हमने के निंदा करके का करी ना पूजा
1: हाँ
0: जी।
1: हाँ
0: और जे और का करवा, कबो कबो तो हो ना
1: हाँ
0: कि कोई सच में कोई कोई के निंदा करेला कुछ होवेला, तब ओकर कमाजे कैसे नहीं जाके बीते एगो
1: हाँ
0: नेगा से बीते आवेला, तब
1: आवेला
0: आदमी ओकर निंदा करबे करेला, निंदवा आवेला, निंदवा तो लोजिक है
1: हाँ
0: निंदा। और बूढ़ी बूढ़ी बाप के नार अभी के दिन में बहुत संभल संभल के चले के पड़ेला पूजा जी,
1: हाँ
0: आपको तो
1: ये तो
0: पता
1: हाँ
0: है। हाँ
1: हाँ
0: हाँ संभल संभल के चलना पड़ता है, और जो जैसा है उसका कर्म भगवान ओके कर्म
1: देता
0: है
1: है
0: ना बोले जला। हाँ
1: हाँ
0: कर्म भगवान देता है,
1: हाँ
0: और बोले ला ना जी की है पाप और पुण्य, हमने जाके पाप लाहो हमने सोचे है यखी में जाप है कैसे बोले जला, हमने के जन्नत नहीं मिली, हमने के स्वर्ग नहीं मिली, जो पाप कर रहा था ओके नर्क मिलेला, तो है जो पाप और है अथी है स्वर्ग और नर्क जो है आदमी ये धरती वे पर पेये करके जाए लाहो पूजा जी,
1: हाँ
0: ऊपर नहीं बा, ऊपर नहीं बा। हमने के भगवान हमने के हिसाब किताब करे, हमने के हिसाब किताब जब भगवान हमने के जन्म दे बा धरती पर, तो हमने के हिसाब किताब ही ये होई, हमने
1: नहीं
0: ही ये
1: होता।
0: सब अथी करके तब जब सलाहो
1: हाँ
0: ना। और मौत से के डर लेबा, मौत से तो हम भी नहीं डरिया, हमार मार रहा था वो भी नहीं डरा था मौत से पूजा जी,
1: यही तो सच्चाई
0: मौत
1: है, यही तो
0: हाँ
1: सच्चाई
0: मौत
1: है।
0: हाँ
1: जाने ना
0: मौत
1: कमला
0: वा तो
1: जी,
0: सच्चाई बा।
1: चाहेला ई ई जो जो मृत्यु हमनी बोली लासा, इस सच्चाई के रोज चाहेला हमनी के याद करे के, काहे कि
0: हाँ
1: चाहे जाने के ही हमनी के जो जीवन हता वो खाली तौंपो गया हा, जुन जुन बा हमनी
0: हाँ
1: के हिया वो सब तौंपो गया।
0: हाँ और पूजा जी,
1: हाँ
0: और जब मामा रहा तो वो हमेशा अपन जब तनी बीमार उमार हो लगा आपके टाटो में बनाने,
1: हाँ
0: तब बोले हे देखा सा हम अपन सब चीज पारे कर देने हैं, वो मौत से बिल्कुल भी नहीं डरे, अपन सब चीज बोले हमार मरनी के सब पारे कर देने हैं, तो लोग के कोई के नहीं बाहिया दौड़े के हुआ दौड़े के सब तैयार बा, हमी के पहुंचो के बैसा के बोलिए से फिर मगर तब पूजा जी देखा ओकरे मृत्यु कैसे हो गल, हमार माँ के ओकर अंतिम संस्कार नहीं करे सकली सब पूजा जी, कोविड में मामा चल गल रुपिताल से होनी मुंह नहीं देखली सा मामा के, ना ओके सजैली सा ना ओकर अर्थी करली सा ना ओकर कुछ नहीं, पूजा भी होल तो ओकर 40 दिन के बाद तब बलिदान सा हमने के हुआ हमारे भाई लोग, तब पूजा
1: दुख
0: और
1: की बात
0: देखा
1: है।
0: मौत मौत भी कैसे आवेला,
1: हाँ
0: मामा ने खाना आदमी के मामा ने खाना मर एगो आदमी के सागर लगेला सोच बता।
1: तो
0: और
1: बहुत
0: भाई ये तो बड़ा अच्छा है, शुभ
1: हाँ
0: संध्या, बाय
1: शुभ संध्या आपको
0: बाय
1: भी कमला जी, और भगवान आपको
0: बाय
1: बहुत शक्ति दे। और मैं तो
0: धन्यवाद
1: बस कहूँगी शुभ संध्या आपको, और आपके विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक
0: धन्यवाद।
1: और श्रोता है लाइन पर, उनको हम सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। चमेली जी आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत दिनों बाद आप आइए आ
0: हाँ
1: जाइए।
0: बहन जी, परिवार में कोई बीमार थी
1: हाँ
0: इसीलिए मैं नहीं भाग नहीं ले सकती थी, फिर भी सुनती थी।
1: हाँ
0: बहन जी आज का जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है,
1: गंभीर विषय।
0: क्योंकि बहन जी निंदा जो करता है ना उसको
1: हाँ
0: तो सर्वनाश ही होता है। कहा
1: हाँ
0: गया है कोई दुख भी आ जाए भगवान से कहना, जग से कभी मत कहना। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना बहन कि कोई आकर कोई अपना दुख रोए तो अपना दुख समझना चाहिए, ना कि बात लेकर निंदा करे उधर उधर से सबके से सुनाए, ये बहुत बुरी बात है, ये इंसानियत नहीं है बहन जी। हमें जानना चाहिए कि कैसे हमें जीना चाहिए बहन जी। अगर हम इंसान इंसान से नहीं कहेंगे तो भगवान तो धरती पर नहीं आते हैं ना बहन जी,
2: हम इंसान में ढूंढते हैं कि अपना दुख बोलूंगा ना हमें राह मिल जाएगा, लेकिन कोई ऐसा है हमें राह दिखाते हैं, हमें मार्ग तक पहुंचाते हैं, लेकिन सब इंसान बराबर नहीं होती है।

0: हम बोलते हैं जाओ मंदिर में दुर्गा माँ के आगे अपना आँचा पसार कर अपना दुख कह देना, वो किसी से नहीं कहेगा, आपको राह दिखा देगा। जो जो जो जल रहा है, जो दिया जल रहा है, वही प्रकाश आपको मिलेगा। तो मेरे कहने के मतलब ये है कि कभी किसी से अपना जैसे प्राइवेट बात है कभी ना कहना, क्योंकि आज के दुनिया में इंसानियत नहीं दिखने को मिलती है। बहन जी, हम कहते हैं ना कि जीवन बहुत अच्छा है, दो दिन की जिंदगी है, हमें अच्छा से जीना है, मिलजुल कर रहना है, ये है जीवन। अगर हम इंसान इंसान से नहीं कहेंगे तो किस से कहेंगे, लेकिन इंसानियत में शैतान बैठ जाते हैं। बहन जी देखिए, बहन जी आप कितने प्यार से बातचीत करते हैं, सभी लोग आप कितना मिठास से बोलते हैं, तो ये वाणी का है, ये ज्ञान का है, अच्छा का है, बुरा का कभी जीत ही नहीं होता है। जो लोग निंदा करते हैं ना बहन, जब वो आते हैं समाज में आते हैं तो वो देखते वो आ रहा है यहाँ के बात वहाँ पहुँचाते हैं। कभी हम सत्संग में जाते हैं तो प्राइवेट बात भी होती है कि हमें क्या करना है, तो कोई ऐसा इंसान आकर बैठ जाएगा वहाँ, तो वो जो है जो प्राइवेट बात है वो पहुँचा देगा, तो उसका कोई मोल नहीं है, आपको कोई मान नहीं रखेगा, आपका कोई इज्जत नहीं रहेगा। इसीलिए बोलते हैं जिए तो इंसान बनकर जिए, सबके लिए सबके निगाहों में आप फूल की तरह लगे, खुश जैसे आप हंसते हैं, सभी लोग आपको प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि जो विषय रखते हैं ना बहन, हमको ज्ञान मिलते हैं, मार्ग दिखाते हैं, एक ज्योति की तरह, जैसे कि आप गंगा में डुबकी लगाकर वो हीरा जैसा विषय लेके आते हैं, तो हमारे तो सब छोटता का जीत हो जाती है, क्योंकि आप मार्ग है, हमें दिखाने वाला है, तो हमें आप पर प्रभु दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आप में प्रकाश है, आपके नाम ही है पूजा, असर पड़ता है बहन जी, इसीलिए तो हम पंडित से अपना जन्म पत्र आदि दिखाकर तब बच्चे जन्म लेते हैं तो करते हैं। क्यों? इसीलिए असर पड़ते हैं बहन। तो मैं यही कहूंगा कि कभी किसी का निंदा मत करना, जो जो आप निंदा कर रहे हैं ना बहन, इंसान का वो सब पाप आपको बटोरेगा, आपके जीवन में दुख ही दुख होगा। कोई बहन हो या भाई हो, मैं हाथ जोड़कर बोलती हूँ, कोई कुछ आपके कुछ बोले तो आप अपने पेट में रख देना, जब अंतिम समय वो साथ चले जाएगा। मैं ऐसे जीना चाहती हूँ, ना कि वो बात सबसे बांटे। आप एक थरिया भात खा लेते हैं और बड़े बड़े रोटी खा लेते हैं, लेकिन बात पचता नहीं है बहन। ये क्या बात है,
1: क्या बात?
0: यही मेरा कहना है बहन, आपने मुझे मौका दिया,
1: धन्यवाद। आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ बहन जी, आपको शुभ संध्या।
1: आपको भी, आपको भी नमस्ते। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
2: हेलो पूजा बेटी, कैसी है?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी है?
2: मैं भी ठीक हूँ।
1: और आपका शुभ नाम?
2: मैं माला फाउदा बोल रही हूँ।
1: अच्छा माला जी, आपका स्वागत है। अच्छा माला जी, आपका क्या कहना है?
2: कल से मैं सुरन खोज रही हूँ।
1: अच्छा आप सुरन खोज रही है, अच्छा आपको मिल जाएगा बाजार में।
2: हाँ मैं खोज रही हूँ सब्जी बनाने के लिए।
1: जी जी जी, बोलिए।
2: आज का टॉपिक आपने जो रखा है
1: वो तो
2: है किसी की निंदा करना ना।
1: हाँ, जी।
2: तो किसी की निंदा करना तो बुराई को खोजना है ना।
1: हाँ, हाँ।
2: बुराई करना है
1: जी,
2: तो ये तो आदत से मजबूर है।
1: हाँ, आदत से मजबूर, सभी का
2: आदत से मजबूर है। मैं किसी को किसी के आगे उंगली नहीं उठाऊंगी।
1: हाँ।
2: भगवान के सामने भी तो पूजा में बैठते हैं, भागवत में बैठते हैं, तो किसी की बुराई कर देते हैं।
1: हाँ, ये तो है।
2: ये तो अजकाप है, ये बीमारी है हमारे समाज में।
1: हाँ।
2: तो मुझे हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी की बुराई करने से पहले अपने आप को समझें
1: जी,
2: अपने आप में क्या बुराई है, क्या कमी है
1: जी,
2: जो हम किसी की और के आगे उंगली दिखाएं, बुराई खोजें
1: जी
2: और निंदा करें, ये बहुत गलत बात है। जैसे कबीर जी ने कहा है, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिली कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो ये निंदा जो करते हैं उसे तो निंदक कहते हैं।
1: हाँ।
2: वो आदत बन गई है किसी न किसी के बुराई को खोजा।
1: हाँ।
2: तो मैं यही कहूंगी कि दुनिया बदल रही है, बदल गई है, बदल रही है, इतने आसान सब कुछ मिल रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं
1: जी,
2: कम से कम बुराई तो छोड़ो
1: जी,
2: अपने किसी और के एक दूसरे की बुराई छोड़ो।

0: जी
1: अपने पूजा पाठ में ध्यान लगाओ और अपने आप को समझो
0: जी
1: कि मैं कौन हूँ और क्या कर रही हूँ, क्या करने आई हूँ, क्या कर दिखा के जाऊंगी।
0: जी
1: ये मेरा कहना है। निंदा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन वो जो निंदा करते हैं पीठ के पीछे, तो वो बहुत बुरा बुराई है। वही तो सबसे बुराई है,
0: वही तो सबसे बुरा है। हाँ, बहुत बहुत
1: तो,
0: धन्यवाद इस विचार के लिए माना जी। और आपने सही कहा है, जो भी कहा आपने सब कुछ सही है। और कभी कभी जब कोई हमारी बुराई करता है तो हम अपने जो है अपने ही अपने आप को बचाने के लिए कुछ कह देते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप पलाप कर रही हैं, आप निंदा कर रही हैं, आप अपने आप को जो है बचा रही हैं, तो आप ऐसी हैं वैसी हैं। तो किसी को जज करना भी बहुत बुरा, बहुत बुरी बात है। तो
1: अधिकार नहीं है किसी
0: हाँ,
1: को जज करने।
0: अधिकार जी, इसीलिए मैं ये सोचती हूँ माला जी कि जब कोई आपकी बुराई करता है तो आप चुप रहिए, आप जानते
1: चुप
0: हो ना।
1: रहना।
0: हाँ, चुप रहना ही सबसे ज्यादा बेहतर जो
1: बेहतर
0: है जवाब है। आप किसी को दे सकते हो ना,
1: हाँ।
0: किसी के पास जाओ ना, किसी को मुंह वापस दो या फिर उसको जवाब देना है, नहीं कुछ भी नहीं, बस चुपचाप रहकर उसको सहकर आप आगे बढ़ जाओ, है
1: ऊपर
0: ना,
1: वाले पर छोड़ दो।
0: छोड़ दो, बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस विचार के लिए और शुभ संध्या आपको माला
1: शुभ
0: जी।
1: संध्या आपको भी बेटी।
0: बाय बाय, नमस्ते। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो,
2: हेलो पूजा जी, नमस्कार।
0: नमस्कार वीना जी, कहाँ थी आप?
2: मैं कब से, मैं तो 4 बजे फोन लगा रही हूँ।
0: अच्छा
2: बहुत
0: अच्छा
2: लग रहा है,
0: चलिए कोई
2: बहुत
0: बात
2: हो
0: नहीं।
2: गया, तो मैं सुन भी रही थी।
0: हाँ हाँ
2: तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी इस विषय में,
0: जी
2: लेकिन 2-4 बातें जोड़ूंगी अपनी तरफ से।
0: जी
2: कि देखिए, निंदा जो शब्द है ना, उसका अर्थ ये होता है कि किसी की अनुपस्थिति में किसी की बुराई करना, उसको निंदा कहा जाता है। तो आदमी सामने नहीं है, लेकिन हम उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वो निंदा हो जाती है।
0: हाँ,
2: तो निंदा एक ऐसा अवगुण है कि आदमी जब निंदा करता है तो दूसरा सामने वाला बहुत चटकारे ले लेकर सुनता है, वो भी सुनता है और अपना हामी भरता है। लेकिन निंदा एक ऐसा नशा है, जैसे कि दूसरे की बातें जब दूसरे के सुनाओ ना, तो उनको मजा आता है। वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो,
0: मान लीजिए एक एंटरटेनमेंट, एक मनोरंजन हो जाता है
2: जी
0: उसका।
2: जी
0: हाँ
2: जी तो यही मैं तो शास्त्र के अनुसार कहूंगी, साहित्य के अनुसार कहूंगी। कबीरदास जी ने कहा है ना अपने दोहे में, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा कोई। यानी कि मैं सभी में बुराई ढूंढ रही हूँ और उसकी निंदा कर रही हूँ कि ऐसी है वैसी है, उसके कपड़े ऐसे हैं, वो इतना धनवान है, वो इतना गरीब है, या तो एक प्रकार से निंदा हो गई। लेकिन जब मैं खुद अपनी तरफ देखती हूँ तो मुझ में ही सारी बुराइयाँ भरी हुई हैं। तो इंसान क्या करता है कि अपनी बुराइयों को नज़रअंदाज करके वो दूसरे की बुराई को उजागर करता है, तो वो निंदा कहलाती है। निंदा बहुत बड़ा अवगुण है, हमें इससे बचना चाहिए। क्योंकि निंदा, और अगर भूल से भी कोई आपकी, कभी कभी हम आहत हो जाते हैं पूजा जी, जब कोई हम सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति ने या स्त्री ने या किसी ने हमारे बारे में कुछ
0: कुछ कहा,
2: कुछ
0: तो
2: कुछ
0: चोट
2: तनाप
0: लगती।
2: तनाप कह दिया है, जो कि हमें चोट पहुंचाते हैं, आहत पहुंचाती है, हम बहुत विचलित हो जाते हैं। क्योंकि हम मनुष्य है ना, सभी के साथ ऐसा होता होगा, हुआ है, मेरे साथ भी, आपके साथ भी हुआ होगा, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जब हमने मनुष्य जन्म लिया है तो हमें इन सब परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में इसके लिए भी कबीरदास जी ने कहा है कि जो निंदक होता है ना, निंदा करने वाला, तो वो तो मानो बिना साबुन पानी को आपको धो रहा है, आपको पवित्र कर रहा है।
0: हाँ, ये तो
2: हाँ,
0: है।
2: समझ रहे हैं ना।
0: हाँ,
2: वो तो जब आपकी सारी बुराइयां वो अपनी सर पर ले रहा है, लेकिन अनजाने में, उसे पता नहीं, वो समझता है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन अनजाने में वो आपका सारा पाप, सारा जो दुष्कर्म है, अपने सर पर मढ़ लेता है और आपको तो शुद्ध बुद्ध पवित्र कर देता है। तो इसलिए कबीरदास ने चाहा है कि निंदक को ऊंची कुर्सी देनी चाहिए, कि जब आपको पता है कि कोई मेरी बात करता है, मेरी बुराई करता है,
0: हाँ,
2: तो उसे ऊंची कुर्सी देनी चाहिए बैठने के लिए,
0: जाकर
2: क्योंकि
0: उसको
2: वो,
0: धन्यवाद कहना चाहिए।
2: हाँ, क्योंकि वो तो बिना बिना श्रम किए, बिना परिश्रम किए, वो तो आपको शुद्ध बुद्ध पवित्र कर रहा है ना, आपको इसे निकाल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा पाप है निंदा करना।
0: हाँ,
2: तो उस पाप

0: आपकी गठरी आप अपने आपकी आपका पाप को अपने सर पर गठरी बांध रहा है तो उसका कर्म हो जाता है ना।
1: हाँ।
0: और हम इस सबसे रिक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो इससे विचलित भी नहीं होना है, लेकिन जानबूझकर भी कभी स्वयं में किसी की बुराई, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये निंदा शब्द उसको बहुत बड़ा अवगुण कहा गया है शास्त्रों में, क्योंकि इसी से मनुष्य का पतन हो जाता है।
1: जी।
0: और दूसरे शब्दों में तो ये भी कहा जाता है कि जब हम निंदा करते हैं तो मानो हम दूसरे का मतलब मांस नोच नोच कर खा रहे
1: हैं।
0: हाँ। भी कहा गया है
1: जी।
0: ऐसे जब शास्त्र पढ़ेंगे तो इसमें तो मैंने कई बार इस तरह की चीजें देखी है, तो हर शक बचना चाहिए अपने दूसरे के पाप को अपने सिर पर नहीं, क्योंकि भगवान सभी को बुद्धि देता है तो वो साक्षी होते हैं जो कुछ होता है।
1: हाँ।
0: फिर ये कर्म हमें एक नए दिन लौट कर हमारे पास ही आएगा, और फिर हमें जब भुगतना पड़ेगा ना तब हम सोचेंगे कि हमने क्या किया, क्यों हमारे साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार कर रहा है या हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, मतलब ठीक से पेश नहीं आ रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा है। अपने को हमेशा शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, सीधा सरल रखना है, सभी के साथ सहज रहना है, मतलब सिंपल, जैसे ये घमंड भी नहीं करना है और ये निंदा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, मैंने कहा ना। और अगर कोई करता है तो उसको धन्यवाद देना है, बारे में चलो बाप ये तो मुझे साफ सुथरा कर रहा है, नहा धो रहा है मुझे, वो
1: और
0: तो
1: मुझे
0: नहला
1: मुझे
0: रहा है,
1: मुझे जो है फेमस भी कर रहा है मुझे फेमस भी कर रहा है ये
0: तो
1: तो
0: हाँ
1: है।
0: फेमस भी कर रहा है, क्योंकि वो तो आपकी आपकी बात जितनी चर्चा, मतलब दूसरे अपने करते वो आपकी बार बार आपकी बातें कर कर के, तो सच में वो तो फेमस ही कर रहा है ना।
1: फेमस
0: अगर मेरी बातें करेगा तो मैं तो खुद नहीं जाऊंगी ना सर पर ढिंढोड़ा पीटने, तो दूसरा है कोई जो मेरी बातों को लेकर वो चलता है। तो इस प्रकार से अगर हम लेंगे तो हम दुखी नहीं होंगे पूजा जी, और हमारा जीवन एकदम आसान हो जाएगा, हम सरल हो जाएंगे।
1: जी ये तो
0: ठीक
1: है।
0: है, मैं ज्यादा यही यही कहूंगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अभिना जी, जब भी आती है आप मुझे जो है एक एक मान लीजिए एक सच्चाई से आप मुझे जगा देती है, और इसी
0: जी, नहीं तो सही है
1: सकारात्मकता के
0: ना,
1: साथ।
0: सही
1: हाँ
0: है, क्योंकि
1: जी
0: देखिए हम इतने बड़े विद्वान विदुषी तो नहीं है, लेकिन जितना भी गुरु कृपा से माता पिता के आशीर्वाद से संस्कार जो हमने पढ़ाई की है तो
1: जी
0: वो सामने में आ जाता है, तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, हमारी जागृति हो जाती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम दूसरों को जागृत करें, उसमें ना भरें कि ऐसा ऐसा करने से क्या होता है। सही बात है, ये कबीरदास जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे शब्द ऐसे ऐसे दोहे उन्होंने लिखे हैं कि
1: जी
0: आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उसमें जीवन की सच्चाई भरी हुई है।
1: जी वो तो है।
0: हाँ जी, बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको अवीना जी, और शुभ संध्या आपको।
0: शुभ संध्या आपको, शुभ संध्या।
1: चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, जाइए उनको भी हम अवसर देते हैं। मैं सभी को अवसर दूंगी अभी। हेलो
2: हेलो हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते।
2: नमस्ते पूजा जी,
1: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, मैं ये प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छी है।
1: धन्यवाद, बताइए।
2: जो बहन ने कहा अभी वीना जी,
1: हाँ
2: मैं उसको बहुत बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ,
1: हाँ
2: उसने बहुत बहुत सच्ची बात बोली।
1: जी
2: जो जो निंदा करते हैं ना,
1: हाँ
2: उसके रेडियो ऑफ है,
1: हाँ
2: वो नहीं सुन सकते
1: हाँ
2: ये बातें।
1: जी
2: हाँ, ये नहीं सुन सकते, मैं 4 बजे से ये रेडियो सुन रही हूँ। हाँ, सब बहनों ने ठीक बोला,
1: जी
2: मैं भी सहमत हूँ, सब ने ठीक बोला, सब अच्छी है, हाँ सब ठीक है। पूजा जी,
1: जी
2: सब बातें जो सब लोग जो होते हैं ना, वो ऊपर वाले सब देखते हैं,
1: सब देखते हैं। जी
2: सब देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
1: जी
2: जैसे कहते हैं ना ये गाना है, जैसे करनी वैसे भरनी,
1: वैसे ही भरनी। जी, वो तो है,
2: जो जैसे बोते हैं वही पाते हैं।
1: वही पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस विचार
2: बहुत
1: के लिए।
2: बहुत पूजा जी, मुझे एक लाइन मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ।
1: धन्यवाद,
2: धन्यवाद,
1: और शुभ
2: शुभ
1: संध्या
2: शुभ
1: आपको भी।
2: संध्या।
1: आपको भी नमस्ते।

0: चलिए लाइन
1: नमस्ते।
0: पर एक और श्रोता है नवीन जी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, शुभ नमस्कार आपको नवीन जी।
1: शुभ नमस्कार पूजा जी।
0: आपको भी
1: पूजा जी,
0: जी, बताइए
1: एक कथन है,
0: जी।
1: खाली दिमाग
0: हाँ,
1: शैतान का घर होता है।
0: शैतान जी।
1: इस पर कहूंगा कि लोग अक्सर अपना समय शिकायत करने में, एक मिनट, शिकायत करने और दूसरों के बारे में बात करने में बिताते हैं।
0: जी
1: इसे कहते हैं नेता।
0: जी
1: यदि आपके पास कहने के लिए कुछ अच्छा या भला नहीं है,
0: हाँ
1: चुप रहना ही बेहतर है।
0: जी
1: क्या करने, जानती हो, मैं कहूंगा आपसे अपना समय ईश्वर के साथ बिताएं और
0: जी
1: अपने मन में भजन या मंत्र गाएं। दूसरों की शिकायत करने के सिलसिले में, यानी कि इस सिलसिले में आप शामिल न हो, यानी कि ऐसा महानीच काम या पाप से बच जाओगे, क्योंकि भगवान जो है आपके कमरे में भी है, कण कण में है, वो सुनता है। जिस तरह से हम कहते हैं भगवान मेरी प्रार्थना सुन दो, तो इसी तरह अगर हम निंदा करेंगे और तो ईश्वर नहीं सुन रहा है, भगवान तो सुनाई नहीं देता है,
0: जी
1: सब सुनाई देता है। तो उसकी याद करो, भगवान की याद करो, आपको शांति सुख और परम आनंद मिलेगा।
0: जी
1: आप इस विषय निंदा पर यह भी कहना, आपके इस विषय पे निंदा पर यह भी कहना चाहूंगा कि आप चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि दूसरों को गिरा कर अपनी भलाई मत सोचो, क्योंकि
0: जी
1: अपना ही चाहने वालों से मैं यहाँ पर कहूंगा कि एक महान विभूति
0: जी
1: स्वामी दयानंद अपने नियमों में यही बात कही है कि केवल अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरों की उन्नति में भी अपनी उन्नति समझनी चाहिए।
0: जी
1: तो इसलिए मैं कहूंगा कि सबकी उन्नति में खुशी रहो। किसी के जो अगर कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो खुशी खुश रहो, जीवन में निंदा मत करो, उसका भाग्य है।
0: जी
1: क्यों क्यों उसको, उसके लिए हम जलते हैं? तो
0: जी
1: मैं कहूंगा सभी के लिए हमको जीना चाहिए,
0: हाँ
1: भले बनो, भला करो, यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। और कहूंगा आपसे कि दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर।
0: जी
1: और अंत में और एक बात कहूंगा,
0: अवश्य
1: सभी को जीने दो, जियो और जीने दो।
0: जियो और जीने दो, मेरा
1: हाँ
0: फेवरेट लाइन है।
1: हाँ
0: धन्यवाद।
1: तो जानते हो पूजा जी,
0: हाँ
1: अगर हम ऐसा काम करें,
0: हाँ हाँ
1: जा भी न करें, तो मन साफ है, हृदय पवित्र है।
0: जी
1: कहना चाहता हूँ कि पूजा अगर नहीं नहीं की तो कुछ मतलब नहीं होता है, भगवान
0: हाँ
1: हमारा दिल जानता है।
0: हाँ
1: तो आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया,
0: हाँ
1: ये समय भी मिला आज आपके छोटे से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए,
0: जी
1: तो आपको कहूंगा धन्यवाद, शुभ संध्या, और जरूर मिलेंगे इस छोटी सी दुनिया में।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस
1: धन्यवाद, शुभ
0: विचार।
1: संध्या।
0: शुभ संध्या आपको भी। चलिए, कमला जी जो है वो कब से फोन कर रही थी, और उनको भी थोड़ा सा हम बोलने का जो है अवसर देती है देते हैं। हेलो
1: हाँ
0: कमला जी,
1: हेलो पूजा
0: नमस्ते।
1: जी, नमस्ते पूजा जी,
0: नमस्ते
1: सावनी के ढेर सारा प्यार
0: आपको भी।
1: आपको भी।
0: जी
1: हम भी आपके साथ में जुड़े हैं पूजा जी।
0: जी
1: हम बुरा तो सभी जगह पर हैं,
0: जी
1: सभी निंदा घुटखुरी सभी जगह पर, अपनों में, गैरों में, पड़ोसिया में हैं, जहाँ हम जाते हैं, समाज में भी हैं।
0: जी
1: देख

0: स्थान कोई कोई के दिखते नहीं सकते हैं। जिसके पास ढेर थरा धन है वो भी वो नहीं सकते हैं, जिसके पास नहीं है कुछ भी वो भी बुरा करते हैं, उसे भी बुरा लगता है। वो भी हर जगह पर हर स्थान पर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो पड़ोसिन को भी बुरा लगता है। कहते हैं ना एक कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो खोजन हो, आपन दिल जो खोजा तो मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। हर जगह पर बुराई, हर जगह पर चुगलखोरी, हर जगह पर निंदा चलती है, लेकिन क्या करें, हमें हमें बहुत सोच समझ कर जो हम बोते हैं वही पाते हैं, वही काटते हैं। आज हमारे साथ बुरा हो रहा है, कल वो नहीं समझते हैं, नहीं अति करते हैं कि उसके साथ भी होगा। वैसे ही भगवान जब उलट जाता है तो वो नहीं सकते हैं देखने को, उसका हाल भी बुरा हो जा सकता है। यही हमारे कहना है पूजा जी, लेकिन क्या करें क्या करें, इसे सहना पड़ता है। बहुत धन्यवाद, शुभ संध्या।
1: शुभ संध्या आपको भी,
0: आपको भी बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हम और आप कार्यक्रम के अंत तक हम आ पहुँचे हैं, और आज जिन जिन लोगों ने इस विषय पर अपना अपना विचार दिया है उन सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे। निंदा करना बहुत बुरी बात है, आप इससे किसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो ये आप खुद ही नहीं जानते, इसीलिए निंदा करना आप रोक लीजिए। सेवा करो मेवा मिलेगी, अच्छा करो अच्छा ही मिलेगी। अगर आपको सही ढंग से जीना है तो ये जो लाइन है जियो और जीने दो, इसे आप कंठस्थ कर लीजिए, तभी आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे और दूसरों को आप प्यार दें। और ये भी आप सोचे, ये भी आप, मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग आपके निंदा करते हैं और आप अगर पलट कर जवाब भी देते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर जवाब देने से भी आपके निंदा रोके नहीं जाते तब आप चुप रहें, इससे बेहतर और कुछ नहीं। आइए इसी के साथ हमारा आप कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ, और आप सभी के नाम ये प्यारा सा गीत, और हम बढ़ेंगे त्योहार पसंद कार्यक्रम की ओर, जहां पर हम आपके ही पसंदीदा गीत चलाएंगे और भोजपुरी के गीत अगर आप भी पसंद कर रहे हैं तो 4028085 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, या फिर 5251700 पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। सबको के नमस्ते और ये प्रणाम, तो हर पसंद कार्यक्रम में सबको के हमने स्वागत करत हैं जा। 5:08 हो गल बाते, और अभी जितना कोई हमने संगे जुड़ल हवन जा, सबको के बड़ा ही स्वागत, दिल से स्वागत करत हैं जा। तो चला अभी राधा सोभेला ये गीतवा सब सुनने वालों के नाम।

तो रेहाना जी जो है नोटरडेम से खास तौर पर उकर बेस्ट फ्रेंड बोलक है उकर निमन से उकर खास संगतिया है माला फाउदा जी और सुरेखा जी खातिर है गीतवा के जो है मांग कर ले बाते और चला गीतवा हमनी सुनी रा सा सुना नयान जी के गावल गीत घर दमाद।

कि ऐसे शरम शरम करके ऐसे गीत गाई बना तो सब दमाद भाग जयन सब है ना। तो चला अभी हमनी के संगे अनीता चाची जुड़ल हवन अथियोरे गांव से और अपन बेटी पूजा दमाद बाते वेद और बेटा सचिन और प्यारी सिया खातिर गीतवा के मांग कर ले बाते। तो चला है गीतवा हमनी सुनी रास लंगड़ो कितने दिन के बाद गीतवा खेला था। चला सब कोई खातिर जो अभी हमनी संगे जुड़ल हवन जा

तो चला अभी है कि तो खास तौर पर रानी जी खातिर मच्छी मरवा हमार नाम है ठनुआ में के जाए मच्छी मारे तहिला है गीतवा तोहर खातिर।

0: सुना न चिरंगी जी ओकर संगिनी जी के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा जो न शुभकामनाएं देवत हवन जा पूनम नीलम फावे सौरकर सब परिवार देने से कर पत्नी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं
1: बधाई हो
0: और जितना कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवन जा सब कोई खातिर रहा
1: बधाई हो
0: पूरे एमबीसी टीम के देने से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

तो चला अनिरुद्ध बैजनाथ जी के गीत की मांग कर ले बातें भावती सुगत और गीतवाओं कर सब परिवार खातिर और कर सब गोटनियन खातिर।

ईश्वर जी जन्हा नुवेल फॉस से हमनी के सुना थवन जा ओकरा ढेर सारा प्यार और ढेर सारा अपनापन हमनी भेजा थवन जा। और आज जन्हा

ईश्वर जी जेकर कोई नहीं है ओकर भगवान हमेशा रहिला और पूरे एमबीसी टीम के देने से तुम्हारा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। निम्ने से रहिया, प्यार से रहिया और हमेशा हंसते रहिया, हाँ ये हमनी आशा करीला सर।

तो एक बार फिर से ईश्वर जी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी खातिर एम इशोज और गीतवा के गीत के मांग कर ले बातें शोभा जी वाकवा से और सब परिवार खातिर विश्वानी दीपवा जी के गावल गीत साथ में बातें आरती जी त्रियोले से और तीनों बेटियन खातिर शिमला रीमा आनंदी और आशले खातिर साथ में और पति बाते और श्यामा रघुनंदन जी वीना रामफल जी और नवीन लक्ष्मण जी विजय बंदन जी आशा जानू जी और सब जानू परिवार।

0: खास तौर पर नानी सुखलाल जी खातिर अपन लैका लोग के बड़ी याद करे लंजा बोले बोला थवन जब लैका सब चल जाला बड़ी याद आवे लंजा
1: कोको कहां गईले मोर जानी कोको
0: तो चला नानी तो हर खातिर मोर जानी कोको

खास तौर पर बिशेसर जी जो हमने के घोंबे से सुना था वंजा, और ये गीत खास तौर पर शांता सुकारी जी और सब परिवार खातिर, और कमला दिनु जी जो हमने के सुना था वंजा प्यारी आरोही खातिर, और ओकर सहेली संगीता, ओकर सहेली सीता और रियांश खातिर, और ओकर बेटी दिव्या खातिर।

तो चलो अभी त्योहार पसंद कार्यक्रम जारी बातें, और खास तौर पर गीता जी जो हमने के सुना था वंजा, और वो कल जाता अपन देश मोरिस छोड़ के जाता अपन देश, और तो ओकर परिवार और खास तौर पर ओकर बेटी अहाना खातिर ओकरा हमनी बोलब जाबो वायर, और साथ में देवत वंजा ओकर बेटा यश और ओकर माँ अमृता जी। तो चलो एक गीत के हमनी जोरब जानम शकुन जी गुजबे से हमनी के सुना था वंजा। तो चला है गीतवा तो हर खातिर रहा

और अंत में सुनीता जी गौगुप से हवन जापन बहन विमला जी खातिर गीतवा के मांग कर ले बातें तय करे हुए संगे पूजा को अनुमति दे हमारे देने से सब कोई के नमस्ते स्वस्थ रहिया सुरक्षित रहिया।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त शाम के ठीक 6 बजे हैं। रविवार 16 अगस्त 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दक्षिण अफ्रीका का डर्बन शहर सोमवार से सैडेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह से है तैयार। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस रविवार दोपहर को दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर पहुंचे प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, जहां खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे प्रमुख विषयों पर रहेगा ध्यान केंद्रित। कल से स्कूल फिर से शुरू हो रहे हैं। तीसरी तिमाही की शुरुआत के साथ ही

0: रिवीजन और परीक्षाओं की तैयारी तेजी पर होगी। कुछ छात्रों खासकर राष्ट्रीय परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए स्कूल कैलेंडर का विस्तार किया जाएगा। ग्रेड 9 के छात्र अक्टूबर महीने में नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन की परीक्षा देंगे। मामी गावातोमांगा मामले में कल से एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो रही है। अक्टूबर 2025 से मेलगोज की उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद मेडागास्कर के ये व्यापारी एक बार फिर बेल एंड रिमांड कोर्ट के सामने पेश होंगे। और विदेश में इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप से 51 लोगों की मौत हो गई है और करीब 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि 36 लोग गंभीर रूप से हो गए हैं घायल। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ और समाचारों को देती है विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल से शुरू हो रहे सैडेक के 46वें राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस रविवार दोपहर को दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर पर पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों से निपटने और क्षेत्रीय सहयोग को एक नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से सैडेक के सभी 16 सदस्य देशों के नेता यहां एकत्र हुए हैं। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर ज्यादा विस्तार करुणा लालू के साथ।
1: डर्बन के किंगशाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम का आधिकारिक और प्रोटोकॉल के तहत स्वागत किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग की उपमंत्री ठंडी मोराका भी मौजूद थी। प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान राष्ट्र नेताओं के लिए निर्धारित औपचारिक प्रोटोकॉल का पालन किया गया। सैडेक का 46वां शिखर सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, सोमवार को आधिकारिक रूप से शुरू होगा। क्षेत्रीय नेता क्षेत्रीय एकीकरण में तेजी लाने, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि क्षेत्र में बदलाव तथा महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की क्षेत्र के अन्य नेताओं के साथ कई मुलाकातें भी होंगी। इन बैठकों में दक्षिण अफ्रीका के सामने मौजूद साझा चुनौतियों के साथ साथ सैडेक के भीतर मॉरिशस की प्राथमिकताओं को भी सामने रखने का अवसर मिलेगा। इस बीच आज रविवार रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा डर्बन ICC में आयोजित राजकीय भोज में शामिल होंगे। ये राजकीय भोज मॉरिशस के समयानुसार रात 9 बजे आयोजित किया जाएगा और इसमें सैडेक के सभी 16 सदस्य देशों के नेता हिस्सा लेंगे।
0: भारतीय उच्चायोग ने कल शाम थियानो कन्वेंशन सेंटर में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में गणराज्य के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम भी उपस्थित थी। भारतीय उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव ने दोनों देशों के उस नेतृत्व पर बल दिया जो आपसी विश्वास और समझ के उच्च स्तर का आनंद लेता है। उन्होंने शागस के समुद्री संरक्षित क्षेत्र के विकास और निगरानी से संबंधित नई रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ मॉरिशस के बंदरगाह के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के महत्व को भी रेखांकित किया है। माधवी जगन्नाथ की रिपोर्ट पर विवरण अदिति अवतार का।
2: May I invite you to join me in a toast to the good health of Her Excellency, the President of India, and to the prosperity and happiness of the people of India.
3: इसके बाद भारतीय उच्चायुक्त श्री अनुराग श्रीवास्तव ने एक टोस्ट उठाया।
4: May I now invite you to join me in a toast to the good health of His Excellency, the President of Mauritius, to the continued progress and prosperity of the wonderful people of Mauritius, and to the enduring friendship and special ties between India and Mauritius.
3: अपने संदेश में उन्होंने चलाई जा रही सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख

किया जिसमें शागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के विकास और संचालन से जुड़ी हाल ही में स्थापित रणनीतिक साझेदारी शामिल है। उन्होंने कहा तटीय सर्विलेंस ईजेड की मॉनिटरिंग हाइड्रोग्राफी और समुद्री सुरक्षा जागरूकता को लेकर द्विपक्षीय सहयोग इस साल ज्यादा गहरा हुआ है, लेकिन ये साझेदारी जहाजों और क्षमताओं से कहीं आगे बढ़ के है। ये विकास नए सहयोग आयामों में दिखाई देता है जो शागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के संचालन और उसकी निगरानी के लिए स्थापित हुआ है, और साथ ही मॉरिशस के बंदरगाह की विकास परियोजना भी इसका हिस्सा है। ये पहल एक ज्यादा सुरक्षित और कामयाब हिंद महासागरीय इलाके का हमारा विजन दर्शाती है। समारोह के अंतर्गत पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां हुई जिससे उपस्थित मेहमानों को भारत की समृद्ध विरासत की झांकी मिली।

0: एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें दशकों से भारत और मॉरिशस के बीच की खास साझेदारी प्रस्तुत की गई। ये माध्यम रहा दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के संबंधों की समृद्धि और निरंतरता उजागर करने का।
1: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। मामी खावतो मांगा मामले में कल से एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो रही है। अक्टूबर 2025 से मेलरोज की उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद मेडागास्कर के ये व्यापारी एक बार फिर बेल एंड रिमांड कोर्ट के सामने पेश होंगे। वे अपनी जमानत याचिका दायर कर रहे हैं जबकि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन उनकी जमानत का विरोध कर रहा है। कल और मंगलवार को होने वाली ये बहस इस मामले में निर्णायक मानी जा रही है। आइए इस मामले के मुख्य न्यायिक तथ्यों पर डालते हैं एक नजर। कविन तापिसाओ की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
2: मामी गावातुमांग अक्टूबर 2025 से मेलरोज की उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद हैं। 56 वर्षीय इस मडागास्कर के कारोबारी को 24 अक्टूबर को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने गिरफ्तार किया था। उस समय वो फिनिक्स स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती थे। उन पर फिलहाल 3 अस्थायी आरोप हैं, मनी लॉन्डरिंग के 2 और आपराधिक साजिश का 1 आरोप। ये मामला FCC की उस जांच से जुड़ा है जिसमें मडागास्कर और मॉरिशस के बीच 7.3 बिलियन रुपये के वित्तीय लेन देन की भी जाँच की जा रही है। उनकी संपत्तियों और उनकी कारोबारी गतिविधियों से जुड़ी कई कंपनियों की संपत्तियों पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिमिनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया गया है। 31 अक्टूबर 2025 को मामी गावातुमांग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध वकील को मॉरिशस बुलाया। मॉरिशन वकीलों के साथ एक्टो बेनोडिनी ने FCC की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मामी गावातुमांग की जमानत के संबंध में पहली सुनवाई 30 दिसंबर 2025 को हुई, तब बेल एंड रिमांड कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट ने मुख्य रूप से फरार होने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने के खतरे को ध्यान में रखा। 30 जुलाई को मामी गावातुमांग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेल एंड रिमांड कोर्ट में पेशी दी। FCC ने नई याचिका की स्वीकार्यता को लेकर अपनी प्रारंभिक आपत्ति वापस ले ली। इसके बाद अदालत के लिए अब उनकी जमानत याचिका पर गहराई से जांच करने का रास्ता साफ हो गया है।
1: गुरुजी द्वारा अपनी पुस्तक स्वर्ण चैतन्य मराठी भजन संग्रह के माध्यम से 40 वर्षों की भक्ति और साधना का प्रसार किया गया है, जो मराठी भाषा में 750 भजनों का एक संकलन है। इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन इस रविवार को मुका स्थित महाराष्ट्र भवन में मंत्री महेंद्र कुंडिया के और कई अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन द्वारा मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट, मराठी स्पीकिंग यूनियन और फ्लक मराठी विग्नि

0: ईश्वर मंडली के सहयोग से किया गया था। शहजाद अली जुमन, अदिति अवतार।
1: भजन यानी ईश्वर की भक्ति में गाए जाने वाले गीत भक्तों का प्रेम और श्रद्धा दर्शाते हैं। इनकी जड़ें भक्ति में हैं, जो गीतों के माध्यम से श्रद्धालुओं को एक दूसरे से भी जोड़ती हैं। इस रविवार गुरुजी प्रेमदेव इतू सावंत के लिए एक भावुक पल रहा, जब उन्होंने अपनी पुस्तक स्वर्ण चैतन्य मराठी भजन संग्रह की लॉन्चिंग की, जिसमें मराठी भाषा के 750 भजनों का संकलन है। मराठी के पूर्व शिक्षक रहे गुरुजी के लिए ये खिताब 40 से ज्यादा सालों तक भजन लिखने की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने अपने गुरु की सलाह पर ये संग्रह तैयार किया ताकि इस विरासत को सभी तक पहुंचाया जा सके। गुरुजी कहते हैं, मैं बहुत कम उम्र से लिखता और गाता हूं। 2007 में मेरे स्वर्गीय आध्यात्मिक गुरु ने मुझे ये संग्रह बनाकर उसे एक पुस्तक का रूप देने को कहा। आज उनका सपना साकार हुआ है। इस पुस्तक में दुर्गा माँ, गणेश भगवान आदि सभी की भक्ति के भजन पाए जाते हैं। इस संग्रह में भजनों को रोमन लिपि में भी लिखा गया है। गुरुजी प्रेमदेव इतू सावंत हिंदी भजनों का भी संग्रह तैयार करने की योजना बना रहे हैं, ताकि उस परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके जो उनके दिल के बहुत करीब है।
0: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। सीखने, खेलने, गतिविधियों में भाग लेने और विशेष रूप से बच्चों की आवाज बुलंद करने की दिशा में एक नया स्थान, जी हां, नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल ने इस रविवार को रेजिडेंस वालेजी में एक नए चिल्ड्रंस क्लब का आयोजन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप प्रधानमंत्री और महिला अधिकार, जेंडर इक्वालिटी एवं परिवार कल्याण मंत्री आरिया नवामारी, नेशनल चिल्ड्रन काउंसिल के अध्यक्ष जिल्बे लुइज और गणराज्य चीन के दूतावास व शुगर इंडस्ट्री वेलफेयर फंड के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे। समारोह के दौरान बच्चों को खेल उपकरण भी भेंट किए गए। और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि कल से स्कूल फिर से शुरू हो रही है, तीसरी तिमाही की शुरुआत के साथ ही रिविजन और परीक्षाओं की तैयारियाँ तेजी पर होंगी। कुछ छात्र विशेषकर राष्ट्रीय परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए स्कूल कैलेंडर का विस्तार किया जाएगा और ग्रेड 9 के छात्र अक्टूबर महीने में नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन की परीक्षा देंगे। माध्यमिक स्तर की तैयारियों पर इस सप्ताह मंत्रालय के मुख्यालय में चर्चा की गई, जिसमें कल से ही स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध प्रमुख रूप से एक विषय रहा। हमारे यहाँ 2 सप्ताह बिताने के बाद जैकी नाम का समुद्री हाथी यानी कि एलिफेंट सील वापस समुद्र पर लौट गया लगता है। बुधवार के बाद से उसे फिर से नहीं देखा गया है, लेकिन उसने मॉरिशस वासियों के दिलों में अपनी बेहद खूबसूरत यादें छोड़ी हैं। वे कभी कभी हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, वेल, शार्क, कछुए, सील या फिर समुद्री पक्षी, लेकिन उनके ये रास्ते मानवीय गतिविधियों से बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन में 400 शोधकर्ताओं के शोध शामिल हैं, जिसमें मॉरिशन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का शोध भी शामिल है। ये अध्ययन आज उनकी आवाजाही और प्रवास का एक अभूतपूर्व नक्शा यानी कि मैपिंग प्रस्तुत करता है, जिसका एक करा निष्कर्ष महासागरों के केवल 30% हिस्से को संरक्षित करना और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। जी हां, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भारत देश का लोकतंत्र के बारे में। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ये शब्द आज भी भारतीय राजनीति में उनकी सोच, देश के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद दिलाते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति

0: सीपी राधाकृष्ण कृष्णन राज्यसभा के उपसभापति और अन्य नेताओं ने सदैव अटल समृद्धि स्थल पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: उस महान हस्ती को नमन जिन्होंने भारत जैसे महान राष्ट्र के लिए अहम और ऐतिहासिक निर्णय लिए। भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर उनकी बरसी के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे महानुभाव जिन्होंने भारत की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी है। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सह संस्थापकों में शामिल थे। वे 9 बार लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचित हुए थे, यानी 50 से अधिक वर्षों तक वे सांसद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी वे प्रथम राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने कांग्रेस के सदस्य न होकर भी प्रधानमंत्री का पद संभाला था। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यकाल भारत के विकास और सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1998 में उनके तहत भारत ने परमाणु परीक्षण किया, जिससे भारत की प्रतिरक्षा क्षमता और मजबूत हुई। वाजपेयी जी ने देश के आर्थिक विकास, सड़क निर्माण और बुनियादी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया। अटल जी सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक महान कवि भी थे।
2: जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरू, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरू, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आधियों ने जलाए हैं पुष्टे दिए।
1: उनकी कविताओं में देशभक्ति, संघर्ष, आशा और जीवन के प्रति गहरी सोच देखने को मिलती है। भाषण देने की उनकी शैली बहुत प्रभावशाली थी। वे कठिन बातों को भी सरल और मुवस्सिर तरीके से व्यक्त करते थे। 1977 में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की 32वीं महासभा को हिंदी भाषा में संबोधित किया था और वसुधैव कुटुंबकम पर जोर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखते थे। वे विपक्ष के विचारों का भी सम्मान करते थे। इसी वजह से अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी उनकी प्रशंसा करते थे। उनकी विनम्रता, अच्छा व्यवहार और राजनीतिक सोच ने उन्हें एक अलग पहचान दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके देश के प्रति योगदान के लिए सम्मान मिले। उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन में देश की सेवा, लोकतंत्र, साहित्य और राष्ट्र विकास को महत्व दिया। उनके विचार, कविताएं और देश के लिए किए गए कार्य हमेशा याद किए जाएंगे। वे भारत के इतिहास में एक महान और सम्मानित नेता के रूप में सदैव याद रहेंगे।
0: और जिस तरह से हमने इस बात की चर्चा की है कि कल से स्कूल फिर से शुरू हो रही है, तीसरी तिमाही की शुरुआत के साथ ही रिवीजन और परीक्षाओं की तैयारियां तेजी पर होंगी। कुछ छात्र विशेषकर राष्ट्रीय परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए स्कूल कैलेंडर का विस्तार किया जाएगा। ग्रेड 9 के छात्र अक्टूबर महीने में नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन की परीक्षा देंगे। माध्यमिक स्तर की तैयारियों पर इस सप्ताह मंत्रालय के मुख्यालय में चर्चा की गई, जिसमें कल से ही स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध प्रमुख विषय रहा। कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
3: माध्यमिक स्कूलों के स्तर पर तीसरा टर्म समय के साथ एक असली दौड़ जैसा होता है, जिसमें फाइनल रिवीजन और अंतिम परीक्षाएं होती हैं। इस साल कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं। ग्रेड 9 के नेशनल सर्टिफिकेट एजुकेशन की परीक्षाएं सितंबर महीने के बजाय अक्टूबर में लगेंगी। शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद कहते हैं, स्कूली कैलेंडर में परीक्षाएं आगे बढ़ाकर हम छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा करने और शिक्षकों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका दे रहे हैं। माध्यमिक के शिक्षक इस बदलाव का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि हर स्कूल के हालात अलग अलग होते हैं। यूनाइटेड डेप्यूटी रेक्टर्स एंड रेक्टर्स यूनियन के अध्यक्ष विकास रामधनी कहते हैं, कुछ छात्रों के साथ ज्यादा काम करने की आवश्यकता होती है, जबकि उच्च परफॉर्मेंस वालों के साथ अलग तरीके का काम होता है। इसके अलावा तीसरे टर्म में रिमीडियल क्लासेस भी होते हैं। ये सब इस अवधि के दौरान ही किया जाता है। इस सोमवार से स्कूलों में नया टर्म शुरू होने के साथ नए नियमों पर

0: चर्चा तेज की जा रही है। छात्रों को स्कूल में पहुंचते ही अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखना होगा, साथ ही बुलिंग की समस्या के खिलाफ संघर्ष की दिशा में शिक्षकों के लिए जरूरी प्रशिक्षण शुरू होंगे। शिक्षा मंत्री कहते हैं, हम देख रहे हैं कि ड्रग्स और बुलिंग के खिलाफ स्कूली कर्मचारियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण देना होगा ताकि वे इनका सामना कर सकें। साथ ही माध्यमिक स्कूलों में ड्रग्स से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के सहयोग की मांग की गई है, जिसमें रोकथाम और छात्रों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा।
1: सीखने, खेलने, गतिविधियों में भाग लेने और विशेष रूप से बच्चों की आवाज बुलंद करने के लिए एक नया स्थान, नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल ने इस रविवार को रेजिडेंस वालीजी में एक नए चिल्ड्रन क्लब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप प्रधानमंत्री आरियान नवामारी, नेशनल चिल्ड्रन काउंसिल के अध्यक्ष जिल्बे अल्वीज और गणराज्य चीन के दूतावास व शुगर इंडस्ट्री वेलफेयर फंड के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे। संतना पौसेनो की रिपोर्ट पर विवरण करुणा लालू का।
2: रेजिडेंस वालीजी में बच्चों के लिए एक नया स्थान जहां वे एक दूसरे से मिल सकेंगे, सीख सकेंगे और अपनी प्रतिभाओं को विकसित कर सकेंगे। नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल ने रविवार को यहाँ एक नए चिल्ड्रंस क्लब का उद्घाटन किया। 7 से 17 साल की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित इस क्लब में खेल, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियां की जाएंगी।
3: नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल ने डिफरेंट क्लब एनफों आ ट्रैवर्स लिल मॉरिस।
2: डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आरियान नवामारी ने कहा, नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल के कई क्लब हैं देश भर में। आज कई बुराइयां हैं जिनसे बच्चों को खतरा है। क्लब में बच्चों को संगठित कर उनकी आवाज पर ध्यान देते हैं और उनके लिए मनोरंजन और खेल गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इस वास्ते चीनी दूतावास का भी समर्थन मिला है, जिसने क्लब के लिए खेल उपकरण प्रदान किए। नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल के साथ काम करने में प्रसन्नता हो रही है। बच्चों को यादगार पल देना चाहते हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान बच्चों ने कई गतिविधियों में भाग लिया, जिसमें फुटबॉल टूर्नामेंट भी शामिल रहा। अंततः बुजेकासी की टीम विजेता बनी, जिससे उसके युवा खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत गर्व है, खेले गए पहले ही मैच में हमारी जीत हुई। 10 साल से काशी जूनियर क्लब में खेलता हूँ, अपने कोच को धन्यवाद है। चिल्ड्रंस क्लब की ये सिर्फ शुरुआत है। उद्देश्य रेजिडेंस वालीजी के युवाओं के लिए मुलाकात, विचारों के आदान प्रदान और सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनना है।
1: और विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप से 51 लोगों की मौत हो गई है और करीब 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 36 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि 1,300 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। राहत बचाव के लिए 3,500 से ज्यादा सैन्य और पुलिस कर्मी तैनात किए गए। उधर हंगरी में एक दर्दनाक सड़क का हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबरों के अनुसार एक यात्री बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिससे ये हादसा हुआ। यूक्रेन ने रूस पर युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसने रूसी रॉकेट सेंटर को निशाना बनाया है, साथ ही रूस की एक सैन्य हवाई पट्टी पर हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार उन्होंने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए हैं, जिनमें से 600 का रुख राजधानी मॉस्को की तरफ था। इस हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और अंत में मौसम का हाल।
2: पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि आज रात के दौरान और कल सुबह भी आसमान में बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी, खासकर पूर्व, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर। उचाइयों

में कुछ इलाकों में कोहरे भी छाए रहेंगे। कल दिन के दौरान मौसम में सुधार आएगा। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 3.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है, साथ में दक्षिण पश्चिमी लगूनों में भी। सूर्यास्त 5:57 पर, कल सूर्योदय सुबह 6:30।

देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

आयुषोक समाचार सुनते हैं। रारोद एक्वायो में, रारोद एक्वायो में जो लियो जिम के पास हैं, 47 साल के 47 years old के श्री विशाल राजकुमार, श्री विशाल राजकुमार जिन्हें सब लोग सचिन मासों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल दिन के 10 बजे, कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर रारोद एक्वायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रारोद क्लेमोसिया में, रारोद क्लेमोसिया में 46 साल के 46 years old के श्री चंद्रदत्त पेमा, श्री चंद्रदत्त पेमा जिन्हें सब लोग सचिन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे, कल दिन के 10 बजे उनके भाई श्री मोहनलाल पर्मा के घर रॉयरुड क्लेमोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्लेमोसिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रॉयरुड पेची राफ्रे में, रॉयरुड पेची राफ्रे में 65 साल की 65 years old की श्रीमती अनुराधा मुरुतिया, श्रीमती अनुराधा मुरुतिया जिन्हें सब लोग संगीता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10:15 बजे, कल दिन के 10:15 बजे उनके भाई श्री मानन मुरुतिया के घर रारोद पे चिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो मॉर्निंग एट 10:15। थ्रेबोन नंबर तीन वाकुआ में 82 साल की 82 years old की श्रीमती नीराबाई गोपाल, श्रीमती नीराबाई गोपाल पैदाइशी नाम सकाराम और जिन्हें सब लोग नीराबाई के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10:30 बजे, कल दिन के 10:30 बजे उन्हीं के घर थ्रेबोन नंबर तीन वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेब्रियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। ऋषि दयानंद स्ट्रीट मौचिनिया सुरीनाम में, ऋषि दयानंद स्ट्रीट मौचिनिया सुरीनाम में 79 साल की 79 years old के श्री खुशीराम जादू, श्री खुशीराम जादू जिन्हें सब लोग दुलम के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे, कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री विकास जादू के घर ऋषि दयानंद स्ट्रीट मौचिनिया सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रारोद कात्रो कोको में, रारोद कात्रो कोको में 65 साल की 65 years old की श्री गुरुदेव राम नारायण, श्री गुरुदेव राम नारायण जिन्हें सब लोग चनन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे, कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती इंद्रावती राम नारायण के घर रारोद कात्रोकोको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। कालीमाई रोड कॉन्ट डे पेशेयर ग्रैंड रिवियर

0: ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट में, कालीमाय रोड कौन द्वीपेश है ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट में, 69 ईयर्स ओल्ड की श्री हरि प्रसाद जंगली, श्री हरि प्रसाद जंगली जिन्हें सब लोग राजा और राज के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे, कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर कालीमाय रोड कौंदपेशिया ग्रैंड रिवर साउटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दिफ्रया की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। पेचित्रिविया में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री मुन्येंद्रनाथ सिंह सोहन जिन्हें सब लोग सुनील के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे ला शापेल ऑन दे मुगा पेचित्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोडेगांव की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। सावन रोड नोवेल फ्रांस में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री रामशंकर सिंह रामदीन जिन्हें सब लोग जोकी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर सवन रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामदीन नोवेल फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। रैकेट रोड ग्रांबे में 46 ईयर्स ओल्ड के श्री विशाल भगत जिन्हें सब लोग विमल के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके भाई श्री गैसों भगत के घर रैकेट रोड ग्रांबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कपमालेगे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमोरो एट 11:30 AM। रॉयल रोड मिलरोज में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री राजकुमार सोमाहू जिन्हें सब लोग विनोद के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री हशील सोमाहू के घर रॉयल रोड मेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। और एडेसे बेलोम में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री संताराम सबाजी जिन्हें सब लोग गासों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी ताबूत कल दिन के डेढ़ बजे उनके भाई श्री रविन सबाजी के घर एडेसे बेलोम से निकालकर सबसे पहले प्रार्थना सभा के लिए बेजिकाप स्थित सेंट फ्रांसवा दाजीज का गिरजाघर ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए सैमोंटे बेलोम का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुमोरो एट 1:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: MBC Radio 24 hours a day.

सीबी की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। मोसेलमा ओरेया और आसपास के इलाकों के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि इस बुधवार 19 अगस्त 2026 को प्रातःकाल के 9 से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। ग्राहकों को यह भी सूचित किया जाता है कि मरम्मत कार्य के समाप्ते ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सी भी मौसम हो गया कि सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं।

0: ये थी एक विज्ञप्ति सीबी की ओर से।
1: एट हंड्रेड एंड 19 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

好，听众朋友，这次的晚风歌单就到这里跟您说再见了，下次节目我们再会。

0: long fight. My, this is Radio Marches.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum。
3: Kimchi Mauritius。
4: Namaskar。
5: Shudrandiriki Hrudayapurvaka Namaskaram。
6: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
7: Radio Mauritius पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।
1: भजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: भजले प्रभु का नाम। नमस्कार श्रोताओं, इस रात्रि बेला में सोने से पहले स्वचिंतन बड़ा जरूरी है। जब हम स्वचिंतन करते हैं तो ध्यान आता है कि कभी कभी मन में कितना लालच आ जाता है। हम बाजार जाते हैं, कुछ भी अच्छा लगता है खरीद कर ले आते हैं, कभी कभी तो हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। तो स्वचिंतन में आप परिग्रह जो व्रत है, कम से कम सामान रखना ये बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं, आपने देखा है पशु पक्षी मछलियाँ कीड़े ये सब ज़्यादा इकट्ठा नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक सीज़न के लिए कर लेते हैं, लालच नहीं है उनमें। चिड़िया भी उतना ही दाना उठा के लेकर जाती है जितना उसे चाहिए, लेकिन हम मनुष्य तो कभी कभी इतना इकट्ठा करते हैं कि मानो 7 पीढ़ियों के लिए हमने रख कर जाना है। तो श्रोताओं, यदि ईश्वर पर विश्वास है तो जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने यहाँ जन्म लिया है, वह कर्म करेगा और जब कर्म करेगा तो अपने जीवन में उसे उपलब्धि होगी। इसलिए हम इतना संग्रह क्यों करना चाहते हैं, तो आइए सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, मर्यादा से संग्रह करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमें थोड़ी बचत करनी पड़ती है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा जीवन 100 साल का होगा। अब 100 साल के जीवन में जब हम धन उपार्जन करने लगते हैं, तब उसमें से कुछ बचत करना और कुछ खर्च करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग तो इस हाथ कमाते हैं और उस हाथ सब खर्च कर देते हैं और उसके बाद भी हाथ फैलाते हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है। प्रभु का भक्त तो दाता हो जाता है, वह तो थोड़े में भी बचत करके देने वाला बन जाता है। तो श्रोताओं, प्रभु भक्ति हमें दाता बनाती है, लेवता नहीं, देवता बनाती है।

श्रोताओं, प्रकृति ने पूरे संसार के लिए बहुत कुछ दे रखा है। यदि सब लोग उसका उपभोग संतुलित रूप से करें तो कभी कहीं पर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए चोरी करते हैं, संग्रह करते हैं और उन सुविधाओं को बनाए रखने के लिए कुछ लोगों का शोषण करते हैं। क्योंकि प्रकृति ने जो विवेक दिया है, कुछ लोगों का विवेक या बुद्धि तीव्र होती है, वे जो बिचारे हैं उनका शोषण करते हैं, तो यह भी एक अभिशाप है। तो श्रोताओं, जो प्रभु का ध्यान करते हैं, यदि ईश्वर ने उनको शक्ति दी है, बुद्धि दी है, तो वे उससे सर्व का कल्याण करते हैं। वे उन लोगों की मदद करते हैं जिनके पास उतनी बुद्धि या साधन नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो यही है भजले प्रभु का नाम।

और अंत में श्रोताओं, जितना जितना जीवन में संग्रह कम होगा, जिसकी जितनी आवश्यकताएं कम होती हैं, वह उतना ही महानता की ओर बढ़ता है। क्योंकि जब हम आवश्यकताओं के गुलाम हो जाते हैं तो प्रभु से दूर होने लगते हैं, और जितना प्रभु के पास जाते हैं हम निजी आवश्यकताओं से ऊपर उठने लगते हैं। आप सभी संतों का जीवन देख लीजिए, सभी भक्तों का उदाहरण देख लीजिए, उन्हें ईश्वर के सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं था। तो इसीलिए श्रोताओं, अपने आप को संयमित करना, अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी अर्थात ईश्वर से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उस ईश्वर के नाम के साथ जुड़ते हैं। अलका दंपत और यज को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़ीद सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की उर्दू नशरियात महफिल शब में समीर आप तमाम सामीन का खुलूस व मोहब्बत के साथ खैर मकदम करता है। दिल से दुआ है हमारी कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़र्ज़ो करम से खैर व आफ़ियत से रहें। आइए महफिल शब का आगाज़ इस हमद से करते हैं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, मैं रहमते हदिया किया हुआ हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की अजीम रहमत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कुफ्र शिर्क के अंधेरों से निकाल कर ईमान, तौहीद और हिदायत की रोशनी अता फरमाई।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया बल्कि रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इंसानों के लिए रहमत, शफ़क़त और भलाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों, कमज़ोरों, यतीमों, मिस्कीनों और जानवरों तक के साथ हुस्न सुलूक की तालीम दी। सामीन कराम, महफिल शब प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँच रहा है। आइए आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 9:14 हो गए बा। श्रोता लोग नमस्कार, आप सबको भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में तो लोग के हृदय से स्वागत पाते। रेडियो के तर दीवाना हुआ जा तो हम संगीत के मस्तानी है। तो चलो दीवाना मस्ताना होके संगे ई प्रोग्राम के अंत रहब जा। रात के 11 बजे ले और पहल का गाना सुना जा और उषा कौर तो हर संगे यहाँ पर ही। अगर कोई मनपसंद गीत तो लोग खातिर हम चलावब जा और यहाँ पर ही किशोर खिमिया के गावल गीत जलसा लालबा।

0: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के 9:28 मिनट हो गए बा। श्रोता लोग, हमार प्यारे भाई बहन लोगन कबो अपन के अकेला नहीं समझिया। अगर परिवार साथ अने देवत हवन तोहर सच्चा परिवार है जा। बातें जोन 2407 तोहर सेवा में लेगल लगल रहेला। और तोहर दोस्त है MBC रेडियो। MBC के अर्थ है माई बेस्ट कंपेनियन, है ना। तो चलो अगला गीत संगीता जी खातिर जोन रहिला कठो बोन और बखत अपनी के सुनाता। और गाना खास कर बेटा अश्विन और बेटी रीना के नाम।

जब बत्ती से धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर

अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा। जब घर की चौखट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब घर की आटा गिला

0: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का।
1: साथी लोगन हमेशा बोलीला कि तनाव बहुत खतरनाक है। तनाव से तोरे नहीं बुझाई कि कैसन बीमारी धर लेलक। तनाव के दूर भगावा, संगीत और खेल कूद में रुचि बढ़ावा, जीवन में खुशी के रंग भर जाए। रात के 9:50 होने को है। अगला गीत तो चला भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज के गावल गीत। ये गाना रॉय के लिए जो इस समय जो ही बखत हमने के सुना था कटोबोन से, और गाना मांगा तवंजा मामा प्रीति खातिर, और संगे इंदिरा जी जो हमने के सुना था मेबग से धन्यवाद साथ देने खातिर। ये गाना तो हर नाम

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:06 हो गल बा छोटा लोग जिंदगी जोन हता एगो रहस्या है एकर अर्थ कौन ची है कोई के पता नहीं चलेला। अर्थ ढूंढते ढूंढते जिंदगी खत्म हो जाला पर जवाब नहीं मिलेला। ए खातिर बोलल जाला चार दिन के जीवन में जी भर के जीला जा। समय नहीं बाते जकान अहंकार और नफरत करे के त चल अगला गीत सुनानो यन के गावल गीत खाले पीले जिले भैया जिंदगी में कहबा। और ये गाना रोहित जी खाते जो हमने के सुनाता वो बासे और जितना कोई के वक्त काम करता हॉस्पिटल में स्टेशन ला पुलिस में और जो लोग गाड़ी चलावता सावधानी से

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का
2: रात के 10:26 हो गए बा संगत या लोगन थोड़ी देर के लिए सोचा कि भोजपुरी तड़का अब नहीं चली तो हर रात्रि कैसे गुजरी है हम तो ये कबू नहीं सकब सोचे कि ऐसा बात हुई भोजपुरी तड़का की आप लोगन के जिंदगी में बाहर आने के ला तो हर रात्रि ये सुहाना हो तो चला इस समा के और रंगीत करब जा सुनीतानंद को के गावल गीत और ये गाना पृथ्वीराज खातिर जोन हमने के सुनता मॉडल बे से गानाइकर खातिर एकर परिवार पत्नी रीना खातिर और पूरे रघुनाथ परिवार खातिर

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: जानचे रखे ढगल ऐली।

0: अरे मर्द होकर क्यों छोड़ती मर्दानी।
1: तो श्रोता लोगानी कार्यक्रम समाप्त होए के बाद तोहर से आज्ञा चाहत है, हमेशा अपन ख्याल रखिया और ही सभी से प्रेम से पेश आया जा। नमस्ते और शुभ रात्रि।

0: अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनेशा का प्रणाम। सारे म्यूजिक लवर्स का हम बड़े प्यार से फिर से एक बार स्वागत करना चाहेंगे सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर। बिल्कुल दोस्तों, जहां पे हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गाने। वैसे जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ पुराने ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो खुशबू होती है ना, कभी कम नहीं होती हैं। कुछ लम्हे, कुछ रिश्ते, कुछ मुस्कुराहटें और कुछ गीत जो दिल के किसी कोने में आज भी वैसे ही महफूज हैं जैसे पहली बार महसूस किए थे आपने। तो चलिए जी, अगला नगमा खासकर आपके लिए इस खूबसूरत से सुनहरे पल का शो की शुरुआत करने के लिए।

आज की इस खूबसूरत महफिल में हम फिर से वही यादें ताज़ा करेंगे जब रेडियो घर का सबसे प्यारा साथी हुआ करता था, जब पूरा परिवार साथ बैठकर गीतों का लुफ्त उठाते थे, जब संडे की शाम चाय की प्याली के साथ मोहम्मद रफ़ी जी और लता मंगेशकर, मुकेश दा, किशोर कुमार जी और आशा भोंसले की मधुर आवाज़ें हर घर में गूंजती थी। आज हम चाहते हैं कि उसी दौर को आप फिर से दोबारा जी लें हमारे साथ रेडियो मॉरिशस पर।

पुराने गीत सिर्फ सुर और संगीत नहीं होते हैं, ये हमारे जिंदगी के बहुत ही अहम सुविनियर्स होते हैं। यादों के वो अनमोल तोहफे, वो हमें हर बार एक नई सफर पर ले जाते हैं। कभी बचपन की गलियां और कभी पहली मोहब्बत का एहसास, कभी माँ के आंचल की ममता में, तो कभी दोस्तों के साथ बिताए उन बेपरवाह दिनों में। जी हाँ दोस्तों, गानों के अंदर कुछ ऐसे ताकत होते हैं, कुछ ऐसे पावर होते हैं जो हमें खींच के उसी दौर में वापस लेकर जाते हैं। तो चलिए जी, आराम से बैठ जाइए, अगला गाना आपके नाम।

0: हटा दो।
1: वेल मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, उम्मीद करते हैं कि हर एक गाने को आप दिल से महसूस कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि इस खूबसूरत सी रात को अपनी सारी फिक्रों को थोड़ी देर के लिए एक तरफ आप कर दीजिए, अपने साथ थोड़ा सा वक्त बिता दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और दिल को तैयार कर लीजिए एक हसीन म्यूजिकल सफ़र के लिए, जो स्पेशली हम रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में आपको लेकर जाते हैं यादों की सफ़र पर।

हम हैं आपके प्यारे से दोस्त आरजे की निशा, जो आपका साथ दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहां हर गीत सुर सुना नहीं जाता, महसूस किए जाते हैं, जहां हर धुन एक कहानी सुनाती है और हर कहानी हमें उन सुनहरे पलों तक जरूर लेकर जाती है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। तो चलिए यादों का ये हसीन सफर खासकर

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो की दुनिया का वो हसीन दौर, ग्रामोफोन से कैसेट तक और कैसेट से डिल तक, आज फिर से उसी सफर पर चलते हैं। ये निशा बड़े शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुनहरे पर, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहां हर गीत एक याद है, हर याद एक मुस्कान बन जाती है और हर मुस्कान जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है। तो चलिए जो उम्मीद करते हैं कि अगला गाना आपके दिल को भा जाएगा और आपको गुनगुनाने पर मजबूर करेगा। तो चलिए, ये रहा आपके नाम।

फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, जाने का वक्त हो गया है मेरे दोस्त, लेकिन वापस जरूर आएंगे, वादा रहा आपसे। शुभ रात्रि, शब बखैर, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स को बस ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओए जर्नल सिंह, ओए जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो

Goody goody.

हाथ का जवाब हाथ से, बात का जवाब बात से, प्रीत का जवाब प्रीत से, और गीत का जवाब गीत से।